के दिल धड़के उमर की उठा कड़कती कमा कातिल अदा जालिम हया।

यू नो वॉट, हम सुबह उठते ही ना हमारी ब्रेन की ना एक स्ट्रेंज हैबिट हो गई है. वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वणक्कम, अस्सलाम वालेकुम. मैं हूं सिंपली आफरीन, राइटर ऑन दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग. एंड सुबह उठते ही हम में से ऐसे कुछ लोग होते हैं जो इतनी जल्दी इतने एक्शन मूड में आ जाते हैं, आंखें प्रॉपरली खुली भी नहीं होती है, लेकिन दिमाग पूरे दिन की ना टू डू लिस्ट ऑलरेडी बना चुका होता है. ऑफिस का काम करना है, घर का काम करना है, कॉल्स करने हैं, मैसेजेस का रिप्लाई करना है, ये पेंडिंग है, वो कंप्लीट करना है. और आई थिंक सो सुबह के एक घंटे में ही ऐसा लगता है कि यार ओवरवेल्म्ड, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा काम करना है. बट यू नो व्हाट, वी कैन ट्राई समथिंग डिफरेंटली टुडे. डोंट कैरी द होल डे इन योर हेड एट वंस, है ना. अभी सुबह है तो सुबह का सुबह में हैंडल कर लेंगे, दोपहर का दोपहर में देख लेंगे प्रॉब्लम क्या है, एंड इवनिंग का स्ट्रेस अभी से एडवांस बुकिंग में क्या करने की जरूरत है, राइट. वन थिंग एट अ टाइम, वन कॉन्वर्सेशन एट अ टाइम, एंड वन गुड सॉन्ग एट अ टाइम, है ना. सो लेट्स गो टू दैट गुड सॉन्ग. और बस यार ऐसे ही करके हमारा जो नॉर्मल सा दिन है एकदम सुकून से पीसफुली हम निकाल देंगे. एंड दैट्स ऑल्सो कॉल्ड अ प्रीटी गुड डे. वेरी गुड मॉर्निंग, आप ट्रेन जुड़ गई है आपके साथ टू मेक योर मॉर्निंग्स इवन मोर स्मूथ एंड मस्त. राइटर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vispa, la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Hello?
4: Hi. से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
3: हेलो।
4: हाय, ये तो फिर से आपके भी नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।

0: वही मैं सुधरा था, मतलब मिट्टी सारी फसली लगा।
1: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाएं 5,07,339। हो गया
0: हाँ जी।
1: कुकड़ू को
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स

0: में जी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
3: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं, और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: खट खट,
6: हू दैट?
5: अकबर।
6: अकबर हू?
5: अरे अकबर बता दिया है, बार बार नहीं ना बता पाएंगे।
6: खट खट, हू दैट?
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: वेल क्वाइट लिटरली नॉट सो जवान शाहरुख खान की मूवी से ये जवान का गाना विच इज अ पावर पैक्ड गाना एंड आई शुड रियली से शाहरुख खान की एनर्जी जो है हर मूवी के साथ साथ बढ़ते जा रही है एंड वी रियली नीड टू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस गाय यार. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. सिंपली आफरीन का साथ है दिस ब्यूटिफुल मॉर्निंग एंड बहुत सारे गुड मॉर्निंग मैसेजेस ऑलरेडी मेरा इंतजार कर रहे हैं. जैसे रॉबर्ट डिसूजा आमची मुंबई से गुड मॉर्निंग कहते हुए, फिर उसके बाद है हरपाल संधू है गुड मॉर्निंग विशिंग यू ब्यूटिफुल डे अहेड. यू टू हरपाल जी. एंड आई ऑल्सो हैव अ लवली मैसेज हियर फ्रॉम इमरान सेइंग दैट दे सी द अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म बट आई एम द लकी वन बिकॉज आई गेट टू सेंड अ गुड मॉर्निंग टू माई फेवरेट वॉइस. आहा, मेकिंग माई गुड मॉर्निंग even more good. So, well, Alishan ka message hai saying very good morning and Azin ji ka have a good morning kehta hua message and a very very very very good morning to each and everyone who sent a message here as well as jo ab bhejne par hi hai. 5001-96 is my WhatsApp number. Let's connect here. Thode se positivity jo hai apne paas tak mat rakho. Pata hai mujhe aap bahut hi zabardast aura lekar chalte ho. Thoda yahan par bhi apna aura positivity bhej dijiye. Meanwhile, let's get on to our usual section, that is थोड़ा सा तापमान. सलमान पर नजर डाले.
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान.
2: Weather update.
0: Well, my friends, weather ये कह रहा है 42 degrees Celsius maximum, 30 per minimum. अभी जो humidity है, that is around 69% and 10 kilometer per hour पर, यानी धीमी-धीमी सी हवाएं चल रही हैं. All in all, देखिए आंकड़ों में तो weather कुछ ज़्यादा बदला नहीं है बट वी सर्टनली कैन फील अ डिफरेंस एंड आई एम टेलिंग यू माई फ्रेंड्स, वो एक दिन आएगा, सिर्फ ऐसा एक ही दिन होगा जब यूं चुटकी बजाकर ना वेदर इज गोना जस्ट टर्न लिटरली लाइक 360 डिग्रीज बिल्कुल. और वो दिन कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है. बस लेट्स स्टे पॉजिटिव एंड लेट्स मूव ऑन आवर डे. प्यार तो होना ही था का टाइटल ट्रैक, दोनों इतनी पावरफुल आवाजों में, रेमो फर्नांडिस एंड जसविंदर नरूला, याद है कितने गजब के सिंगर्स हुआ करते थे ये ना. एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: शिल्पा राव, आपका तो हर गाना हमारा फेवरेट है, लेकिन इस बारिश में आपका फेवरेट गाना कौन सा है?
3: आई लाइक दैट सॉन्ग।

0: आई फॉरगॉट द फिल्म्स नेम.
1: फिल्म का नाम था थक्षक और इस गायक का नाम शिल्पा राव. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
3: Festivities ki planning? It's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds kaafi hai. Ab sirf 25% pay karein and lock in your gold rate 8 November tak. Then if the price increases at the time of purchase, aap pa sakte hain the booked rate. Aur agar gold price drop hoti hai, you get the lower rate. Hai na enough reasons to start the celebrations already? To aaj hi apna price locked, gold secured kijiye with Malabar Gold and Diamonds.
4: भट्ट,
5: अरे भट्ट हूँ.
4: भट भट भट भट भट भट भट बाइक बहुत आवाज करती है.
5: खट खट हू दैट.
6: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1. इट्स हॉट.

सोनू निगम की आवाज, कविता कृष्णमूर्ति का साथ, ओ माय गॉड, एंड गुलजार साहब आपके लिरिक्स आर लिटरली गूज बम्स। यू थरोली एंजॉय द सॉन्ग, है ना? ऐसा मन ही नहीं किया कि यार दिस शुडंट एंड। एंड ऑफ कोर्स हाउ कैन यू नॉट टॉक अबाउट द सेवन स्टेजेस ऑफ लव, जो ये गाने में गुलजार साहब ने कितनी खूबसूरती से बताया है। उन्स, पहले तो दिलकशी, उसके बाद उन्स, फिर मोहब्बत, अकीदत, इबादत, जुनून, एंड द लास्ट स्टेज विच इज मौत। वाओ यार, आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस सॉन्ग। और अगर ऐसे ही गानों का सिलसिला को बढ़ाते हुए आगे आपको लगा कि नहीं अब ये गाने के बाद लेट्स गो यार, बस हो गया, बहुत अच्छा गाना था, सुन लिया जाते, देन यू आर गॉट टू वेट, बिकॉज लकी अली का गाना सुने बगैर तो आप कहीं जाओगे नहीं, राइट? सो कमिंग अप नेक्स्ट ट्रैक लकी अली की आवाज में। लेकिन आज किसी का अगर आज लकी वाला दिन है, यानी उनका हैप्पी वाला बर्थडे, एनिवर्सरी, और यू आर सेलिब्रेटिंग टुडे फॉर सम रियली गुड रीजन, प्रोबेबली द फर्स्ट टाइम यू केम टू कतर 10 years back this date or anything, just share with me 5001896। hum yahan jag zahir karenge, kyun nahi? jab tak ke liye agla gana enjoy kijiye on Mirchi It's Hot।

वेल, मेरे ख्याल से बदलते मौसम के साथ हमारे कतर का खूबसूरत वाला जो एरा है, आई मीन टॉकिंग अबाउट साल का वो पीरियड जहां पर इवेंट्स बहुत होते हैं, वो कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। And what could be better than some luxury? Well, I am talking about the 22nd Doha Jewelry and Watches Exhibition, which is now open at DECC. And it brings together more than 500 brands from around 30 countries. And DJWE, sirf finished jewelry shopping nahi hai. You get high jewelry, watches, international houses, hai, regional designers, hai, and special launches, everything under one roof. For visitors, practical info ye hai ki the exhibition jo hai, it runs through October 3rd. Weekday ke timings listed by Qatar Event Guides, which says that around 12 noon to 2 till 10 p.m. मतलब दोपहर के 12 बजे से लेकर 10 p.m. तक है, while Friday जो है दोपहर के 3 बजे खुलता है ये. And you know what the beautiful part is, that entry is absolutely free. बस registration जो होती है वो required होती है. And you know what, opening day पर ही, जैसा मैंने कहा था कि कोई ना कोई Bollywood से हमेशा यहाँ पर एक presentee लगाता है. And on the first day we saw Manish Malhotra, yes, the famous Indian designer, the fashion designer. He himself was there, हमारे Doha Qatar में, at Doha Jewelry and Watch Exhibition. So well, are you some really great fan of watches? कोई होते हैं जो बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं ये सारी चीज़ों के, and they just don't miss it. So अगर आप उन category में से हो, या फिर even if you are not, एक window shopping तो बनती है ना, why not? है ना? Mike से दिल तक आप्टीन है आपके साथ, and एक breathless गाना, you know whom I'm talking about, Shankar Mahadevan की आवाज़ में, and I'm so sure we have all tried this हमारे बचपन में and failed miserably, है ना? Enjoy this track on Mirchi It's Hot.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
0: यार मुझे नींद नहीं आती, क्या करूं?
1: इट्स सो सिंपल मैन, जस्ट डोंट वरी, पार्ट टाइम वॉचमैन का काम कर लो, एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी।
2: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: Mirchi Mornings.
1: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
2: 89.6
1: Mirchi One. It's hot.
3: वेल मिर्ची मॉर्निंग्स पर आफरीन तो जुड़ गई है आपके साथ और मिर्ची घड़ी का इशारा बताने आई है जो सुबह के 7:01 की तरफ हो रहा है। लेकिन बहुत अगले गाने के तरफ बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू से कि एक बार इस इंसान ने हमें आशिक बनाया था, हाँ जी, अब ये अफसाना बनाने आए हैं। एंड यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट, हिमेश रेशमिया इज बैक एंड नॉट ओनली अलोन, ये जो मैजिक है वो इमरान हाशमी के साथ में वापस ये गाना आया है। एंड इनफैक्ट वी कैन ऑल्सो सी जेनेलिया डिसूजा फीचरिंग इन, जेनेलिया डिसूजा कहो देशमुख कहो, यू नो हू आई एम टॉकिंग अबाउट फीचरिंग इन दिस सॉन्ग, सो एंजॉय दिस ट्रैक। एंड आई नो यार, एक जमाने में देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल जो हिमेश रेशमिया के फैन थे और है, एंड दे विल बी फॉर एवर। क्या आप उनमें से एक हो? Let me know. चलिए अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं।
1: Time check. In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.

क्या बात है यार, एक नहीं दो दो मेडल। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफरीन के साथ हैं आप ऑन दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। और एशियन गेम्स में टीम कतर की मेडल टाली तो हम कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं, है ना। और कल लेकिन एथलेटिक ट्रैक से एक नहीं दो दो मेडल्स आए हैं, एक ब्रॉन्ज एंड इनफैक्ट एक गोल्ड मेडल भी आया है। यस, सबसे पहले बासिम हमीदा जिन्होंने जीता है गोल्ड इन द मेंस 400 मीटर हर्डल्स एट द आईची नगोया एशियन गेम्स। और रेस पता है कितनी क्लोज रही है, आई टेल यू व्हाट। बासिम फिनिश्ड इन 47.82 seconds, while Japan के 17 साल के ताइजू गोटो finished in 47.93। मतलब gold और silver के बीच सिर्फ difference था 0.11 second। I can't even imagine this, right? बासिम के लिए ये win और special इसलिए भी है क्योंकि जो previous Asian Games था in Hangzhou, इस event में उन्होंने silver जीता था। So this time silver से officially upgrade हुए हैं ये Asian Games gold पर, and that's an amazing feat, I would say। और कतर के सेकेंड मेडल के बारे में बात करते हैं जो जीता है 22 ईयर ओल्ड जकरिया इब्राहिम ने, और वो भी मेंस 3000 मीटर स्टीपल चेस रेस में। और ये जो था उनका एशियन गेम में डेब्यू था, और इसमें डेब्यू गेम में ही वो एक मेडल जीत कर आए हैं। वेल, इन दोनों मेडल्स के बाद अगर टीम कतर के ओवरऑल टैली के बारे में बात करें तो अब 7 मेडल है कतर के पास, जहां 3 गोल्ड है, 2 सिल्वर है, एंड देयर इज 2 ब्रॉन्ज मेडल एज वेल। एंड मुझे बासिम की स्टोरी में एक चीज पर्टिकुलरली अच्छी ये कि पिछली बार सेकेंड प्लेस थे एंड इस बार फर्स्ट प्लेस। क्या बात है, कभी कभी प्रोग्रेस का मतलब हर बार कुछ नया अचीव करना नहीं होता है, सेम स्टेज पर वापस आकर एक स्टेप और ऊपर जाना भी होता है। कांग्रेचुलेशंस टीम कतर। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La fiesta la burga. Mirchi, burga.
2: Day. The person you are trying to urgently call is snoring and sleeping inside the hut.
3: Hello,
4: ये हंसा से मेरी बात कराओ भाई.
3: Hello, क्या बोल रही हूँ मैं?
4: श्रीनिवासपुरी से हेड कांस्टेबल दरबील सिंह बोल रहा हूँ.
3: हाँ जी.
4: आपके मोबाइल पे कल 3-4 मिस्ड कॉल आई थी.
3: आई तो थी, किसी की पता नहीं किसकी थी.
4: ना आपको पता ही तो नहीं चलेगा किसकी थी. आपको मालूम है आपने क्या किया है? आपने डायलर टोन ये क्या लगा रखी है? जे जे जे. 3 लोगों ने आपको कॉल किया है डायलर टोन सुन के. एक आदमी सीरियस है, एम्स में भर्ती है. मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको यही डायलर टोन मिली थी जे जे जे जे जे. ये दिल के मरीज के लिए कितनी खतरनाक है आपको ये पता है? 3 दिल के पेशेंट ने आपको फोन किया है और उनकी हालत खराब है. बेवकूफी की बात कर रही है.
3: मैंने अगर लगा रखा है, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी अगर कॉलर ट्यून उसको नहीं पसंद है तो मुझे फोन नहीं करे.
4: तो किसी को कैसे पता चलेगा कॉलर ट्यून कैसी है? नहीं है, मैं, मेरे को पता था. मैंने आपको कॉल किया, मेरा दिल हिल गया यार.
3: नहीं तो कौन सी लगाऊं मैं?
4: कितनी डायलर टोन है? तुम आए तो गली में आज चांद निकलता, या फिर ये लगा लीजिए, तुझे देखा तो ये जाना सनम. आपका
3: इस टाइप पता भी नहीं मेरे को किसने लगाई है मेरे पास.
4: दफा 300 ट्रिंग ट्रिंग के तहत ये बहुत बड़ा गुनाह है, मैं आपको ये बता रहा हूँ. दिल्ली में इस तरह की कॉलर ट्यून नहीं लगाएंगे आप, समझिए आप.
3: ठीक है, मैं क्या करूँ बताइए ना.
4: आप क्या कर सकते हैं? आप मुझसे बहस करे जा रही है.
3: और अगर कोई बीमार है मेरे कारण से थोड़ा ना बीमार होगा.
4: आपके कारण से हंसा, मैं आपसे आखिरी बार तमीज से बात कर रहा हूँ. एक लेडी कांस्टेबल आएगी और आपको खींचते हुए लेके आएगी यहाँ श्रीनिवासपुरी थाने में. फिर आपको बताएंगे कि कैसे कॉलर ट्यून लगती है. आप बहस करे जा रही है मेरे से.
3: अच्छा ठीक है सर, आप जो बोलेंगे.
4: आपको कॉलर ट्यून लगानी है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कौन सी कॉलर ट्यून लगाएंगी.
3: हाँ बताइए
4: आप कॉलर ट्यून लगाइए कुकड़ू को.
3: ठीक है सर, उसका मेरे को आप दे दीजिएगा. मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगी वो.
4: ये रेडियो मिर्ची से मिलेगी हमसा. और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुम्हारा मुर्गा बनाया है, मुझे राजीव ने तुम्हारा नंबर दिया था और तुम्हारी कॉलर ट्यून वाकई में खतरनाक है. जे जे जे.
3: यार आप लोग किसी दिन ना मतलब
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ. डिस्कवर करो वर्सेटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस. सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं.
7: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So,

0: Are you ready to make your school day a little more exciting?
1: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musty, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
0: This initiative is driven by GWM.
2: बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
3: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
4: कैसे रुक सकता है?
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6
5: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

कविता किशोरती की आवाज में ये गाना फ्रॉम द मूवी खामोश है। हाय व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। एंड दिल, ये दिल भी ना कमाल की चीज होती है। देखो ना, खुश हो तो कहते हैं दिल गार्डन गार्डन हो गया, किसी की याद आए तो दिल नहीं लग रहा, कोई पसंद आ जाए तो दिल आ गया, और कोई हर्ट कर दे तो सीधा बोलते हैं ना दिल तोड़ दिया यार, है ना। मतलब इमोशन सारे दिल के नाम, लेकिन जिस दिल एक्चुअल की वजह से, जिस एक्चुअल दिल की वजह से ये सब फील कर पा रहे हैं उसका ख्याल कितना रखते हैं आप बताइए। आज है वर्ल्ड हार्ट डे और इस साल वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन की कैंपेन थीम है डोंट मिस अ थीम, और इसका मतलब सिर्फ हार्ट बीट मिस होने से नहीं है, मैसेज ये है कि अपने दिल के सिग्नल्स जो है वो बिल्कुल मिस मत कीजिए, वार्निंग साइंस को इग्नोर मत करो, चेकअप्स को पोस्टपोन मत करो, और वो छोटी छोटी हैबिट्स जो होती है ना उसे मिस मत करो जो आपके हार्ट को बिल्कुल हेल्दी रखती है, बिकॉज हार्ट डिजीज कभी कभी लाउड वार्निंग के साथ नहीं आती है, हाई ब्लड प्रेशर जैसे रिस्क फैक्टर्स बिना ऑब्वियस सिम्टम्स को भी हो सकते हैं, है ना। PHCC भी वर्ल्ड हार्ट डे पर इसी प्रिवेंशन की बात कर रहा है, अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल पता कीजिए, रेगुलर मूवमेंट रखिए, हेल्दी वेट और डाइट पर ध्यान दीजिए, और अनएक्सप्लेन चेस्ट पेन, सडन ब्रेथलेसनेस है या अनयूजुअल हार्ट बीट को इग्नोर कैजुअली बिल्कुल भी मत कीजिए। एंड यू नो व्हाट, आज तो एक स्पेशल शाउट आउट बनता है उन कार्डियोलॉजिस्ट को, उन डॉक्टर्स को, उन नर्सेस को और हेल्थ केयर टीम्स को जो लिटरली हमारे दिल का ख्याल रखते हैं, और फिर उन लोगों को भी जो मेडिकली नहीं लेकिन इमोशनली हमारे दिल का ख्याल रखते हैं, है ना, जो दिल संभालते हैं और कोशिश करते हैं कि ये दिल को कभी ठेस ना पहुंचे। तो आज वर्ल्ड हार्ट डे पर एक काम जरूर कीजिए, आप जिन लोगों का दिल आपके लिए धड़कता है उनका ख्याल रखिए, और जिस दिल में वो सारे लोग रहते हैं उसका भी डोंट मिस अ बीट, और किसी अपने के दिल के बीट को भी फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, है ना। माइक से दिल तक आप ट्रेन है आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची, और जहां दिल की बातें कर रहे हैं, बॉलीवुड हैज सो मेनी सॉन्ग्स ऑन दिल एंड आई चूज टू पिक दिस वन। यस, सोनू निगम और हेमा सरदेसाई की आवाज में ये गाना ऑन मिर्ची थॉट।

0: 105.6.
1: It's hot.
2: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
3: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
4: यार तूने सुना, सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
5: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं। और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
6: अरे वाह, आइसक्रीम एंड केक लवर्स रेडी हो जाओ, डेरी क्वीन लाया है धमाकेदार स्पेशल प्रमोशन।
7: हाँ जी, 26 से 30 सितंबर तक एंजॉय करो अमेजिंग डील संडे सिर्फ QR 5 से, स्वर्ल्स QR 9 में, ब्लिजर्ड्स QR 10 से और केक सिर्फ QR 60 से।
6: तो देर किस बात की, अपने फेवरेट डेरी क्वीन आउटलेट पर जाओ और स्वीट मोमेंट्स बनाओ। डेरी क्वीन, हैप्पी टेस्ट्स गुड। तो देर किस बात की, सब कुछ आधे प्राइस में।
7: Back to school means more journeys, more traffic, and more reasons to drive with peace of mind.
8: With Bima, motor insurance starts from just QAR 400 with 24/7 roadside assistance, including towing, flat tire help, battery jump start, and lockout assistance. Plus, flexible payments and 7% cashback.
9: Call 800-0786 or visit bimaonline.com.
7: Bima for your peace of mind. Terms and conditions apply.
10: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew. So much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
6: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
10: This initiative is driven by GWM.

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसलिए मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन

0: Well, what a song इस गाने के बाद जुड़ गई है आपके साथ. अब मुझे ऑनेस्टली लगता है ना कि कोई भी पार्टी ना इनकम्प्लीट सी है जब तक कि ये ओरिजिनल वाला गाना नीरज श्रीधर और कविता सेठ की आवाज़ में कॉकटेल ओरिजिनल वाले गाने के ये मूवी का ये गाना तुम ही हो बंधु बचता नहीं है ना. आई थिंक सो द पार्टी इज नॉट ओवर येट है ना. माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची. और अगले हमारा जो सेगमेंट है उसकी तरफ हम बढ़ चुके हैं जिसका नाम है लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट. बॉस सीन सुनारियो सुपर ऊपर ईजी सीन है आज का, तो ठीक है ना. And you have to guess which movie is this scene from. Okay, so here it goes.
1: Lights, camera, scene test. Scene test.
2: Already बहुत complaints आ चुके हैं. पिछले साल भी इसी function पे बहुत तमाशा किया था तुमने. कृषि perform कर रहा है, very nice. इसमें क्या बड़ी बात है? There's no need to get so high. Hey, तू चुप कर. बड़ी अंग्रेज मती फिरती है.
0: काफी सारी यहाँ पे हिंट्स ऑलरेडी मिल गए हैं. आई थिंक सो दिस मूवी इज सो आइकॉनिक दैट वी कैन नॉट फॉरगेट द डायलॉग. काफी सारे मैसेजेस आ गए हैं जस्ट लाइक आर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट हमेशा की तरह. हुमैल और सुलेमान का मैसेज आ चुका है मुझे विद द राइट आंसर. एंड ये मूवी ना पूरा टाइप अगर नहीं भी करोगे तो मैं समझ जाऊंगी क्योंकि इस मूवी से ही तो वो शॉर्टकट्स शुरू हुए थे. नाउ यू नो व्हाट आई एम सेइंग राइट? नो आई एम श्योर. या चलो फिर सुखी भाजी की आवाज में गाना सुनते हैं. आई लाइक दिस सॉन्ग. या एंजॉय इट ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: Well, Honeymoon Travels, Travel with us का ये गाना and ये गाने पर मुझे KK Menon की performance इतनी मजे की लगी थी. He was the star of the song and having said that, I feel पूरे movie में भी I can easily say that this guy was definitely a star. वैसे इस movie की बात करूँ तो बमन इरानी, शबाना आजमी, अभय देओल, KK Menon, what fantastic या star cast था. कोंकणा सेन भी थी ना इसमें, if I am right. But yes, बहुत ही जबरदस्त स्टार कास्ट की ये मूवी एंड काफी अंडररेटेड भी थी. Very good morning and welcome back. आफरीन है आपके साथ ऑन मिर्ची राइट हियर, जहां हम सवाल जवाब का सिलसिला कर रहे थे और आपको सीन सुनाया था. आपने गेस करना था बॉस ये सीन है कौन सी मूवी से. ओके, सो हियर इट गोज.
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट.
2: ओके दीदी, वार्निंग, बिहेव योरसेल्फ. ऑलरेडी बहुत कंप्लेंट्स आ चुके हैं. पिछले साल भी इसी फंक्शन पे बहुत तमाशा किया था तुमने. कृषि परफॉर्म कर रहा है, वेरी नाइस. इसमें क्या बड़ी बात है? देयर इज नो नीड टू गेट सो हाई. ए, तू चुप कर.
0: That's how typical siblings are, है ना? बहनों के बीच ऐसी ही कुछ बातें होती है. So well, I don't know this for that because I am the only child. Okay, ये बात एक तरफ और हमारे सवाल जवाब की बात एक तरफ. यहाँ पर बहुत सारे answers आए हैं. Let's dive in straight to the answers here कि क्या है आज का.
3: मैडम गुड मॉर्निंग. हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग. कभी खुशी कभी गम. काजल मुखर्जी.
0: ओके,
3: और क्या बोला इसका करीना कपूर खान.
0: बिल्कुल सही है.
4: हाँ अख्तर
0: साहब, वेरी गुड मॉर्निंग. हाँ जी, दैट इज द राइट आंसर.
5: आफरीन एस्टेड हियर, गुड मॉर्निंग.
0: वेरी गुड मॉर्निंग.
5: कभी खुशी कभी गम,
0: दैट इज द राइट आंसर. एस्टेड,
5: काजोल, ऋतिक रोशन, थैंक यू सो मच.
0: हैव अ लवली डे. हैविंग सेड दैट, आई हैव अ लॉट ऑफ मैसेजेस हियर. सुलेमान, कुमेल, चार्ली, इनका मैसेज तो आया ही है हर रोज की तरह. देन आई हैव योर, ये कौन है भाई, रहमान का मैसेज अभी अभी आया है और बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम मुझे नहीं पता. मोहसिन ने मैसेज किया है. देन आई हैव, हु इज दिस, अपना नाम अगली बार से लिख लो यार, बहुत मेहनत करवाते हो ना आप लोग. हुज़ैब का मैसेज आया है. एंड यस, द लिस्ट इज क्वाइट लॉन्ग. वेल, जहाँ कभी खुशी कभी गम की बात छिड़ी है तो अगला गाना वन ऑफ माई फेवरेट. एंड करीना कपूर इज लुकिंग सो स्टनिंग ना इन दिस एंटायर मूवी.
6: हाँ, जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा.
0: ओहो, ओह माय गॉड. एंजॉय दिस ट्रैक ऑन रिचिट्स हार्ट.

0: are you?
1: Hello, Mirchi Helpline.
2: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
1: सर, मैं जब भी घर आता हूँ ना, पापा जाग रहे होते हैं, सोते ही नहीं है, तो क्या करूँ?
2: अच्छा, पापा जाग रहे होते हैं, तो एक काम कर, चोरी करने दूसरों के घर जा बच्चू।

0: Mirji Mornings with Mirji Afreen. It's hot.
1: 89.6
0: Mirji One. It's hot.
2: वेल मिर्ची मॉर्निंग्स पर आफरीन तो जुड़ गई है आपके साथ, लेकिन जबरदस्त गाने लाइंड अप है। और उससे पहले बता दूं, मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 8:03 की तरफ, एंड साज भट्ट और सुबोध शर्मा की आवाज में तेरा मेरा रिश्ता कंटिन्यूस। हाँ, रेडियो पर तो कंटिन्यू होता रहेगा, लेकिन आवारा पंटू का ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

0: वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. जुड़ गई है आपके साथ What a beautiful morning and also I can say what a lucky morning उन लोगों के लिए जो आज सुबह में ना बिल्कुल मन बना लिए थे कि आज तो देखो आज हमने कोई एक डिसीजन लेना है इन्वेस्टमेंट का. और ऐसे में जब गोल्ड रेट्स आपको दिखे कि अरे ये तो काफ़ी टाइम से ऑल टाइम लोएस्ट पर नज़र आ रहा है, सो बस यू नो वेयर टू हेड टू. एंड हैविंग सेड दैट, यू नो वेयर आई एम हेडिंग टू.
1: गोल्ड अपडेट.
0: यस, गोल्ड अपडेट आज का कुछ ये है दैट 1 ग्राम पैम्प गोल्ड बार इज फॉर 560 कतरी रियाल. उसके अलावा 5 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 2620 कतरी रियाल. 10 ग्राम इज फॉर 5170 कतरी रियाल. 1 आउंस गोल्ड बार इज फॉर 15978 कतरी रियाल. वेयर एज 10 तोला पैम गोल्ड बार इज फॉर 59,308 कतरी रियाल. ये थे आज के गोल्ड रेट्स. सो सोना लेना हो नहीं लेना हो लेकिन भाव पे नजर जरूर रहनी चाहिए ताकि आप सही वक्त पर डिसीजन ले पाए. माइक से दिल तक आप फ्रीन के साथ बने रहिएगा. और मिर्ची, इट्स हॉट.
2: Stay ahead of today's gold rates with Alfardan Exchange, PAMP's official agent in Qatar. Buy authentic Swiss-made 24-carat PAMP gold bars
3: and earn Qatar Airways Avios today.
2: Visit our branches or download the app now.

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. हेलो हाँ जी बोलिए
2: क्या बोलूँ जी आप बोलिए
1: आप बोलिए ना
2: कॉल आपने किया आप बोलिए
1: कॉल मैंने किया है हेलो
2: अरे बोलो भाई कॉल तुमने किया बोलो क्या हुआ
1: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार मैं यहाँ सो रहा हूँ आपने मुझे कॉल कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार आपने नंबर मेरा डायल किया है मेरे घर बेल बजी है यार
2: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा अरे फोन मैंने नहीं किया यार
1: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार मेरे यहाँ भी बेल बजी है
2: नींद में क्या
1: मैं नींद में ही था आपने डिस्टर्ब कर दिया मैं देख रहा हूँ नंबर
2: क्या बेल मेरे यहाँ बजी
1: है आ जाते हैं उनके मैं तो फोन काट रहा हूँ फोन रखी चले हेलो हाँ बताइए
2: मेरी जेब में फोन रखा होगा वो बटन दबा होगा बार बार
1: बात करनी है तो बात कर लीजिए आप दो बार फोन कर चुके हैं आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है आप बताइए मुझे प्लीज क्या काम है हेलो
2: फिर
1: यार आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार मैं आपसे प्यार से बात करे जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं
2: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम मैं फोन नहीं कर रहा
1: तो आप गाड़ी चलाइए नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए आप अपना काम करिए फोन मत करिए मुझे कम से कम यार फोन मत करिएगा बस यहाँ पे
2: फोन नहीं कर रहा
1: मैं आप देख बदतमीजी से बात मत करिए आप समझ गया मैं यहाँ से लेफ्ट चाटा मार दूंगा बता रहा हूँ मैं यहाँ से हटा मेरे चप्पल लेके आ ये मेरे हाथ में चप्पल है मैं बता रहा हूँ मैं
2: चप्पल
1: पता नहीं कहाँ कहाँ से आता है मैं सो रहा हूँ यहाँ पे फोन
2: क्यों जीना आराम कर दिया तुम जैसे
1: जीना बता रहा हूँ भाग यहाँ से इस बार अगर कर दिया ना बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा चप्पल है मेरे हाथ में
2: फोन आ रहा है मेरी फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले
1: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ मेरी बात सुनिए अभिषेक मैं

0: रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारी आवाजें सारी बाहर आ रही हैं, तुम मुर्गा बन गए हो। ये सारी कॉल्स मैंने करी थी।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट,
2: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सेटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
3: यार शॉपिंग का प्लान है पर बजट थोड़ा टाइट लग रहा है।
4: अरे रिलैक्स, लूलू का हाफ पे बैक ऑफर सुना है।
3: हाफ पे बैक मतलब?
4: बस QAR 200 की शॉपिंग करो और QAR 100 का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली।
3: वाओ, किस किस चीज पे?
4: रेडीमेड गारमेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग और बेबी एक्सेसरीज।
3: मतलब शॉपिंग भी सेविंग भी?
4: बिल्कुल, वाउचर भी इन्हीं कैटेगरीज में रिडीम कर सकते हो, तो देर किस बात की। हेड टू लूलू, हाफ पे बैक ऑफर के साथ डबल फायदा। लूलू, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
5: Craving pizza? Papa John's has the ultimate deal for you. Buy any one pizza and get one pizza absolutely free. Yes, valid on all pizzas. Aapki choice ki lower price pizza bilkul free ho jayegi. Offer valid only from 26th to 30th September. So tension mat lo. Order now from Papa John's and double the tasty fun. Valid on all pizza sizes. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
6: खट खट।
7: कौन है?
6: अज्जू।
7: अज्जू कौन?
6: अज्जू ना आए बालमा, सावन बीता जाए। होए।
7: खट खट, हु दैट?
1: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। इट्स हॉट।

क्या बात है, ये क्या देख रही हूँ मैं? के मंथ एंड तक आने तक आपका यहाँ पर छोटा सा इंक्रीमेंट हो गया है. वेल 29th ऑफ सितंबर आज की तारीख, और आज के ये पूरे महीने में ये मैं कह सकती हूँ कि भाई हमने एक्सचेंज रेट में हल्की हल्की सी बढ़ोतरी तो देखी है, लेकिन टुडे बीइंग एट इट्स हाईएस्ट, इंडियन करेंसी की बात कर रही हूँ मैं. सुनना नहीं चाहोगे कि क्या है? वेल, एक कतरियाल के बदले मिल रहे हैं आपको इंडियन रुपीज 26.30. यस, यू हर्ड राइट. इसके अलावा पाकिस्तानी रुपीज जनाब आपको मिल रहे हैं 76.10. बांग्लादेशी टाका है 33.71 के तरफ, और श्रीलंकन रुपीज जो है एक कतरियाल के बदले आपको मिल रहे हैं 90.73, एंड नेपाली रुपीज इज एट 42.12. ये थी आज के एक्सचेंज रेट. घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियां, खुशियों का नंबर वन फॉर्मूला 89.6. But she won. It's hot.

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
3: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं। और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: don't miss out. Visit your nearest Lulu hypermarket and make your anniversary shopping extra special. Lulu hypermarket, where the world comes to shop.
1: अरे वाह, आइसक्रीम एंड केक लवर्स रेडी हो जाओ, डेरी क्वीन लाया है धमाकेदार स्पेशल प्रमोशन।
2: हाँ जी, 26 से 30 सितंबर तक एंजॉय करो अमेजिंग डील्स। संडे सिर्फ QR 5 से, स्वर्ल्स QR 9 में, ब्लिजर्ड्स QR 10 से और केक सिर्फ QR 60 से।
1: तो देर किस बात की, अपने फेवरेट डेरी क्वीन आउटलेट पर जाओ और स्वीट मोमेंट्स बनाओ। डेरी क्वीन, हैप्पी टेस्ट्स गुड। तो देर किस बात की, सब कुछ आधे प्राइस में।
3: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
1: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

well, मुझे ना ये कॉम्बो बहुत अच्छा लगता था। अरे मैं सुनिधि और केके के बारे में बात कर रही हूँ। ये दोनों जब एक गाने में आते थे ना, गाने का लेवल बहुत ही ऊपर चला जाता था। एंड टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सॉन्ग फ्रॉम द मूवी कुछ तो है, तुषार कपूर की ये मूवी थी, डजंट रियली मैटर बिकॉज हमें याद भी नहीं है ना, बट ये गाना हमें जरूर याद है। एंड ये इसकी टिंग रिंग रिंग रिंग, ये जो म्यूजिक से ही एकदम से हम पहचान लेते थे कि अरे दिस इज द सॉन्ग। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आफरीन है आपके साथ। और मैंने म्यूजिक की बात इसलिए करी क्योंकि मेरे मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स से भी ऐसी ही कोई धुन निकली है। और ऐसा कई बार होता है ना कि सिर्फ गाने की ऐसी कोई म्यूजिक आए, धुन आए और हम गाना पकड़ लेते हैं। बट क्या आप ये वाला गाना पकड़ सकते हो? मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स, एग्जैक्टली ये अब मैं एक धुन सुना रही हूँ, ठीक है। इट इज फ्रॉम अ सॉन्ग, सॉन्ग के बीचों बीच में से एक ऐसी धुन है एंड यू हैव टू गेस विच सॉन्ग इज दिस, ठीक है। सो हियर इट गोज। बताओ बताओ बताओ कौन सी म्यूजिक थी ये, कौन सा गाना है ये, फिर से सुनाओ क्या? ऐसे कई बार होता है ना कि अरे यार ये तो सुना सुना सा है, इट्स सो फेमिलियर, पर ना बिल्कुल ध्यान में आता नहीं है। लेकिन कई सारे लोग हैं जिनके ध्यान में ये आ गया है, जैसे जॉनसन हैज मैसेज्ड अस द राइट आंसर, और फिर बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। आई कैन सी टाइपिंग ऑल्सो 5000196 बाय द वे इज माई नंबर, व्हाट्सएप नंबर इज 5000196। और अगला गाना वॉन्टेड मूवी से, आए हाय भाई का जलवा है बॉस, फिलहाल बहुत जलवा दिख रहा है भाई का बिग बॉस में, देख रहे हो क्या? Enjoy this track right here on Mirchi, it's hot.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अभिजीत सावंत, जब भी आपके बारे में सोचते मोहब्बतें लुटाऊंगा यही याद आता है। बारिशों के लिए एक अलग

वेल दैट इज इश बॉय बादशाह, बादशाह की आवाज में ये गाना, राइटर और मिर्ची और साथ देते हुए शर्व यादव और मैं आ गई हूँ आपके साथ। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफ्टरनून का साथ है दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स गेम खेल रहे थे हम, जहां पर बहुत लोग अटक गए हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है, इट्स जस्ट एट द बैक ऑफ आवर माइंड एंड वो आगे नहीं आ रहा है, ऐसा होता है ना। ऐसे कुछ अभी वापस होने वाला है। सुनो, मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स पर एक धुन सुना रही हूँ और आपने बताना ये गाना कौन सा है। इट्स अ वेरी फेमस सॉन्ग यार, मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स। ओके ओके, कौन सा गाना है ये, फिर से सुनाऊं क्या थोड़ा सा? ऑल राइट, 5000 1896 इज माई व्हाट्सएप नंबर, इन केस अगर अभी भी आपको आंसर करना है। लेकिन अभी जो आंसर है आपको ये यहाँ पर लिख कर करना पड़ेगा, ठीक है? आप वॉइस मैसेज ना भेजे, ठीक है? तो ये तो वो गाना था ना यार, अपने किंग खान का, जुतवाई सज के मेहंदी रज के चल बज के ओ सोनी, ये दिल कितनों का खाए दज के ओ सोनी। आई एम अ टेरिबल सिंगर बट हु कैन नॉट स्टॉप सिंगिंग दिस सॉन्ग। सो वेल, कल होना कह के ये गाना माही वे, मोहम्मद यूसुफ खान का यहाँ मैसेज आया है। देन आई हैव जॉनसन मैसेजिंग मी, बट देन आई हैव सम पीपल सेइंग दैट मेरे महबूब मेरे सनम। नहीं यार, वो कैसे हो सकता है? सो विथ दिस, चलिए ये गाना बजा ही दो ताकि आपको याद आए कि ये म्यूजिक कहाँ ये गाने में आती है। आती है ना वो इमोशनल पार्ट जहां जया बच्चन गाती है, अभी याद आया कुछ? वेल, साधना सरगम, सुजाता भट्टाचार्य, आओ दत्तारायण की आवाज में एंजॉय दिस ट्रैक राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी, बिल्कुल बताइए, सवाल क्या है?
0: सर वो मुझे हेल्दी डाइट शुरू करना है, कैसे करूं?
1: अरे तो सिंपल है ना, ब्रेकफास्ट से स्टार्ट कर। मैं भी सबसे पहले ब्रेकफास्ट ही करता हूँ।

0: कृष्णा की आवाज में ये प्यारा सा गाना और कुछ गाने जो है दिल में एक जगह बना लेते हैं। आई थिंक सो दिस इज वन ऑफ दोस ट्रैक्स एंड नो हेटर्स, हो ही नहीं सकते इस गाने के कोई हेटर्स, है ना। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून को राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और अगले गाने की तरफ जब मैं बढ़ रही हूँ उससे पहले बताना चाहूंगी अबाउट दिस मूवी विच आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू, एंड दैट इज हमारे सूरज बरजाटिया, लेकिन यानी वो इंसान जिसने हमें एक्चुअली इनडायरेक्टली ना फैमिली वैल्यूज सिखाए कि कैसे होती है एक बिग हैप्पी फैमिली, किस तरह से एक फैमिली में ट्रेडिशंस, रिस्पेक्ट, कल्चर, ये सारी चीज़ें होती है, और वो भी अपने मूवीज़ के थ्रू। एंड दैट इज़ हम आपके है कौन हो गया, हम साथ साथ हो गया, और ऐसी ही कुछ मूवी अब आने वाली है बट अपने एक नए अंदाज में, वक्त के साथ थोड़ा आगे बढ़ते हुए, थोड़ा सा मेरे ख्याल से नए स्टार कास्ट, ऑफकोर्स थोड़ा नहीं इनफैक्ट पूरी तरह से, दैट इज आयुष्मान खुराना के साथ, शर्वरी के साथ, एंड आई फाइंड द पेयरिंग सो क्यूट ऑनेस्टली। शर्वरी तो स्क्रीन प्रेजेंस उनका बहुत ही बहुत खूबसूरत है, ग्रेसफुल है, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। एंड व्हेन इट कम्स टू सूरज बरजाटिया ना, तो वो बहुत हर चीज में एक ग्रेस लेकर आते हैं, एलिगेंस लेकर आते हैं, एंड येस द मूवी इज ये प्रेम मोलिया, जिसका टाइटल ट्रैक अब मैं प्ले करने वाली हूँ श्रेया घोषाल निहाल टोरो की आवाज में, एंड इट्स गोना टेक यू बैक इन 90s, थोड़ी सी वाइब जरूर देता है, इन फैक्ट आई कुड से अर्ली 2000 बिकॉज इट हैज हिमेश रेशमिया की म्यूजिक।
1: मिर्ची फ्रेश माल,
2: मोहब्बत के हर रंग का एहसास, ये प्रेम मोलिया।

इस गाने को गाया है श्रेया घोषाल और निहाल तौरो ने, म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने और लिरिक्स लिखे हैं कुमार ने। सुनते रहिए ये प्रेम मोल लिया, टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। So well, all the football fans out there, assemble here, क्योंकि खबर ये आपके लिए है। Very good morning and welcome back. आप सुन रहे हो Simply Afreen को, एंड क्योंकि आप फुटबॉल फैंस हैं, ये खबर आप तक तो पहुंच गई रहेगी, लेकिन जो फुटबॉल इतनी करीबी से नहीं देख रहा है लेकिन फिर भी दिल में कहीं ना कहीं है, उनके लिए ये जरूर खबर है दैट टीम कतर के लिए अब गल्फ कप से गुड न्यूज आई है। अल अनबी आर ऑफिशियली थ्रू टू द सेमी फाइनल्स। क्या बात है। वेल, कतर ने जद्दा में यमन को 1-0 से बीट करके अरेबियन गल्फ कप के सेमीफाइनल्स में अपनी जगह कंफर्म कर ली है। मैच के ओनली गोल केम इन द 64th मिनट फ्रॉम यूसुफ अब्दुल रजाक आफ्टर अ क्रॉस फ्रॉम सुल्तान अल ब्रेक। कतर के पास लीड और बड़ी करने के चांसेस भी थे बट अकरम अफीफ मिस्ड अ पेनल्टी। बट बिगर पिक्चर देखिए, ओपनिंग मैच में कतर ने डिफेंडिंग चैंपियंस बहरीन को 2-0 से बीट किया था और अब यमन के अगेंस्ट विंस दैट two matches, two wins, 6 points and a semi-final spot secured. UAE भी 6 points के साथ semi-finals में qualify कर चुका है, but goal difference की वजह से currently group में Qatar से ahead है। और अब interesting match है Wednesday, Qatar versus UAE. Yes, दोनों already qualifying कर चुके हैं, qualify यहाँ पर कर चुके हैं, तो ये match decide करेगा group B में top कौन करेगा। So qualification का pressure तो खत्म, but अब नजर group के number one spot पर है। Congratulations team कतर, वेनसडे के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मैं हूं आप, रीन आपके साथ माइक से दिल तक, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana.
2: Cabana.
1: Murga, murga. La fiesta la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Hello.
4: Hi. से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
3: हेलो।
4: हाय, ये से फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4198393।
5: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार? अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं। आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं? आपका
3: तो वही मैं सुधरा था, मतलब।
4: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339। हो गया।
3: हाँ जी।
4: कुकड़ू को
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
7: नीड टू सेंड मनी होम? मेक इट फास्ट, मेक इट सेफ, मेक इट अल फरदान एक्सचेंज,
8: योर ट्रस्टेड चॉइस फॉर सेंडिंग मनी, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज एंड गोल्ड बार्स एंड कॉइन्स। विजिट आवर नियरेस्ट ब्रांच और डाउनलोड द अल फरदान एक्सचेंज ऐप नाउ। फॉर असिस्टेंस कॉल और व्हाट्सएप 4453777।
9: यार, शॉपिंग का प्लान है पर बजट थोड़ा टाइट लग रहा है।
10: अरे रिलैक्स, लूलू का हाफ पे बैक ऑफर सुना है।
9: हाफ पे बैक मतलब?
10: बस QAR 200 की शॉपिंग करो और QAR 100 का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली।
9: वाओ, किस किस चीज पे?
10: रेडीमेड गारमेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग और बेबी एक्सेसरीज।
9: मतलब शॉपिंग भी, सेविंग भी।
10: बिल्कुल, वाउचर भी इन्हीं कैटेगरीज में रिडीम कर सकते हो, तो देर किस बात की। हेड टू लूलू, हाफ पे बैक ऑफर के साथ डबल फाइव

ऑल द पेरेंट्स आउट देयर, मुझे बताओ यार, बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए जब आप ले जाते हो, छोटे जो होता है ना चिंटू से, तब आपको भी बहुत दिल में ऐसे धक धक होता है ना कि यार कैसे? मेरे ख्याल से ना बच्चों से ज्यादा प्रिपरेशन ना पेरेंट्स की होती है. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. एंड वेल, टॉकिंग अबाउट वैक्सीनेशन, सिद्रा मेडिसिन अब लॉन्च किया है एक न्यू सर्विस जिसे कहते हैं पीडियाट्रिक प्राइवेट होम विजिट्स, वेलनेस एंड वैक्सीनेशन. हाँ जी, जहाँ एलिजिबल चिल्ड्रन को सर्टन रूटीन पीडियाट्रिक केयर घर पर ही मिल सकती है. हाउ कन्वीनियंट इज दैट? एंड इट्स नॉट ओनली वैक्सीनेशन. सिद्रास पीडियाट्रिक टीम कैन डू रूटीन वेलनेस assessments, growth and developmental monitoring, feeding guidance or parents education and scheduled childhood vaccinations depending on the child's need. अब एक important clarification ये है, ये automatically कतर के हर child के लिए open home call service नहीं है. It's currently eligible for Sidra medicine patients and every request पहले clinical review से गुजरता है to make sure के home care is safe and appropriate. Availability भी operational capacity पर depend करेगी. And this is for routine care, not emergency or urgent medical conditions. So, अगर आपका child Sidra का patient है या आप जानना चाहते हैं कि your child is eligible or not, you can check directly with Sidra on 400-333-333. I repeat, Sidra का number है 400-333-333 पर आप check कर सकते हैं if your child is eligible for this routine home check. Okay, and I quite like the idea though, healthcare को family के लिए थोड़ा मोर कन्वीनियंट बनाना विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन वेदर इट्स मेडिकली अप्रोप्रिएट. बस एक प्रॉब्लम सिद्रा सॉल्व नहीं कर पा सकता, दैट इज वैक्सीन घर पे हो या हॉस्पिटल में, इंजेक्शन देकर मुझे नहीं लगवाना, रोना धोना बच्चों का, वो टेंट्रम शो करना वाला सीन. आई एम श्योर हर पेरेंट इससे गुजरता ही है ना. माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, सिंगापुर में गवर्नमेंट रील से बच्चों को छुटकारा देने के लिए उनको पढ़ने के पैसे दे रही है।
3: इसका मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ते वक्त नोट्स नहीं नोट बनाते हैं, और वहाँ पे ना यार पीटीएम नहीं पीएमटी होता है, यानी कि पर मिनट ट्रांजैक्शन।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
5: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musty, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
4: This initiative is driven by GWM.

0: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
1: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार बार बार कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: पता है दोस्त, अच्छा इंसान होने के लिए ना कोई बड़ी बड़ी बहुत सारी ऐसी चीजें करनी जरूरी नहीं होती। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। और देखो ना, मुझे ऐसा लगता है कि कभी किसी की खुशी की वजह बन जाना और कभी किसी के बुरे वक्त में बस उसके साथ खड़े रह जाना, आई थिंक सो काफी है ना। बस इसी ख्याल पर आज के आफरीन की डायरी से चंद लाइंस है।
1: आफरीन की डायरी से शायरी।
0: तो अर्ज किया है कि चेहरों के भीड़ में एक किरदार होना, मतलबों की दुनिया में एक बेगर्ज होना, किसी की खुशी का सबब किसी का गम का हमदर्द होना। तो किसी की खुशी का सबब किसी के गम का हमदर्द होना, दुनिया से मिले चाहे कितने भी जख्म, दुनिया से मिले चाहे कितने भी जख्म, फिर भी किसी के लिए मरहम होना। शायद शायद यही तो है सिर्फ जिंदा नहीं सच में इंसान होना। हाउ नाइस थॉट यार। मतलब ये जो शायर और राइटर्स जिस तरह से लिखते हैं, आई एम सच ए ह्यूज फैन ऑफ इट। इतनी गहरी बात इतनी खूबसूरती से, वाओ। किसी के लिए मरहम होना, बस ये लाइन आज के लिए मेरे ख्याल से काफी है ना। एंजॉय दिस ट्रैक राइटर ऑन मिर्ची। माइक से दिल तक आप शीन है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: भूमि पेडनेकर, हमारे स्कूल में तो टॉयलेट में जाके टॉयलेट करते थे, आपके स्कूल में क्या करते थे?
3: In our school, toilet used to be the place जहाँ पे सब जाके romance करते थे. That used to be the spot in my school.
4: Toilet?
3: हाँ.
4: School था, कंजर खाना खोला हुआ था.
3: तो दोनों.
2: इसी कहानी से मुझे लगता है टॉयलेट एक प्रेम कथा का नाम रखा होगा. नहीं, आप सुन रहे थे अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर को ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
5: Back to school means more journeys, more traffic, and more reasons to drive with peace of mind.
6: With Bima, motor insurance starts from just QAR 400 with 24/7 roadside assistance, including towing, flat tire help, battery jump start, and lockout assistance. Plus, flexible payments and 7% cashback. Call 800-0786 or visit bimaonline.com.
5: Bima for your peace of mind. Terms and conditions apply.
7: Arey ba, ice cream and cake lovers, ready ho jao. Dairy Queen laya hai dhamakedar special promotion.
5: Hanji, 26th se 30th September. Enjoy karo amazing deals Sunday sirf QR 5 se Swirls QR 9 mein Blizzards QR 10 se aur cake sirf QR 60 se
7: to der kis baki apne favorite Dairy Queen outlet par jao aur sweet moments banao Dairy Queen happy tastes good to der kis baki sab kuch aadhe price mein
8: Palwani to sirf chore kare
9: mari choriyan choron se kam hai ke
10: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
11: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
12: 89.6
13: FM मिर्ची वन इट्स हॉट.

0: Well, that is Bombay Vikings, yani Neeraj Sridhar ki awaaz mein ye gaana. And whenever I hear to some 90s indie pop gaana na, seedha le chalta hai mujhe mere nostalgic days mein. And right now, I think so, I am seeing myself right now. Wo kaise? Main batati hu aapko. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची और GWM के साथ में, जो हम मिर्ची रिचार्ज कर रहे हैं, स्कूल विजिट्स कर रहे हैं. और इस बार स्टूडियो में फिलहाल मेरे स्कूल के बच्चे आ गए हैं यहाँ पर. और मेरे स्टूडियो में स्कूल के बच्चे आ गए हैं. आई सॉ दैट एक्सप्रेशन ऑन योर फेस डार्लिंग. सो बहुत सारे बच्चे हैं एंड आप लोग को देखकर ना मुझे नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है. इट्स टेकन मी बैक टू माय स्कूल डेज. एंड that one thing I feel there is a huge difference between us and these kids are ke bhai clarity of thought kya hoti hai na, ye cheez inhone mujhe sikhai hai. Bahut der inse baatein ki, sawal jawab hue, kya kya hua, sab baatein karenge right here. Mere sath aap bane rahiyega, lekin filhal kaun hai mere sath, let me introduce them. Come here.
1: Hello.
0: Hi, what's your name?
1: My name is Nihal.
0: Nihal, and you are from?
1: I'm from Loyola International
0: School. Yes, Loyola International School ke bachche aaye hain, and Nihal is the head boy.
1: Yeah, I'm the head boy.
0: Right, and we have with us.
2: Hello, my name is Mridula.
0: Hi, Mridula.
2: International School.
0: Loyola International School, and you are?
2: The head girl.
0: Head girl, fantastic. And we have with us.
3: Raghav.
0: Raghav is here, and.
4: I'm Trisha, and I'm from. Loyola International School.
0: Lovely. So we have four kids here, grade 12 से हैं, grade 11 से भी हैं. And इनके इतने जबरदस्त सवाल से मुझे ऐसा लग रहा था कि यार सही में बचपन में जब हम स्कूल में थे ना, seriously जब टीचर क्लास में पूछती थी ना पूरा लेक्चर समझाने के बाद कि do you have any questions, तब ऐसा लगता था कि यार सवाल पूछू नहीं पूछू, इतने ख्याल आते थे. वो एक ओवर थिंकिंग, वो एक डर, वो सब कुछ रहता था. बट दीज किड्स, आई जस्ट लव देयर एनर्जी. एंड हैविंग सेड That, आप लोगों को कैसा लग रहा है ये रेडियो स्टूडियो में आकर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम? एंड डू यू रियली, राघव प्लीज कम हियर एंड टेल मी के डू यू एक्चुअली लिसन टू रेडियो? बिकॉज ये जनरेशन जो है वो स्पॉटिफाई और इतने सारे एप्स में है. सो डू यू फील एनी कनेक्शन? रेडियो कैसा लगता है? बिकॉज आई एम श्योर योर पेरेंट्स आर रियली कनेक्टेड विद रेडियो.
3: Well, to be honest, I don't particularly listen to radio myself.
0: Okay.
3: But my dad always plays it when we go on the car.
0: Yes.
3: So, I've been influenced by it since when I was young, so I naturally feel a connection with it.
0: All right, anyone here who listens to radio with their parents, and I'm sure the parents are the one who is putting that influence. Anyone here?
5: Yeah.
0: Yes, Trisha, please tell me.
4: It was amazing. My parents told me about radio and everything, and it's amazing to see what goes back and.
0: All right.
4: Behind the scenes
0: of radio.
4: Yes.
0: Fantastic. With this, मैं हूँ आफरीन, आपके साथ लेना चाहूंगी अलविदा. और ये जो अलविदा है स्कूल किड्स के साथ में, ये यहाँ पर खत्म नहीं होता है, क्योंकि मिर्ची जो है ये हर हफ्ते अब सिलेक्टेड स्कूल्स में जाकर अपना धमाल मचा रही है. एंड द नेक्स्ट स्कूल could be your kid's school. And if you want that to happen, 5001896 is my WhatsApp number. Let's connect here and tell me ke yaar Afreen, hamara bachcha to ye school mein padhta hai, aap udhar bhi jaiye aur zara dhamal kijiyega, hum pahunch jayenge. Tab tak ke liye apna khayal rakhiyega. And Sonu Nigam aur Shreya Ghoshal ki awaaz mein playing the next track for you from the movie Khaki. Enjoy it on Mirchi. It's hot.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: ये जब से मुझे चश्मा लगा है नंबर बढ़ता ही जा रहा है, इसे कैसे रोकूं?
1: अरे सिंपल है ना मामू, पहली फुर्सत में चश्मा निकाल के साइड में रख दो ना, प्रॉब्लम सॉल्व।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: नारायण सुनीता राव की खूबसूरत सी आवाज और व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज फ्रॉम द फिल्म गुप्त। एंड सच कहूं, जब आपने कहा कि आपको एक दोस्त की जरूरत है तो भाई तुमने पुकारा और हम चले आए। चलिए दोस्ती की बातें होंगी, बहुत खूबसूरत सी ये शुरुआत होगी। हैविंग सेड दैट, सबसे पहले वक्त का पता ठिकाना जरा मैं आपको बता दूं। मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 10:07।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: देखिए दोस्त, अगर शब्द की मैं बात करूँ ना, जिंदगी में इसके बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारे मायने।
2: मिर्ची अंशु
0: वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए दोस्त तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी में फिर से लौट चुकी हूँ। एंड बस सुबह सुबह जब आज इतना खूबसूरत सा गाना मैंने आपको सुनाया, तो कोई तो ख्याल है, कोई तो थॉट है जो इंस्टेंटली अगर मुझे कहीं लेकर गया तो वह है फ्लैशबैक। अपने स्कूल एंड कॉलेज टाइम की दोस्ती की बात करी हूँ। आज चाहे बड़े होने के बाद, अपने अपने करियर में सेटल होने के बाद, हम कितने भी लोगों से क्यों ना मिल लें, कितने भी लोगों से हमारा राबता क्यों ना हो, हम नए कनेक्शंस रिश्ते क्यों बना लें, लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है जो दोस्ती जो फ्रेंडशिप हमने स्कूल या कॉलेज टाइम्स में की है ना यार भाई, उससे खूबसूरत कोई और हो ही नहीं सकती। क्योंकि बात इतनी है ना, उस दौर पर जब हम किसी से मिला करते थे तो कुछ इस तरह से मिला करते थे कि भाई उससे मैं ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं थी, बड़े छोटे का कोई पैमाना कोई नापने का तौर तरीका नहीं था, जो है तू है और तू मेरा यार है। बस भाई यारी में इतना ध्यान रखना कि जब जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए मुझे सही जवाब ना आए तो पलट के मेरी ओर देख लेना। माँ बाप को जब प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाए तो कुछ करना मत करना, मेरे बहाव में जरा झूठ बोल देना। एंड जो बचपन की यादें तुम और हम मिलकर इतनी खूबसूरत तरह से संजो रहे हैं ना, उसे कुछ इस तरह से पिरोना कि जिंदगी के पन्नों को मैं जब जब पलट कर देखूं तो सबसे खूबसूरत यादों में वो तेरा और मेरा साथ हो। और ज़रूर चलिए, जब मैंने ये सारी बातें कही तो क्या आपके जहन में आपके स्कूल या कॉलेज टाइम का कोई दोस्त आया? अगर आया तो कौन आया? यू नो आई वुड वॉन्ट टू नो अबाउट योर स्टोरी। आई हैड अ बेस्ट फ्रेंड कॉल्ड मोना खनूजा एंड आई वॉज एन एब्सोल्यूट लव विद ऑल दैट शी डिड फॉर मी। हाउ अबाउट यू? 5000 1896 एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। आपका बचपन का दोस्त कौन है? इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। मीन वाइल श्रेया घोषाल निहाल की आवाज़ में मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा गाना सुनाने वाली हूँ विच इज़ फ्रॉम द अपकमिंग फिल्म ये प्रेम मोहलिया। यह राज प्रोडक्शन की फिल्म है, सूरत बरजात्या ने इसे डायरेक्ट किया, आयुष्मान खुराना एंड शर्वरी इस फिल्म में आपको नजर आएंगे। भाई साहब एक बार फिर से विवाह वाले एरा को जीने की तैयारी जो है ना आप कर ले। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।
1: मिर्ची फ्रेश माल।
3: मोहब्बत के हर रंग का एहसास ये प्रेम मोल लिया।

इस गाने को गाया है श्रेया घोषाल और निहाल तौरो ने। म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने और लिरिक्स लिखे हैं कुमार ने। सुनते रहिए ये प्रेम मोल लिया, टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambana. Murga, murga. La vieja la murga. Mirchi, murga.
2: हेलो विनीत जी।
3: हाँ जी
2: विनीत जी, नमस्कार। जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर, क्या हाल चाल है? शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
3: सही हाँ, हाँ मैं तो चल रही है।
2: हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने बैंड के लिए?
3: 7:30 बजे तक।
2: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई हमारे, जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं। वो बंदे राजस्थान से आने थे, वो वहाँ पे रह गए हैं।
3: 9:30-10 बजे तक ये बताओ ना, बच जाएगा।
2: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाले एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
3: पागल हो गए हो क्या? क्या बजाएगा अकेला वो?
2: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये नहीं, ये अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
3: मैं क्या बात करूं यार, अकेला क्या बजाएगा?
2: नहीं वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए, ये देखिए। हाँ विनीत जी मजा आया? ये मिस्टर थॉमस ये
3: क्या बजा रहे हैं, ये सुना आपने?
2: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर। मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने बजे चल रहे हैं सर?
3: मैं घोड़ी तो चढ़े जाऊंगा यार।
2: अच्छा सर मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चलेंगे ना मिस्टर थॉमस, घोड़ी चलने वाले चलाएंगे?
3: हेलो हेलो,
2: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
3: ये बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद्ध का बजा रहा है ये?
2: विनीत जी मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर। हाँ विनीत
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया सर, आप बुरा मत मानिए।
3: अच्छा भैया
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
6: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
7: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Well, Stibin Men ki khubsurat se awaz Jasleen Royal ka saath aana hai. Absolutely love this track. Jitna khubsurat mujhe ye gana lagta hai, utna hi zyada khubsurat aaj ka din hai.
1: Mirchi Anshu.
0: Well, आज का जो दिन है वो मेरे और आपके दिल के बेहद करीब है. बिल्कुल ठीक सुना आपने, बिकॉज टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड हार्ट डे. यू नो, अगर हार्ट की बात करें, दिल की बात करें, तो हर किसी के लिए ये जो दिल है ना, अलग अलग काम और अलग अलग चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में काफ़ी बड़ी मदद करता है. देखिए, कईयों का दिल के बारे में जब बात किया जाए तो रिश्ता सीधा कहीं से होकर गुजरता है, तो उनकी सेहत से भाई साहब दिल का मामला है, ज़रा संभल के चलो, अपना ट्रीटमेंट जो है सही तरह से कराओ, अपने दिल का सही तरह से ख्याल रखो. तो चलिए सबसे पहले ना इस एस्पेक्ट की बात करते हैं. अगर हेल्थ के नज़रिए से हम हार्ट को देखने की कोशिश करें, जो बेसिकली आज के डे को सिग्निफाई भी करता है, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में ज़रा सी भी लापरवाही जो है ना, अपने दिल को लेकर, अपने हार्ट को लेकर ना करें. अब देखिए, इसमें कुछ बातें जो हैं वो काफ़ी मायने रखती हैं. सबसे पहले अगर मैं आपकी डाइट की बात करूँ, आपकी अच्छी हार्ट हेल्थ सबसे ज़्यादा अगर किसी से लिंक्ड है तो वो है आपकी डाइट से, आपके खान पान से. तो इतना ही कहना चाहूँगी, प्लीज़, गूगल की दुनिया है, AI का ज़माना है, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जो उसमें नहीं है, लेकिन इससे पहले कि वो रियल डॉक्टर बने, जब भी डॉक्टर्स की बात हो तो सही डॉक्टर से सलाह लेकर अपने खान पान को बहुत अच्छा रखने की कोशिश करें. ऑयली फूड जो है कम से कम कंज्यूम करें, यू नो, पैकेज्ड फूड जो है वो ज़रा कम कंज्यूम करें, एंड हेल्दी हार्ट के लिए जो डाइट है उसकी लिस्ट निकाल कर उसे ज़रूर फॉलो करें. दूसरी बात यार, हम जो है ना आज के डेट में कुछ करें ना करें, लेकिन एक फैक्टर को अपनी लाइफ में ज़रूर इंक्लूड करके रखे हुए हैं, वो है हैवी स्ट्रेस. क्यों भाई, दिल को ज़ोर से धड़कने में क्यों मजबूर करना, जो होना है वो होगा, जो हो गया वो बीत चुका, आज में रहो, खुश रहो, मस्ती में रहो, एंड अपने दिल का ख्याल जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से रखो. एंड तीसरी बात, जब भी लगे कि ज़रा सी भी कोई तकलीफ या परेशानी है, प्लीज़ ना खुद डॉक्टर बने, ना ज़माने को डॉक्टर बनने दे. इतने लोगों ने इतनी मेहनत से पढ़ लिख कर जो डिग्री हासिल की है ना, ज़रा सी तकलीफ होने पर भी बिना इग्नोर किए प्लीज़ सीधा उनके पास कंसल्टेशन के लिए ज़रूर पहुँचें. चलिए जी, अब कुछ देर में जब दिल की बात हो इश्क प्यार मोहब्बत से, तो उस ताल्लुक पर मैंने कुछ तो लिखा है, सुनाऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल रजत सिंह की आवाज़ में ये अगला गाना मैं आप तक पहुँचाती हूँ. Enjoy. बंदी का नाम अंशु.

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: कट।
6: अबे कौन है?
5: उत्तपा।
6: उत्तपा कौन?
5: उत्तपा में दो डोसा और सांभर ऑर्डर किया था, आया क्या?
6: खट खट हो दैट।
4: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। इट्स हॉट।

0: पवन सिंह की आवाज सिमरन चौधरी का साधन, व्हाट अ पावर पैक गाना इट इज। अरे किसने कहा नहीं आई, तुमने बुलाया और हम चले आए।
1: मिर्ची अंशु
0: एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड हार्ट डे। सबसे कुछ देर पहले आपकी सेहत को ध्यान में रखते हुए, दिल की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारे बातें की, लेकिन यार जब जब दिल की बात होती है तो सिर्फ तबीयत याद थोड़ी ना आती है। तबीयत को हिला देने वाले वो कुछ एहसास जो है ना ऑटोमेटिकली हमारे जहन में आ ही जाते हैं। यार ये दिल जो है ना भाई, इसे काबू में कर पाना बहुत मुश्किल है। एंड सच कहूँ, अगर दिल का रिश्ता हम इश्क प्यार मोहब्बत से देखने की कोशिश करें तो वो जो पहला प्यार था, वो पहला सा एहसास, उसकी सबसे खूबसूरत बात क्या होती है पता है? कि यार बचपन के दिनों में ना, उस वक्त हमें खुद भी पता नहीं होता था कि ये प्यार है क्या और ये होता कैसे। बस किसी के सामने आते ही वो थोड़ा सा संभल जाना, उसकी साइकिल नज़र आते ही ये बात पता चल जाना कि हाँ वो स्कूल आई है, वो उसका पलट कर बस हमें एक बार देख लेना, या वो बस नोटबुक ही एक्सचेंज क्यों ना कर लेना, यार बिना वजह उसका नाम सुनते ही यूं ही मुस्कुरा देना। पूरे दिन की 100 बातों में बस ख्याल और याद उसी की बात का रह जाना, यू नो वो पहला क्रश, वो पहली धड़कन, पहला एहसास। शायद वो कहानी हमारी जिंदगी में पूरी हुई या ना हुई, लेकिन दिल के किसी कोने में वो पहला सा एहसास आज भी ना हमारे अंदर कहीं ना कहीं है। इसी पे मैंने कुछ लिखा है, सुनाती हूँ। वो पहली सी हंसी, वो पहला सा ख्याल, बात कुछ भी ना थी पर भी दिल था बेहाल, ना इजहार हुआ ना कोई वादा किया, हाय बस तुम अच्छे लगे और दिल ने तुमसे प्यार कर ही लिया। एक बात बताएं, जिंदगी में पहली दफा क्रश आखिरकार तुम्हें कौन सी उम्र में हुआ? है ना, फॉर मी आई वाज इन ग्रेड 7, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। हाउ अबाउट यू? 5000186 5000186 आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु, आपकी कहानी सुनने को बेकरार। मीनवाइल सुर निगम की आवाज में 90s का अगला प्यारा सा गाना आपके लिए, एंजॉय। बिंदी का नाम अंशु।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: हुमा कुरैशी, आपका जो किरदार है बेबी डू डाई डू में, उसे महाराष्ट्रन बनाने की कोई खास वजह थी?
3: नचिकेता राय, उन्होंने पढ़ी एंड देन एट सम पॉइंट आई गॉट वेरी एक्साइटेड बिकॉज़ ही इज अ महाराष्ट्रन बॉय. आई थॉट माय डायरेक्टर विल बी वेरी हैप्पी, अरे वाह, यू नो ये हमारे खेड़े की कुछ वो करना चाहती है, बट आई थिंक वो डिसअपॉइंट हो गए कि ये नहीं कर पाएगी. तो उन्होंने बोला कि तुम महाराष्ट्र नहीं हो पिक्चर में, मगर तुम बोल नहीं सकते.
2: ये थी हुमा कुरैशी टॉकिंग अबाउट बेबी डू डाई डू ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: Mirchi par dil ki baat.
5: Ouch.
6: आपके और आपके पार्टनर के बीच हुई बहस में जब आपकी आवाज तेज हो जाए और वो कहे
7: तो ठीक है चिल्लाओ फिर,
6: तो इसका मतलब उसका दिल कहना चाहता है
4: इस वर्ल्ड हार्ट डे अपनों और अपनों के दिल की बात को समझो, क्योंकि जब तक इस दिल की धक धक है तब तक अपनी बक बक है. मिर्ची इट्स

Well, Arman Malik ki khoobsurat si awaaz and what a lovely track it is. Ye pyara sa gana from the film M.S. Dhoni. Ye to maine aapko suna diya, lekin zara sune. Aapko koi dhoye na iski taiyari jo hai main aapki karwa doon. Matlab bachav ki taiyari. Mirchi Anshu. मतलब तुम्हें क्या लगा बचपन से ये जो कारनामा तुम करते आए हो आज भी इसे कंटिन्यू रखोगे तुम्हारे कान की खिंचाई कोई ना करेगा या कान की खिंचाई भी होगी तुम्हारी भी खिंचाई होगी साथ में तुम्हारे पॉकेट की तो तगड़ी खिंचाई होगी एंड ये सब लेकिन आखिर क्यों अरे नाना किसी और बात की बात नहीं कर रही मैं ऑनलाइन ब्लैकमेल की बात कर रही अगर आप किसी और का इन्फॉर्मेशन यूज कर उसके नेटवर्क से स्नैच कर या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए किसी को थ्रेटन करने की कोशिश करते हैं ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं इन दैट केस अब मिनिस्ट्री एंड अथॉरिटीज जो है कतर साइबर क्राइम प्रिवेंशन लॉ नंबर 14 के तहत आपको तगड़ी पनिशमेंट देने के लिए पूरी तरह से तैयार है अगर कोई किसी काम को करने से इनकार कर रहा है मना कर रहा है या किसी और वजह से भी फोर्सफुली आप उन्हें थ्रेटन या ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे तो इतना समझ जाएं ना ही सिर्फ आपको 3 years की इंप्रिजनमेंट होगी बल्कि 100,000 कतरी रियाल तक का फाइन भी लग सकता है बेटा बचपन में तो एक दो सेंट समोसे के चक्कर में तुमने बहुत सारा काम किसी और से करवा लिया एंड कर भी लिया लेकिन अब जो है काफी सतर्क होकर किसी भी काम को करवाने की कोशिश करें क्योंकि बात इतनी है नजरें सिर्फ आप पे नहीं हर उस एक शख्स पे है जो किसी गलत तौर से किसी को परेशान करने की कोशिश करे तो मैंने तो सोचा कि क्यों ना आपको सावधान कर लूं जो जेल होगी वो तो अलग पॉकेट की जो एक बार की चपत लगेगी वो तो लगेगी फिर जिंदगी भर तुम्हारे घर वाले जो तुम्हारी चपत लगाएंगे उसके बारे में तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो तो दो नंबरी काम करना तो क्यों ही करना दो नंबरी कुछ सोचना है तो ये गाने सुन लो टाइटल ही है दो नंबरी एंजॉय बंदी का नाम अंशु

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
0: मैं रात को लेट हो जाता हूँ, सोसाइटी के कुत्ते मेरे पीछे पड़ जाते हैं। फिर सब जाग जाते हैं और मुझे लुक्स देते रहते हैं। बहुत ऑकवर्ड हो जाता है सर, क्या करूँ?
1: अरे तो एक काम कर, चोरी करने दूसरी सोसाइटी में जा, जा कुत्ते ना हो।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: योहानी की ये खूबसूरत सी आवाज़ जुबिन नौटियाल का साथ, एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़। ये प्यारा सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन योहानी से जुड़ा हुआ एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं आप तक पहुँचा ही दूँ।
1: मिर्ची अंशु
0: कहते हैं ना यार, सक्सेस के बाद, सफलता के बाद तो इंसान को ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल होता है, लेकिन ये सब कुछ हासिल होने के बाद वो इंसान खुद उस वक्त भी कैसा होता है, ये सही मायने में उसके कैरेक्टर को, उसके किरदार को बताता है। तो बस अगर योहानी की मैं बात करूँ तो हम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि श्रीलंका की प्यारी सी छोटी सी गुड़िया किस तरह से आज की डेट में भारत के अलावा देश दुनिया में हम सबका दिल जीत चुकी है। लेकिन अभी अभी कुछ इस तरह से हुआ, आई वॉज इन श्रीलंका फॉर माई इवेंट एंड आई वॉज दी एमसी फॉर दैट इवेंट, एंड देयर योहानी केम ओवर टू परफॉर्म एज अ सिंगर, एज एन आर्टिस्ट। एंड जब ये आई तो उन्हें देख के लगा, भाई ये तो बड़ी प्यारी सी हैं, छोटी सी हैं, बड़ी नाजुक सी हैं, पतली दुबली सी हैं, लेकिन जैसे ही इस बंदी ने गाना शुरू किया, भाई अपने आवाज़ के जादू से जो सबके दिल में बड़ा सा घर किया ना, ये बात समझ में आई कि यार कद काठी तो न जाने कितनों के पास क्यों ना हो, लेकिन आपका हुनर कुछ इस तरह का बड़ा हो कि भाई आप बोले तो बढ़ चढ़ के बस वो बोले। लेकिन ये तो बात हुई उनकी परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस के बाद जब उनसे मुलाकात करने की बारी हुई, इतनी हम्बल, इतनी प्यारी, एज इफ हर किसी को हाथ जोड़कर थैंक यू कहना, जो भी उन्हें कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, कोई घमंड नहीं, कोई अकड़ नहीं, कहीं पे कोई गुरूर नहीं कि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, एंड हर बात पे यही कहना, दैट कीप शावरिंग मी विद ऑल द लव, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि सही मायने में इंसान बड़ा अपने पैसे से, अपने हुनर से, अपने टैलेंट या अपनी काबिलियत से नहीं होता, सब कुछ हासिल कर लेने के बाद भी वो किस तरह से खुद को ग्राउंडेड रखता है, अपने किरदार को कैसे कायम रखता है, इस बात से उसका बड़प्पन नज़र आता है। तो बस छोटी सी बच्ची ने ज़िंदगी की बहुत सारी बातें जो है ना हमें सिखा ही दी, और ये मेरा था पर्सनल एक्सपीरियंस योहानी के साथ जो मैंने अभी अभी आपसे शेयर किया। बात अच्छी लगी, एक थम्सअप ज़रूर भेजना 5000189 6, आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल साज पटन सुबोध शर्मा की आवाज में अगला गाना आप तक, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Mirchi. Iscabana, puscabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La fiesta la murga. Mirchi, murga.
1: हेलो हाँ जी बोलिए
2: क्या बोलूँ जी
1: आप बोलिए ना
2: कॉल आपने किया आप बोलिए
1: कॉल मैंने किया है हेलो
2: अरे बोलो भाई कॉल तुमने किया बोलो क्या हुआ
1: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार मैं यहाँ सो रहा हूँ आपने मुझे कॉल कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार आपने नंबर मेरा डायल किया है मेरे घर बेल बजी है यार
2: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा अरे फोन मैंने नहीं किया यार
1: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार मेरे यहाँ भी बेल बजी है
2: नींद में क्या
1: मैं नींद में ही था आपने डिस्टर्ब कर दिया मैं देख रहा हूँ नंबर
2: क्या बेल मेरे यहाँ
1: चाहिए आ जाते हैं उनके मैं तो फोन काट रहा हूँ फोन रखी चले हेलो हाँ बताइए
2: मेरी जेब में फोन रखा होगा वो बटन दबा होगा बार बार
1: बात करनी है तो बात कर लीजिए आप दो बार फोन कर चुके हैं आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है आप बताइए मुझे प्लीज क्या काम है
2: हेलो
1: फिर कोई यार आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार मैं आपसे प्यार से बात करने जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं
2: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम मैं फोन नहीं कर रहा
1: तो आप गाड़ी चलाइए नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए आप अपना काम करिए फोन मत करिए मुझे कम से कम यार फोन मत करिएगा बस यहाँ पे
2: फोन नहीं कर रहा
1: मैं देख बदतमीजी से बात मत करिए आप समझ गए मैं यहाँ से रैप चाटा मार दूंगा बता रहा हूँ मैं यहाँ से हाँ मेरे चप्पल लेके आ रहा ये मेरे हाथ में चप्पल है मैं बता रहा हूँ मैं
2: चप्पल
1: पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते मैं सो रहा हूँ यहाँ पे फोन क्यों
2: आराम कर दिया तुम
1: जीना भाई यहाँ से भाग इस बार अगर कर दिया ना तो बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा चप्पल है मेरे हाथ में
2: फोन आ रहा है मेरी, मेरी फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले
1: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ मेरी बात सुनिए अभिषेक मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ तुम रेडियो मिर्ची पे हो तुम्हारी आवाज़ सारी बाहर आ रही है तुम मुर्गा बन गए हो ये सारी कॉल्स मैंने करी थी
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: मिर्ची पर दिल की बात
5: मीटिंग में आपका बॉस आपकी क्लास लगाने के बाद जब एचआर फन एक्टिविटी में पार्ट लेने को गए तो आप कहते हैं ओके पर आपका दिल कहता है
6: आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो
7: इस वर्ल्ड हार्ट डे अपनों और अपनों के दिल की बात को समझो क्योंकि जब तक इस दिल की धक-धक है तब तक अपनी बक-बक है बक-बक है
4: मिर्ची इट्स हॉट

Vishal Mishra and Hansika Parikh's khoobsurat se awaaz and what a lovely track it is from the film Sayyara. Now this happens to be one of my most favorite tracks featuring Ahaan Pandey and Aneet Padda. Ye gaana to maine aapko suna diya, lekin inke aane se zindagi mein kaafi bahar aayegi. Mirchi Anshu. देखो सच कह रही हूँ कि अगर तुम्हें किसी से पैसे लेने हैं, सामने वाला आनाकानी करने की कोशिश करे ना कि मेरे पास कैश नहीं है भाई साहब, अब करें तो क्या करें, कैसे करें, तो कोई दिक्कत नहीं. आजकल जो है हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की दुनिया में जीते हैं जहाँ पे फिंगर टिप में सारे काम आसानी से हो ही जाते हैं. अब इसी इनोवेशन के चलते एक और नया अभियान जो है हमारी जिंदगी में शामिल हो चुका है, वाया मेट्राश एप्लीकेशन. देखिए अगर मेट्राश की बात करें, कतर में रहने वाले लोगों की बात करें, तो समझ जाएं वन स्टॉप सॉल्यूशन काफी सारी बातों का हमारे लिए मेट्राश जरूर है. अब अगर मैं पैसे ट्रांसफर की बात करूं तो सबसे बड़ी बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के नए अपडेट के हिसाब से मेट्राश एप्लीकेशन में अब कोई और शख्स आपके बहाफ में ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट कर सकता है. बिल्कुल ठीक सुना आपने. नाउ यूजर्स कैन ऑथराइज अनदर पर्सन टू कंप्लीट ट्रांजैक्शंस ऑन देयर बहाफ. कुछ सिंपल बेसिक प्रोसेस हैं जिन्हें पूरा करना है, उसके बाद जो है ये काम जरूर हो जाएगा. सबसे पहली बात, आपको मेट्राश एप्लीकेशन में जाकर डेलीगेशन के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है. वहां पर होम पेज में आपको ये जरूर मिलेगा. जो भी पर्सन आप चाहते हैं, जिन्हें आप ऑथोराइज करना चाहते हैं, उनका QID नंबर आप एंटर करें एंड उसके बाद जिस भी सर्विस के लिए पेमेंट कंप्लीट करना है आपके बिहाफ में वो ये काम जरूर कर पाएंगे. तो मैं तो कहती हूँ सबसे बड़ी बात, अगर किसी और से पैसे वैसे लेने और वो कह रहा है कि मेरे पास कैश वैश नहीं, अरे कोई बात नहीं बेटा, तू मेरे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना चाहता ना, चल मुझे सर्विस का पेमेंट करना है, तुम मेरे भाव में पे कर. नहीं, सबसे बड़ा फायदा यही हो सकता है. चलिए अब इस अच्छी खबर के साथ बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ. फिल्म का नाम साथ है एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस ट्रैक बाय वेरियस मल्टी टैलेंटेड सिंगर्स. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: कौन है?
6: स्टेन।
5: स्टेन कौन?
6: स्टेन कर दिया मेरे पैंट को, मैं नहीं देता पैसे, जाओ।
7: खट खट, who that?
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: सोनू निगम, अलका याग्निक एंड उदित नारायण की खूबसूरत सी आवाज में व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज फ्रॉम द फिल्म मेरे यार की शादी है। भाई साहब उदय चोपड़ा, जिमी शेरगिल एंड संजना बिपाशा बासु को फीचर करता हुआ एक खूबसूरत सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन आपके काम पते की सबसे इम्पोर्टेंट बात इस वक्त मैं आपको बता दूं।
1: मिर्ची अंशु
0: बोल इतना बता दूं कि जब सैलरी वाले दिन आ जाए उस वक्त आपको ये पता चल जाए ना कि एक्सचेंज का रेट कमाल है, गजब कमाल है, सच कह रही हूँ यार, खुशी होती है न परम्पार खुशी होती है। महीने की 15 तारीख से मेरे दिल की दुआओं में अगर एक दुआ शामिल होती है तो ये जरूर होती है कि भैया एक्सचेंज का रेट पैसे आने पे अच्छा मिल जाए। तो आज तो मौका भी है, दस्तूर भी। आई एम प्रीटी श्योर आप में से कईयों की सैलरी आ चुकी है, तो बिना किसी इंतजार के फटाफट से इसे ट्रांसफर करने की तैयारी कर ही ले, क्योंकि आज आईपी मनी में गजब का भौकाल है एंड कुल मिलाकर अच्छे एक्सचेंज रेट्स का भौकाल है। जरा देखें आज का पैसा क्या ही बोलता है। और अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो 1 रियाल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 26.33, साथ ही पाकिस्तानी रुपीज 76.10, लंगन रुपीज 90.82, नेपाली रुपीज 42.12 एंड बांग्लादेशी टाका 33.74। तो बस घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां, लेकिन अभी वाला जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए सुनते रहे कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स हॉट, एंजॉय।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: तुषार कपूर आपका कैरेक्टर इन गोलमाल फ्रेंचाइज इज सेंसेशनल। कितना मजा आया टू माउथ दोज लाइंस।
3: I don't have to mouth those.
4: Sorry bro, sorry.
3: तो मैं क्यों क्रेडिट दूं? नहीं, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ साजिद फरहाद। इनकी नरेशन, मतलब दे जस्ट ट्रांसलेट रोहित विजन सो वेल इन दिस जोन, इन दिस जॉनर, एंड आई विश आई गेट टू डू अ फिल्म समडे वेयर आई हैव टू माउथ देयर लाइंस।
2: तुषार कपूर, इनफैक्ट वी विश कि आपको कभी भी गोलमाल की किसी भी फ्रेंचाइज में लाइंस ना मिले, सिर्फ ए ई आई ओ यू। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: दोस्ती का कुछ है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
6: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
7: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा,
8: खूब मिलेगा, मिलेगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
11: 89.6 89.6 FM मिर्ची वन,
12: इट्स हॉट।

0: की खूबसूरत सी आवाज, व्हाट अ लवली, व्हाट अ सोलफुल ट्रैक इट इज। आपने कहा चले आना, तो जी बस आपकी जिंदगी आपकी दुनिया में एक बार फिर से हम चले ही आए।
1: मिर्ची अंशु
0: वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। वेल, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए मैं तो एक बार आ ही चुकी हूँ, लेकिन इतना बता दूँ अब से कुछ देर में मैं आपको एक अलग दुनिया में ले जाने वाली हूँ। देखिए यार, हम सबकी जिंदगी में ऐसी कोई ना कोई हॉबी जरूर होती है जो हमें खुश रखती है, हमें एंटरटेन करती है, एंड कहीं ना कहीं इस भागती दौड़ती जिंदगी में मेंटली स्टेबल रखने में बहुत बड़ा काम करती है। अगर मैं अपनी बात करूँ, सो फॉर मी दैट हॉबी इज डांस, एंड आईव ऑलवेज बिन अ डांसर, आईव बिन अ ट्रेंड क्लासिकल कथक डांसर फॉर ऑलमोस्ट 8 years इन माई लाइफ। In fact, I've performed so many times on दूरदर्शन। या ठीक सुना आपने, बचपन के दिनों में कभी टीवी में मुझे देखा होगा तो मुझे पता नहीं। आज की डेट में भी अगर अपने लिए जिंदगी में डांस की बात करूँ, तो जब भी मुझे ऐसा लगता है कि भाई मुझे ना सुकून चाहिए, मुझे पीस चाहिए, इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, अगर मैं इंस्टेंटली कहीं जाती हूँ तो वो है एक डांस स्टूडियो। लेकिन आज मेरे पास एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो भारत की वन ऑफ द फाइनेस्ट डांस अकेडमी को ओन करती है, एंड इनके अलावा इनकी डांस अकेडमी के बच्चे आज इंटरनेशनल लेवल पर पूरे भारत का, देश दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सुशील जे। अब से कुछ देर में मेरी होगी उनसे आपसे बातें। इतना कहना चाहूंगी, डांस को लेकर अगर आपके दिल में कोई भी सवाल है तो आप बिल्कुल सुशील के लिए भेज सकते हैं 5000 1896 5000 1896। दिस इज अवर व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतर या मिर्ची अंशु। आपको हिंट के तौर पे इतना बता दूं, अगर आपको लगता है कि आप अपने बच्चे को एक प्रोफेशनल डांसर बनाना चाहते हैं या आप खुद बनना चाहते हैं, तो एक ऐसा सेगमेंट है जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। सो बस घंटे के उस पार सुशील से मेरी बातचीत शुरू होगी। अंटिल देन, यू ऑल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
0: यार मुझे नींद नहीं आती, क्या करूं?
1: इट्स सो सिंपल मैन, जस्ट डोंट वरी, पार्ट टाइम वॉचमैन का काम कर लो, एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी।
2: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot. Only on 89.6 Mirchi 1. It's hot. Mirchi. Fresh Maal.
1: मोहब्बत के हर रंग का एहसास ये प्रेम मोल लिया।

0: इस गाने को गाया है श्रेया घोषाल और निहाल तौरो ने। म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने और लिरिक्स लिखे हैं कुमार ने। सुनते रहिए ये प्रेम मोल लिया, टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6
1: मिर्ची।

0: सुनो ने कहा मैं कृष्ण कली साहा की खूबसूरत सी आवाज़ एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़ फ्रॉम द फिल्म परम सुंदरी। ये गाना तो मैंने आपको सुना दिया फीचरिंग जानवी कपूर एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा, लेकिन अब जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई। अगर ऐसे पावर पैक गाने को सुनने के बाद भी तुम्हारे कदम ना थरके तो भाई ये डांस वाला कीड़ा जो है ना तुम्हारी बस की बात नहीं।
1: मिर्ची अंशु
0: वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मी टीम मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार मैं फिर से आ चुकी हूँ। एंड सच कहूँ अगर डांस की बात करें तो जितने भी डांसर्स हैं जिन्हें डांस का शौक है ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये हमारे लिए सिर्फ एक आर्ट फॉर्म नहीं, ये हमारे लिए एक थेरेपी है और एक ऐसी शख्सियत जो आज भारत में बैठे बैठे अपने डांस ट्रूप के जरिए पूरी देश दुनिया में नाम कमा रही है। उनका नाम है सुशील जे एंड वी आर सो वेरी थ्रिल्ड एंड प्रिविलेज्ड दैट टुडे ही इज हियर विद अस एट मिर्ची स्टूडियोज वन मूव प्रोडक्शंस, वन मूव क्रू के ओनर जिनकी डांस ट्रूप ने पूरी दुनिया में नंबर वन पोजीशन हासिल किया है। सुशील वेलकम टू द शो।
2: थैंक यू अंशु, थैंक यू कतर एंड थैंक यू रेडियो मिर्ची, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर।
0: प्लेजर इज एब्सोल्युटली आज। सुशील मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या आज की जनरेशन में इट इज पॉसिबल टू बिल्ड अ करियर इन डांसिंग?
2: बिल्कुल यू कैन मेक इट अ करियर नॉट ओनली नाउ बिफोर ऑल्सो बट इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क यू हैव टू पुट इन टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन ट्रेनिंग टू बी ऑन टॉप एंड देन या देन यू कैन सिट लाइक दिस एंड गिव इंटरव्यूज लाइक दिस।
0: सुशील बिना मेहनत के तो शायद कुछ भी हासिल नहीं, लेकिन चलिए अगर मैं आपसे पूछने की कोशिश करूं कि एक बच्चे के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट करने की राइट एज क्या है?
2: आई थिंक इट्स 4 years, मेरे अकेडमी में 4 years से स्टार्ट होता है बट राइट एज इज 5 इज वॉट आई बिलीव दैट यू नो बिकॉज 4 years एवरीबडी इज नॉट फोकस्ड सो बच्चे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं 4 years पे, सभी नहीं, इट डिपेंड्स ऑन चाइल्ड टू चाइल्ड सो 5 years इज द करेक्ट एज इज वॉट आई थिंक बट मेरे अकेडमी में 4 years होता है
0: लेकिन प्रोफेशनल डांसर बनने के लिए कितने साल तक प्रैक्टिस करनी होगी और एक दिन में कितने घंटे प्रैक्टिस करनी होगी?
2: मेरे हिसाब से हर दिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हर दिन कम से कम 2 से 4 घंटे तक प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
0: सुशील बासा कौन सा डांस फॉर्म है जो आज की डेट में सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है?
2: मेरे हिसाब से हिप हॉप है, हिप हॉप और मॉडर्न डांस इज द इज ट्रेंडिंग नाउ, वी कैन सी इन रील्स सो दैट इज द कैचियस थिंग इज व्हाट आई बिलीव बट एवरी डांस फॉर्म हैज दैट रिस्पेक्ट तो एवरी डांस फॉर्म में आप लोग परस्यू कर सकता है। यू हैव टू बी प्रोफेशनल लेवल सो एंड यू हैव टू बी वेरी प्रेजेंटेबल देन ओनली पीपल विल लाइक इट एंड देन दिल कम फॉर योर क्लास एंड देन यू कैन परफॉर्म एंड देन यू कैन डू वर्कशॉप्स you know bahut acche kama sakta hai
0: and win multiple world championships right? We'll talk about it, world championship ki aapki puri journey main sunungi main janungi lekin aap se kuch der mein, lekin abhi filhal badhte hain agle gaane ki taraf। You all stay tuned to Mirchi Bandi ka naam Anshu, enjoy।

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Gabana. Murga, murga. La virtua la murga.
1: Mirchi, murga. Day. The person you are trying to urgently call is snoring and sleeping inside the hut.
2: Hello, ये हंसा से मेरी बात कराओ भाई.
3: Hello, क्या बोल रही हूँ मैं?
2: श्रीनिवास.
0: मिर्ची. इसका बाना, उसका बाना, सबका बाना. क्या बाना? मुर्गा, मुर्गा. नवीन वाला मुर्गा. मिर्ची, मुर्गा.
1: Day. The person you are trying to urgently call is snoring.

0: टोन सुन के एक आदमी सीरियस एम्स में भर्ती है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको यही डायलर टोन मिली थी, जे जे जे जे जे, ये दिल के मरीज के लिए कितनी खतरनाक है आपको ये पता है? 3 दिल के पेशेंट ने आपको फोन किया है और उनकी हालत खराब है। बेवकूफी की बात कर रही है,
1: मैंने अगर लगा रखा है मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी अगर कॉलर ट्यून उसको नहीं पसंद है तो मुझे फोन नहीं करे,
0: तो किसी को कैसे पता चलेगा कॉलर ट्यून कैसी है? नहीं है, मैं, मेरे को पता था, मैंने आपको कॉल किया, मेरा दिल हिल गया यार।
1: नहीं तो कौन सी लगाऊं मैं?
0: कितनी डायलर टोन है? तुम आए तो गली में आज चांद निकलता, या फिर ये लगा लीजिए, तुझे देखा तो ये जाना सनम।
1: आपका इस टाइप पता भी नहीं मेरे को किसने लगाई।
0: दफा 300 ट्रिंग ट्रिंग के तहत ये बहुत बड़ा गुनाह है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। दिल्ली में इस तरह की कॉलर ट्यून नहीं लगाएंगी आप, समझिए आप। आप क्या कर सकते हैं? आप मुझसे बहस करे जा रही
1: है, मत सुने। और अगर कोई बीमार है मेरे कारण से, थोड़ा ना बीमार
0: आपके कारण से। हंसा, मैं आपसे आखिरी बार तमीज से बात कर रहा हूँ। एक लेडी कांस्टेबल आएगी और आपको खींचते हुए लेके आएगी यहाँ श्रीनिवासपुरी थाने में, फिर आपको बताएंगे कि कैसे कॉलर ट्यून लगती है। आप बहस करे जा रही है मेरे से।
1: अच्छा ठीक है सर, आप जो बोलेंगे।
0: आपको कॉलर ट्यून लगानी है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कौन सी कॉलर ट्यून लगाएंगी।
1: हाँ बताइए
0: आप कॉलर ट्यून लगाइए कुकड़ू को।
1: ठीक है सर, उसका मेरे को आप दे दीजिएगा, मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगी वो।
0: ये रेडियो मिर्ची से मिलेगी हमसा, और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुम्हारा मुर्गा बनाया है, मुझे राजीव ने तुम्हारा नंबर दिया था, और तुम्हारी कॉलर ट्यून वाकई में खतरनाक है। जी जी जी।
1: यार आप लोग किसी दिन ना, मतलब
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot, it's
3: hot। अरे वाह, आइसक्रीम एंड केक लवर्स रेडी हो जाओ, डेरी क्वीन लाया है धमाकेदार स्पेशल प्रमोशन।
4: हाँ जी, 26 से 30 सितंबर तक एंजॉय करो अमेजिंग डील्स। संडे सिर्फ QR 5 से, स्वर्ल्स QR 9 में, ब्लिजर्ड्स QR 10 से, और केक सिर्फ QR 60 से।
3: तो देर किस बात की, अपने फेवरेट डेरी क्वीन आउटलेट पर जाओ और स्वीट मोमेंट्स बनाओ। डेरी क्वीन, हैप्पी टेस्ट्स गुड। तो देर किस बात की, सब कुछ आधे प्राइस में।
2: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मिल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सेटाइल शॉकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स, अभी कार्मिल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
5: किड्स आर बैक टू स्कूल, बिजी शेड्यूल्स, होमवर्क, क्लासेस, टेस्ट, फ्यू, सो मच टू डू। वी नो एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, बट हे, लिटिल मोमेंट्स ऑफ फन आर इम्पोर्टेंट टू। सो आर यू रेडी टू मेक योर स्कूल डे अ लिटिल मोर एक्साइटिंग?
3: बिकॉज मिर्ची रिचार्ज ड्रिवन बाई GWM इज कमिंग टू योर स्कूल। मिर्ची आरजेस विल बी देयर विद फन, गेम्स, मस्ती, एक्साइटिंग प्राइजेस एंड लॉट्स ऑफ सरप्राइजेस, बिकॉज लर्निंग कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी डिजर्व्स अ लिटिल फन टू।
5: दिस इनिशिएटिव इज ड्रिवन बाई GWM।
6: Festivities की planning? It's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds काफी है। अब सिर्फ 25% pay करें and lock in your gold rate 8 November तक। Then if the price increases at the time of purchase, आप पा सकते हैं the booked rate। और अगर gold price drop होती है, you get the lower rate। है ना enough reasons to start the celebrations already? तो आज ही अपना price locked, gold secured कीजिए with Malabar Gold and Diamonds।
3: Craving pizza? Papa John's has the ultimate deal for you. Buy any one pizza and get one pizza absolutely free. Yes, valid on all pizzas. Aapki choice ki lower price pizza bilkul free ho jayegi. Offer valid only from 26th to 30th September. So tension mat lo. Order now from Papa John's and double the tasty fun. Valid on all pizza sizes. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
5: Mirchi par dil ki baat. Ouch!
7: जब आपका बॉस आपको घर जाने से ठीक 5 मिनट पहले SOS सिचुएशन कह के आपको काम दे दे,
8: oh no!
7: तो आप कहते हैं ओके सर, बट आपका दिल कहता है
9: ढल गया दिन, हो गई शाम, जाने दो, जाना है।
10: इस वर्ल्ड हार्ट डे अपनों और अपनों के दिल की बात को समझो, क्योंकि जब तक इस दिल की धक धक है तब तक अपनी बक बक है। मिर्ची, इट्स

0: पता है, हर एक शख्स जिंदगी में जब मेहनत करता है ना, तो उसकी दिली ख्वाहिश बस एक ही होती है कि यार मैं जिस मुकाम को पाना चाहता हूँ बस मुझे वो हासिल हो, और जरूर हो।
1: मिर्ची अंशु
0: वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। एक बार फिर से आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए मैं आ चुकी हूँ। एंड जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त मैं एक ऐसे मशहूर डांसर के साथ कॉन्वर्सेशन पे हूँ जिसने मुझे मजबूर कर दिया है कि बेटा एक बार फिर से फ्लोर पे आने की बारी जो है ना वो आ ही चली है। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट सुशील जी, द ओनर एंड फाउंडर ऑफ वन मूव डांस ट्रूप एंड प्रोडक्शंस, जिनकी टीम ने इस वक्त पूरी दुनिया में नंबर वन पोजिशन हासिल किया है। सुशील, मैं जल्दी से आपसे जानना चाहूंगी कि वन मूव की जर्नी स्क्रैच से चैंपियनशिप तक कैसे पहुंची?
2: मेरा एकेडमी जो है वन मूव करके, वो 2012 पे स्टार्ट हो गया था। मेरा डांसिंग करियर 2007 पे स्टार्ट हुआ था। उस लाइफ में बहुत परफॉर्मर ही था। सो 2012 आई स्टार्टेड माय एकेडमी एंड देन आई स्टार्टेड लाइकिंग चिल्ड्रन। मेरे को बहुत बच्चे लोग बहुत पसंद आ गया, तो मेरे को लगा कि अब अरे इसको यू नो ट्रेन करके मेरे को जीतना है, वर्ल्ड चैंपियनशिप पे जाना है। तो आई स्टार्टेड अ टीम इन 2015 एंड देन द ट्रेनिंग बिगिंस। दैट टाइम इट वाज वेरी हार्ड, वी डिड आई डिडंट हैड स्टूडियो, सो यू नो हियर एंड देयर आई बुक स्टूडियो ऑन वीकेंड्स एंड देन यू नो आई स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम टू ट्रेन देम। 2018 पे हम लोग एक कॉम्पिटिशन था डांस वर्ल्ड करके, इंडिया पे क्वालिफाइंग राउंड होता था। देयर वी केम फर्स्ट बाई विनिंग 100 out of 100। ओके, एंड देन वी वेंट टू स्पेन फॉर द फाइनल्स। सो फाइनल्स होता है, उस टाइम पे 52 कंट्रीज पार्टिसिपेट किया था उस टाइम पे 2018 पे स्पेन पे, और स्पेन से हम लोग आ गया 5। ओके, फिफ्थ पोजिशन पे आ गया। ओके, बहुत दर्द हो गया एंड देन आई चेंज द ट्रेनिंग पैटर्न एंड देन 2019 पे पोर्चुगल, उधर हम लोग सेकेंड आ गया। तो सेकेंड हम लोग मिला बहुत प्रैक्टिस करके, बहुत टफ कैटेगरी पे था हम लोग हिप हॉप करके, वेयर 56 कंट्रीज वे थे उस टाइम पे। फर्स्ट इज द एम फॉर अस, देन वी इंक्रीज द प्रैक्टिस ट्रेनिंग एंड देन 2020 पे आ गया इटली पे। हम लोग बहुत बहुत प्रैक्टिस किया, सैटरडे संडे को कम से कम 6 से 8 घंटे तक प्रैक्टिस किया पूरा साल, और आ गया कोविड। तो हम लोग पूरे टीम और मैं पूरे डिप्रेशन पे चला गया, और 2022 पे हम लोग प्राग पे क्वालिफाई हो गया। उस टाइम पे वीज़ा नहीं मिला, फिर भी मेरे को जीतना ही है, कम से कम वर्ल्ड चैम्पियनशिप एक तो लेना ही है। तो उसके बाद 2024 पे पोर्चुगल गया, हम लोग 4 फर्स्ट लेके आए इंडिया पे। और तो 2026 अभी जुलाई पे हम लोग थाईलैंड गया GLX करके वर्ल्ड चैंपियनशिप ने, हम लोग फर्स्ट फिर से फर्स्ट हो गया।
0: सो आपकी जर्नी से एक बात तो बहुत अच्छी तरह से समझ आई कि जीत का रास्ता अगर किसी शब्द के साथ आता है तो वो है कंसिस्टेंसी। लगे रहना है, नॉन स्टॉप लगे रहना है, चाहे जो भी हो जाए हिम्मत नहीं हारनी है, हार नहीं मानना है, उसके बाद दुनिया का ऐसा कोई मुकाम नहीं, वो कोई मंजिल नहीं जो तुम हासिल ना कर पाओ। थैंक यू सो वेरी मच सुशील फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे।
2: थैंक यू, थैंक यू।
0: वी विश वन मूव टू हैव मेनी मोर वंडरफुल मूव्स अराउंड द वर्ल्ड, कीप स्प्रेडिंग स्माइल्स एंड हैप्पीनेस। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।
2: थैंक यू अंशु अ लॉट। थैंक यू, थैंक यू रेडियो।
0: तो वही मैसेज जो है वो काफी क्लियर है, अब तक आप तक बात पहुंची चुकी होगी। बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। यू ऑल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु। एंजॉय।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरी
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: अरे वाह, आइसक्रीम एंड केक लवर्स रेडी हो जाओ, डेयरी क्वीन लाया है धमाकेदार स्पेशल प्रमोशन।
6: हाँ जी, 26 से 30 सितंबर तक एंजॉय करो अमेजिंग डील्स संडे सिर्फ QR 5 से, स्वर्ल्स QR 9 में, ब्लिजर्ड्स QR 10 से और केक सिर्फ QR 60 से।
5: तो देर किस बात की, अपने फेवरेट डेयरी क्वीन आउटलेट पर जाओ और स्वीट मोमेंट्स बनाओ। डेयरी क्वीन, हैप्पी टेस्ट्स गुड। तो देर किस बात की, सब कुछ आधे प्राइस में।
7: खट खट,
8: अगर कर
7: हूँ, अगर करना है तो कर वरना छोड़ दे।
8: खट खट हूँ दैट।
9: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: लता मंगेशकर जी, उदित नारायण की खूबसूरत सी आवाज, एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज यार, क्या खूबसूरत प्यारा सा गाना फ्रॉम द फिल्म दिल तो पागल है यार, वो दौर वो जमाना एंड वो गाने, मैं सच कहूँ यार, मतलब इनसे सुनहरा कुछ और हो ही नहीं सकता है ना।
1: मिर्ची अंशु
0: वैसे अगर सुनहरे की बात करूं तो भाई गजब सुनहरा आज का सोना भी है, वाला अगर सोने के रेट्स की बात करें भाई साहब, ऐसा सुनहरा एक्सपीरियंस उसने दिया हुआ है ना कि दिल कर रहा है कि मैं अभी अलफरदान एक्सचेंज जाऊं और जाके अच्छा खासा सोना चांदी जो ना खरीद के आऊं। जरा देखें आज गोल्ड रेट क्या कहता है।
2: Stay ahead of today's gold rates with Alfardan Exchange.
0: Absolutely, अगर आज आप गोल्ड की परचेसिंग करना चाहते हैं तो मैं सच कह रही हूँ मौका भी है दस्तूर भी, ऐसे रेट्स जो है ना बार बार आपकी जिंदगी में शामिल होते नहीं है, तो फटाफट से अलफरदान एक्सचेंज पहुंचकर गोल्ड की परचेसिंग करने की तैयारी आप कर ले। अगर आज आप परचेस करना चाहेंगे तो पैम्प 1 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बारस प्राइस टेड कतरी रियाल्स 562, 5 ग्राम्स इस प्राइस टेड कतरी रियाल्स 2632, 10 ग्राम्स इस प्राइस टेड कतरी रियाल्स 5193, 1 आउंस टुडे इस प्राइस टेड कतरी रियाल्स 16051, एंड वहीं अगर 10 तोले की बात करें तो इस प्राइस टेड कतरी रियाल्स 59581। तो बस फटाफट से अलफरदान एक्सचेंज पहुंचे, अच्छा खासा गोल्ड का बार जो है लेकर आए, उसके बाद जब गहने मैंने बनाओ मलबार के पहनेंगे। Are in friendship sharing is caring.
2: Stay ahead of today's gold rates with Alfardan Exchange, PAMP's official agent in Qatar. Buy authentic Swiss made 24 karat PAMP gold.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: कंगना रनौत, आपका जो होने वाला हस्बैंड है उसने आपको छोड़ दिया है एक समोसे के लिए, आप उस समोसे को क्या कहेंगे?
3: जिंदगी में एक ऐसा काम किया है जो कि एक नींबू और मिर्च भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि तुमने मेरी नजर उतारी है। अच्छा तुम उसे ले गए और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, अब हम दोनों मिलके चाय पियेंगे एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी चाय के साथ।
2: समोसे के साथ एक हाइपोथेटिकल कॉन्वर्सेशन करती हुई कंगना रनौत ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood Bollywood Bollywood Bollywood Bollywood
1: Only on Mirchi It's Hot
4: Mere bete aayenge Mere Karan Arjun aayenge
5: अरे करण अर्जुन आमिर शाहरुख ऋतिक अक्षय इमरान सबके गाने आएंगे दीदी
6: आएंगे दीदी
7: आएंगे दीदी। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: मैंने ये इनविटेशन दे दिया है, लेकिन कहाँ आना है जरा ये भी बता दे।
1: मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु।
0: Welcome back, you're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आई हूँ। एंड इस वक्त अगर इनविटेशन किसी बात का दिया जा रहा है तो बस यही तशरीफ उठाएं, जहाँ पे भी आप टिफिन का डब्बा खोलते हैं वहाँ बस पहुँच जाएं। खाने में कुछ अच्छा लाएं तो हमें भी ज़रूर बताएं। घड़ी का काटा इसी ओर इशारा कर रहा है कि भाई साहब कुछ खाना है, सॉलिड अच्छा खाना है, भूख लगने का वक्त जो है वो हो चला है। एंड जो लोग मुझे रोज़ सुनते हैं ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरी भूख जो है ना वक्त को देख कर आती है, कि अगर घड़ी का काटा कहता है 1 बज गई तो मुझे भूख लगती है, अगर किसी ने घड़ी रोक दी और कहा नहीं अभी तो 12 ही बजे तो मेरी भूख भी जो है ना जरा रुक सी जाती है। लेकिन फाइनली अभी सही वक्त चुकी मैंने देख लिया है, तो आज गर्मा गर्म राजमा और चावल कर रहा है मेरा इंतजार आपके टिफिन में, या आपका जो भी प्लान है खाने में क्या सोचा है, क्या इरादा है। 5000 1896 वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल अरिजीत सिंह की आवाज़। जाने से पहले अगला प्यारा सा गाना आपके रास्ते। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
0: सर वो मुझे हेल्दी डाइट शुरू करना है, कैसे करूं?
1: अरे तो सिंपल है ना, ब्रेकफास्ट से स्टार्ट कर। मैं भी सबसे पहले ब्रेकफास्ट ही करता हूँ।

0: अपने घर से दूर रहने वाले लोग शायद मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे।
1: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: कितनी अजीब सी बात है ना, हम बड़े होते होते घर से दूर चले जाते हैं, अपना एक नया शहर बना लेते हैं, नई जॉब, नए दोस्त, नया रूटीन, और धीरे धीरे उस रूटीन में इतने बिजी हो जाते हैं कि घर की याद भी कभी कभी बस एक मिस्ड कॉल या व्हाट्सएप मैसेज बनकर रह जाती है। फिर मिलती है एक हफ्ते की छुट्टी और सडनली सबसे इम्पोर्टेंट प्लान होता है घर जाना। दरवाजा खुलते ही माँ की आवाज आती है, अरे आ गई, चलो सबसे पहले कुछ खा लो। और आपके लिए वो कुछ एक्चुअली पूरा बुफे होता है। वो घर का खाना जो रोज मिलने पर शायद नॉर्मल लगता था, लेकिन दूर रहकर समझ आता है कि घर के खाने का टेस्ट रेसिपी से नहीं, यादों से आता है। फिर रिलेटिव्स का आना, कजन से मिलना, पुराने दोस्त, शाम की चाय, बिना किसी प्लान के लंबे कॉन्वर्सेशंस, कोई बर्थडे नहीं, कोई दिवाली नहीं, कोई शादी नहीं, फिर भी घर में सेलिब्रेशन जैसा माहौल होता है। बिकॉज समटाइम्स सेलिब्रेशन इजंट अबाउट लाइट्स, म्यूजिक और डेट ऑन द कैलेंडर। कभी कभी सेलिब्रेशन बस इतना होता है कि डाइनिंग टेबल पर सबकी प्लेट्स एक साथ लगती है। एंड यू नो द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग एट ब्यूटिफुल पार्ट, जब वापस जाने का टाइम आता है, क्योंकि आपके सूटकेस में कपड़े कम और घर का खाना ज्यादा होता है, और दिल में एक छोटी सी विश कि काश अगली छुट्टी थोड़ी जल्दी आ जाए। एंड करंटली मैं इस दुनिया की सबसे अमीर इंसान हूँ, क्योंकि पूरे एक हफ्ते के लिए यही फीलिंग जी कर आई हूँ। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, एंड हियर्स मी वेलकमिंग माई सेल्फ बैक ऑन माई शो। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Escabana, pues cabana, sacabana.
1: Cabana.
0: Murga, murga. La virtual la murga.
1: Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Hi. You... से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
2: हेलो।
3: हाय, ये से फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4,19,83,93।
4: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार अपने मोबाइल से? कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं। आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं? आपको
2: वही मैं सुधरा था, मतलब।
3: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339। हो गया।
2: हाँ जी।
3: कुकड़ों को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: Craving pizza? Papa John's has the ultimate deal for you. Buy any one pizza and get one pizza absolutely free. Yes, valid on all pizzas. Aapki choice ki lower price pizza bilkul free ho jayegi. Offer valid only from 26th to 30th September. So tension mat lo. Order now from Papa John's and double the tasty fun. Valid on all pizza sizes. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
7: Cut, cut.
8: Who that?
7: Jassi.
8: Jassi? Kaun si wali Jassi?
7: Jassi who has come, auntie ji?
8: Cut, cut. Who that?
5: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

नॉट माई फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। मॉन्स्टर को मिली है एक मॉन्स्ट्रस डील। मैं बात कर रही हूँ सलमान खान की अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म मॉन्स्टर, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं वामशी पेद्दापल्ली, जो ईद 2027 पे रिलीज होने वाली है। सो सलमान खान एंड नयनतारा स्टारर इस मूवी के ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स PVR INOX ने ₹100 करोड़ में खरीद लिए हैं, विच इन इटसेल्फ इज अ ह्यूज अकॉम्प्लिशमेंट। देखते हैं फिल्म आने के बाद क्या धमाल मचाती है। मार्च अवेटेड मैग्नम ओपस रामायण के मेकर्स ने पाथ ब्रेकिंग प्री दिवाली रिलीज प्लान करने की शुरुआत कर दी है। सो पहले ये फिल्म 6 नवंबर को ओवरसीज और 8 नवंबर को इंडिया में रिलीज होने वाली थी, बट अब स्पेकुलेशंस आर दैट ये फिल्म 5 नवंबर को ही इंडिया और ओवरसीज दोनों ही जगहों पर रिलीज की जाएगी। बाकी नितेश तिवारी डायरेक्टोरियल इस फिल्म के रिलीज को लेकर फाइनल अपडेट्स आते ही आपको जरूर बताऊंगी। 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड जीतने वाली फिल्म श्रीकांत फेम डायरेक्टर तुषार हीरानंदानी ने नेक्स्ट मूवी भी अनाउंस कर दी है। नाम होगा इसका रगड़ा 25 एंड इट इज अबाउट 25 इनएक्सपीरियंस्ड गर्ल्स जिन्होंने आर्मी ज्वाइन करने का ड्रीम देखा। वेल, वो एक एक्सपेरिमेंटल बैच था जो अगर फेल हो जाता तो आर्मी में वुमेन के लिए एंट्री हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी जाती। फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार है और इसके कास्ट को फाइनलाइज करते ही इस पे काम भी शुरू कर दिया जाएगा। डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: वेल इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, मैं तो फिल्मची गेम खेलने की बात कर रही हूँ। यार बाबू मोशाय, आप कहाँ ही जा रहे हो? नॉटी नॉटी, चलिए दिमाग को वापस लाइए, क्योंकि यहाँ इस गेम में लगाना है ना दिमाग। सो बेसिकली द ड्रिल इज कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल मिर्ची श्रुति के डीएम्स में जाके अपना नंबर भेजिए, ताकि कॉल करके मैं आपके साथ इस गेम की शुरुआत कर सकूँ। तो आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे है जूलिया। तो जूली जी, कहाँ से बात हो रही है आपसे?
3: अभी तो हम ग्रेटर नोएडा से बात कर रहे हैं।
0: अरे वाह, हम आप क्या पटना बिहार झारखंड?
3: पटना।
0: अरे रे, हम लोग तो एक ही शहर के निकले जी। तो क्या गेम शुरू करने के लिए तैयार हैं आप?
3: हाँ, हम तैयार हैं।
0: बहुत बढ़िया, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मुंबई की बारिश में हीरो टेलीफोन बूथ पे पापा से बात कर रहा है और सामने दिखती है हीरोइन बच्चों के साथ बारिश में मस्ती करती हुई।
3: दिया मिर्जा।
0: ओहो, कौन सी फिल्म है, नाम बताइए।
3: रहना है तेरे दिल में।
0: क्या बात है। तो रहना है तेरे दिल में रीना से उसका नकली फियांसे बनके कौन मिलता है?
3: माधवन।
0: आर माधवन लड़कियों का वशीकरण किस फिल्म में करते हैं?
3: शैतान।
0: बहुत बढ़िया। शैतान में ज्योतिका के हस्बैंड कौन है?
3: अजय देवगन।
0: अजय देवगन की फिल्म जिसमें वो सरदार जी बने हैं?
3: सन ऑफ सरदार।
0: सन ऑफ सरदार में संजय दत्त की बहन कौन है?
3: संजय दत्त की बहन ये है सोनाक्षी सिन्हा।
0: सोनाक्षी सिन्हा को थप्पड़ से डर किस फिल्म में नहीं लगता?
3: दबंग।
0: दबंग में रॉबिन हुड पांडे कौन है?
3: सलमान खान।
0: क्या बात। सलमान खान दीवाना बनके अपनी ओ ओ जाने जाना को किस फिल्म में ढूंढते हैं?
3: प्यार किया तो डरे।
0: ओहो लड़की, एकदम फिल्मी कीड़ा जाग रहा है। प्यार किया तो डरना क्या में अरबाज खान की बहन कौन है?
3: काजोल।
0: काजोल को अपने बेस्टी से किस फिल्म में प्यार होता है?
3: कुछ कुछ होता है।
0: कुछ कुछ होता है में अंजलि के पापा कौन है, मतलब छोटी वाली अंजलि?
3: शाहरुख खान।
0: शाहरुख खान 6 दिन में लड़की पटाने का टेक्निक किस फिल्म में बताते हैं?
3: बादशाह।
0: आप गलत हो गई। आपने जो इस गेम में गर्दा उड़ाया है, जो ताबड़तोड़ आपने फिल्मचीपना दिखाया है, मजा ही आ गया बहुत।
3: मेरे को भी आपसे बात करके बहुत मजा आ रहा है।
0: जूलिया
3: I love you.
0: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो भाई हमारी इस बिहारी बाला ने तो गजब का समा बांध दिया, जिसके लिए इनको ये टैग देना तो बनता है।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: और अगर फिलहाल आपके अंदर का फिल्मी कीड़ा भी जाग रहा है तो जगाइए जगाइए और मिर्ची श्रुति से इंस्टा पे जरूर मिलिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: में चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: फेस्टिविटीज की प्लानिंग, इट्स ऑलवेज क्वाइट ओवरवेलमिंग, बट व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग योर ज्वेलरी परचेसेस, मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स काफी है। अब सिर्फ 25% पे करें एंड लॉक इन योर गोल्ड रेट 8 नवंबर तक। देन इफ द प्राइस इंक्रीजेस एट द टाइम ऑफ परचेस, आप पा सकते हैं द बुक्ड रेट। और अगर गोल्ड प्राइस ड्रॉप होती है, यू गेट द लोअर रेट। है ना इनफ रीजंस टू स्टार्ट द सेलिब्रेशंस ऑलरेडी? तो आज ही अपना प्राइस लॉक्ड गोल्ड सिक्योर्ड कीजिए विद मलबार गोल्ड एंड डायमंड।
6: Craving pizza? Papa John's has the ultimate deal for you. Buy any one pizza and get one pizza absolutely free. Yes, valid on all pizzas. Aapki choice ki lower price pizza bilkul free ho jayegi. Offer valid only from 26th to 30th September. So tension mat lo. Order now from Papa John's and double the tasty fun. Valid on all pizza sizes. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
0: Mirchi par dil ki baat.
7: Ouch! आपके और आपके पार्टनर के बीच हुई बहस में जब आपकी आवाज तेज हो जाए और वो कहे
8: तो ठीक है चिल्लाओ फिर,
7: तो इसका मतलब उसका दिल कहना चाहता है।
0: इस वर्ल्ड हार्ट डे अपनों और अपनों के दिल की बात को समझो, क्योंकि जब तक इस दिल की धक धक है तब तक अपनी बक बक है।
9: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
0: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ। देखो अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा दैट मैं मिर्ची फिल्म की गेम की बात कर रही हूँ, जिसकी शुरुआत आज हमने की थी जूली मैम से। बट शी गॉट स्टक एट अ पॉइंट और उसके आगे का गेम खेलने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे है रानू। हेलो जी मैम, कैसी हैं आप और कहाँ से बात हो रही है?
2: हैदराबाद से।
0: ओ वाओ, तो रानू हमारा गेम जहाँ अटका था क्या उसके आगे का गेम आप कंटिन्यू करना चाहोगे?
2: यस यस प्लीज गो अहेड।
0: ऑलराइट, सो द क्वेश्चन दैट शी गॉट स्टक ऑन वाज शाहरुख खान 6 दिनों में लड़की पटाने का टेक्निक किस फिल्म में बताते हैं?
2: कल होना हो
0: में नैना का मेल बेस्ट फ्रेंड कौन है?
2: सैफ अली खान
0: एक पैशनेट म्यूजिशियन ट्रेन पे कस्तो मजा है ले लईबा किस फिल्म में करते हैं?
2: परिणीता
0: में बचपन से सैफ अली खान से किसको प्यार है?
2: विद्या बालन
0: को जिंदगी में एंटरटेनमेंट किस फिल्म में पसंद है?
2: डर्टी पिक्चर
0: में प्रोड्यूसर डायरेक्टर कौन है?
2: इमरान हाशमी
0: की किस गैंगस्टर फिल्म का सेकंड पार्ट आ रहा है?
2: आवारापन।
0: यस, और ये जो पूरी फैमिली ने मिलकर साथ में गेम खेला है एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए, आई रियली लाइक इट।
2: थैंक यू। एक्चुअली हम लोग सारे एक ही रूम में, एंड माय डॉटर इज जस्ट 6 इयर्स ओल्ड।
0: ओके,
2: सो शी इज प्रॉम्प्टिंग व्हाटएवर आई एम सेइंग, शी इज प्रॉम्प्टिंग।
0: ओह,
2: एंड टुडे इज आवर 8th एनिवर्सरी, दैट इज व्हाई माय हस्बैंड इज जस्ट नियर मी।
0: ओह माय गॉड, दैट इज सो स्वीट। विश यू बोथ अ वेरी वेरी वेरी हैप्पी एनिवर्सरी।
2: Thank you so much.
0: It was so lovely talking to you, ma'am. And of course, the way you have ended the game is amazing. तो इसी बात पे आपको ये टैग तो जरूर दूंगी मैं।
1: मिर्ची, फिल्मची।
0: तो बाबू मोशाय, अगर आज का ये मिर्ची फिल्मची गेम आपसे मिस हो गया, then worry not, my friend. मिर्ची श्रुति के फेसबुक या इंस्टा पे जाके अपना नंबर DM कीजिए, and rest I'll take care of. Till then, stay tuned. It's hot.

0: बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: भूमि पेडनेकर, हमारे स्कूल में तो टॉयलेट में जाके टॉयलेट करते थे, आपके स्कूल में क्या करते थे?
2: In our school, toilet used to be the place जहाँ पे सब जाके रोमांस करते थे। That used to be the spot in my school.
3: स्कूल था, कंजर खाना खुला हुआ था।
2: तो दोनों।
1: इसी कहानी से मुझे लगता है टॉयलेट एक प्रेम कथा का नाम रखा होगा। नहीं, आप सुन रहे थे अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर को ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: अरे वाह, आइसक्रीम एंड केक लवर्स, रेडी हो जाओ, डेरी क्वीन लाया है धमाकेदार स्पेशल प्रमोशन।
5: हाँ जी, 26 से 30 सितंबर तक एंजॉय करो अमेजिंग डील। संडे सिर्फ QR 5 से, स्वर्ल्स QR 9 में, ब्लिजर्ड्स QR 10 से और केक सिर्फ QR 60 से।
4: तो देर किस बात की, अपने फेवरेट डेरी क्वीन आउटलेट पर जाओ और स्वीट मोमेंट्स बनाओ। डेरी क्वीन, हैप्पी टेस्ट्स गुड। तो देर किस बात की, सब कुछ आधे प्राइस में।
6: खट खट,
7: कौन है?
6: इशांत।
7: इशांत कौन?
6: इशांत गदाधारी भीम, इशांत।
7: खट खट, who that?
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: मिलना
1: टेढ़ा है पर मेरा है।
2: श्रुति श्रुति
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: अब इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े बाबू मोशाय, लेट मी एक्सप्लेन। मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ यार, जिसने टाइम एंड अगेन हमें टाइमलेस रोमांसेस दिए हैं, बट उसके साथ कुछ सीरियसली प्रॉब्लमेटिक थॉट प्रोसेसेस भी एज गिफ्ट परोसा है ऑन अ सिल्वर प्लैटर, जिनको हमने अपनी जिंदगी में काफी इंटरनलाइज भी कर लिया है। अब फॉर एग्जाम्पल, स्टॉकिंग को प्यार का नाम दे देना या टॉक्सिक जेलसी को वैलिडेट कर देना, सो ये सारे सीन्स एंटरटेनिंग तो लगते हैं ऑन स्क्रीन देखने में, बट रियल लाइफ में दे आर मेजर रेड फ्लैग्स। और आज कुछ ऐसे ही सीन्स की बात कर रही हूं थ्रू माय 5 का पंच लिस्ट, जिसमें सबसे पहले मैं उस अप्रोच की बात करना चाहती हूं जिसमें एक लड़की को सिखाया जाता है कि भाई अगर तू अपना लुक बदल लेगी ना तो बस लड़का पट जाएगा, यू विल मेक हिम फॉल इन लव विद यू। अब वो 1986 की फिल्म नसीब अपना अपना हो, कुछ कुछ होता है में रफत बी का अंजलि को अपने लुक्स चेंज करने के लिए बोलना हो, या फिर फिल्म मैं हूं ना में शाहरुख खान का अमृता राव को सुंदर बनाने के लिए सुष्मिता सेन के पास ले जाना हो। और ये सारी चीजें क्यों? ताकि फिल्म का जो हीरो है वो इनके प्यार में पड़ जाए। अब ये थॉट प्रोसेस आप क्या अपने घर की बेटी को देना चाहेंगे? अगर दे रहे हैं देन इट इज रियली प्रॉब्लमेटिक, यू नीड टू वर्क ऑन इट। बाकी तो समझदार को इशारा काफी। बाबू मोशाय मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना
3: बना
2: मुर्गा मुर्गा नबीत वाला मुर्गा
3: मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो विनीत जी।
5: हाँ जी
4: विनीत जी नमस्कार, जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर। क्या हाल चाल है, शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
5: सही हाँ
4: हाँ
5: मैं तो चल रही है।
4: हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने हैं बैंड के लिए?
5: 7:30 बजे तक।
4: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई हमारे, जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं। वो बंदे राजस्थान से आने थे, वो वहाँ पे रह गए हैं।
5: 9:30-10 बजे तक ये बताओ ना बचा जाएगा।
4: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाला एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
5: पागल हो गए हो क्या, क्या बजाएगा अकेला वो?
4: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये नहीं, ये अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
5: मैं क्या बात करूं यार, अकेला क्या बजाएगा?
4: नहीं वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए, ये देखिए। हाँ विनीत जी मजा आया, ये मिस्टर थॉमस ये
5: क्या बजा रहे हैं, ये सुना आपने?
4: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर। मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने बजे चढ़ रहे हैं सर?
5: मैं घोड़ी तो चढ़े जाऊंगा यार।
4: अच्छा सर मैं मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चढ़ेंगे ना मिस्टर थॉमस, घोड़ी चढ़ने वाले चढ़ाएंगे।
5: हेलो हेलो,
4: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
5: ये बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद्ध का बजा रहा है ये?
4: विनीत जी मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, अभी पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर। हाँ
5: अरे कॉफिन ऑफिन करो, यहाँ क्यों लेके आए तुम?
6: विनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया है सर, आप बुरा मत मानिए।
5: अच्छा भैया आप मेरे
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
7: Festivities की planning? It's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds kaafi hai. Ab sirf 25% pay karein and lock in your gold rate 8 November tak. Then if the price increases at the time of purchase, aap pa sakte hain the booked rate. Aur agar gold price drop hoti hai, you get the lower rate. Hai na enough reasons to start the celebrations already? To aaj hi apna price locked, gold secured kijiye with Malabar Gold and Diamonds.
8: हेलो शॉप्स, आप प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
9: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
8: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
10: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
8: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
11: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी, ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
12: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ, कॉल नाउ 7070-7687।

0: बाबू मोशाय, स्क्रीन पे देखने वाली हर एंटरटेनिंग चीज ग्रीन फ्लैग नहीं होती।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: एंड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से हमें टाइम एंड अगेन बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं विच आर अ प्रूफ ऑफ व्हाट आई जस्ट सेड। और आज कुछ ऐसे अप्रोचेस की ही बात कर रही हूँ थ्रू माई पांच का पंच लिस्ट, जिसमें सबसे पहले मैंने ये डिस्कस किया कि भाई किस तरीके से हिंदी फिल्मों में दिखाया जाता है कि अगर लड़की चाहती है कि लड़का उसके प्यार में पड़ जाए तो वो अपना हुलिया बदल ले, अपना लुक चेंज कर ले। फॉर एग्जाम्पल, कुछ कुछ होता है में अंजलि। वहीं अब नंबर दो पे बात करना चाहती हूँ अबाउट द अप्रोच, अबाउट द थॉट दैट वुमेन बिलोंग टू द किचन। और इस चीज को एट मेजर लेवल प्रूव किया है फिल्म हम साथ साथ हैं ने। हाँ हाँ, राष्ट्रीय प्रोडक्शन की ये फिल्म। एंड इसमें तो लेजिट एक लाइन है भाई, जहां पे सर जी बोलते हैं कि जिस घर की लेडीज और बच्चियां हमें अपने हाथ से प्यार से खाना खिलाए वही घर घर होता है। हाँ हाँ, हम औरतें तो पैदा ही होते हैं कि भाई आपका पालन पोषण करे, पहले आपकी मम्मी फिर आपकी बीवी, है ना। आए बड़ा। चलिए दूसरे अप्रोच की ओर बढ़ते हैं। नंबर तीन पे लेट्स टॉक अबाउट कि किस तरीके से अगर एक वुमन को गुस्सा। लेजिट एक लाइन है भाई, जहां पे सर जी बोलते हैं कि जिस घर की लेडीज और बच्चियां हमें अपने हाथ से प्यार से खाना खिलाए वही घर घर होता है। हाँ हाँ, हम औरतें तो पैदा ही होते हैं कि भाई आपका पालन पोषण करे, पहले आपकी मम्मी फिर आपकी बीवी, है ना। आए बड़ा। चलिए दूसरे अप्रोच की ओर बढ़ते हैं। नंबर तीन पे लेट्स टॉक अबाउट कि

नहीं ऐसा नहीं होता, रियल लाइफ में ऐसा करके देखिए, आपकी भी बैंड बजा दी जाएगी। एंड ऊपर से सवाल ये आएगा कि अरे अपने बंदे को तो संभाल ले। वैसे ऐसे ही और दो अप्रोचेस की बातें बाकी हैं, बट ऑल ऑफ दैट इन अ वाइल। बाबू मोशाय मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: गलीचता को प्यार का नाम देने में बॉलीवुड काफी माहिर है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हेलो जी, हाय बाबू मोशाय। और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करें तो हमें टाइम एंड अगेन बहुत सारी ऐसी फिल्में मिली हैं विच आर रोमांटिक, बट उसके साथ ही कुछ प्रॉब्लमेटिक, सीरियसली प्रॉब्लमेटिक थॉट प्रोसेसेस भी एज अ गिफ्ट हमें परोसा गया है ऑन सिल्वर प्लेटर। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉकिंग को प्यार का नाम दे देना। और ये सारी बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज ऐसे ही कुछ अप्रोचेस को लेकर आई हूँ थ्रू माई 5 का पंच लिस्ट, जिसमें अब नंबर 4 पे लेट्स टॉक अबाउट नॉट रिस्पेक्टिंग बाउंड्रीज ऑफ वुमेन। और इस चीज को प्यार का नाम दे के स्टॉकिंग को ग्लोरीफाई किया गया है टाइम एंड अगेन। अब एपिक एग्जाम्पल के तौर पे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हाँ, ये मूवी काफी प्यारी, दिल के करीब है हमारी, लेकिन भाई साहब जिस तरीके से राज ने सिमरन के ना कहने के बावजूद उनका पीछा किया और ऐसा करते करते करते करते फाइनली जगह भी बना ली उनके दिल में, वॉज थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक। हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हुए नंबर 5 पे हम उस थॉट प्रोसेस की बात करते हैं जिसमें जनरली विमेन को ऑन स्क्रीन ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है और उनको मैनिपुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, कल हो ना हो 6 दिन लड़की इन, भैया लड़की तो वो चाबी लगी गुड़िया है ना, कि आप जितनी चाबी मारोगे उतना आपको नाच के दिखाएगी। तो बस ऐसे अप्रोचेस को आज तक हमने एज ऑडियंस जो ग्लोरीफाई किया है, इट्स हाई टाइम कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझें और जो कुछ भी रैंडमली हमें इन द नेम ऑफ स्क्रिप्ट परोस दिया जाता है उस पे ऑब्जेक्शन करें। बाकी तो समझदार को इशारा काफी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: एनर्जी पर दिल की बात।
1: मीटिंग में आपका बॉस आपकी क्लास लगाने के बाद जब एचआर फन एक्टिविटी में पार्ट लेने को गए तो आप कहते हैं ओके, पर आपका दिल कहता है
2: आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो।
0: इस वर्ल्ड हार्ट डे अपनों और अपनों के दिल की बात को समझो, क्योंकि जब तक इस दिल की धक धक है तब तक अपनी बक बक है। मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। मॉन्स्टर को मिली है एक मॉन्स्ट्रस डील। मैं बात कर रही हूँ सलमान खान की अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म मॉन्स्टर, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं वामशी पेद्दापल्ली, जो ईद 2027 पे रिलीज होने वाली है। सो सलमान खान एंड नयनतारा स्टारर इस मूवी के ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स PVR INOX ने ₹100 करोड़ में खरीद लिए हैं, विच इन इटसेल्फ इज अ ह्यूज अकॉम्प्लिशमेंट। देखते हैं फिल्म आने के बाद क्या धमाल मचाती है। मार्च अवेटेड मैग्नम ओपस रामायण के मेकर्स ने पाथ ब्रेकिंग प्री दिवाली रिलीज प्लान करने की शुरुआत कर दी है। सो पहले ये फिल्म 6th ऑफ नवंबर को ओवरसीज और 8th ऑफ नवंबर को इंडिया में रिलीज होने वाली थी, बट अब स्पेकुलेशंस आर दैट ये फिल्म 5th ऑफ नवंबर को ही इंडिया और ओवरसीज दोनों ही जगहों पर रिलीज की जाएगी। बाकी नितेश तिवारी डायरेक्टोरियल इस फिल्म के रिलीज को लेकर फाइनल अपडेट्स आते ही आपको जरूर बताऊंगी। 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड जीतने वाली फिल्म श्रीकांत फेम डायरेक्टर तुषार हीरानंदानी ने नेक्स्ट मूवी भी अनाउंस कर दी है। नाम होगा इसका रगड़ा 25 एंड इट इज अबाउट 25 इनएक्सपीरियंस्ड गर्ल्स जिन्होंने आर्मी ज्वाइन करने का ड्रीम देखा। वेल, वो एक एक्सपेरिमेंटल बैच था जो अगर फेल हो जाता तो आर्मी में वुमेन के लिए एंट्री हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी जाती। फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार है और इसके कास्ट को फाइनलाइज करते ही इस पे काम भी शुरू कर दिया जाएगा। डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: ये जब से मुझे चश्मा लगा है नंबर बढ़ता ही जा रहा है, इसे कैसे रोकूं?
1: अरे सिंपल है ना मामू, पहली फुर्सत में चश्मा निकाल के साइड में रख दो ना, प्रॉब्लम सॉल्व।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

actor Govinda and John Lennon are connected. Bollypedia. ऐसे मुंह खोल के क्या सुन रहे हो? हाँ हाँ हाँ, ये सच है, बट इन सम डिफरेंट वे यार. सो बेसिकली आज जिस फिल्म की बात कर रही हूँ उसका नाम है दूल्हे राजा, वन ऑफ माय सुपर डुपर फेवरेट्स, जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 1998. वैसे आपको इस फिल्म का पोस्टर याद है जिसमें गोविंदा के चेहरे पे आपको मल्टीपल सनग्लासेस दिखते हैं? वेल, दिस वॉज इंस्पायर्ड बाय द फेमस बीटल्स आर्टिस्ट जॉन लेनन, एंड दिस इज द कनेक्शन दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट. इनफैक्ट दूसरा ट्रिविया अबाउट द मूवी इज की दूल्हे राजा नाम नहीं था इसका पहले. इसका नाम पहले तू हसी मैं जवां होने वाला था, बट थैंकफुली दूल्हे राजा कर दिया गया. दैट मेक्स मच मोर सेंस. खैर, अगर ऐसी किसी फिल्म के बारे में आपके पास भी कोई ट्रिविया हो या किसी स्पेसिफिक फिल्म के बारे में आप कुछ जानना चाहते हो, देन फील फ्री टू शेयर दैट विद मी. MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से मैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे मिलूंगी. इन द मीन टाइम एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Ya bana. Burka, burka. La vida para burka. Mirchi, burka.
1: हेलो हाँ जी बोलिए
2: क्या बोलूँ जी
1: आप बोलिए ना
2: कॉल आपने किया आप बोलिए
1: कॉल मैंने किया है हेलो
2: अरे बोलो भाई कॉल तुमने किया बोलो क्या हुआ
1: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार मैं यहाँ सो रहा हूँ आपने मुझे कॉल कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार आपने नंबर मेरा डायल किया है मेरे घर बेल बजी है यार
2: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा अरे फोन मैंने नहीं किया यार
1: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार मेरे यहाँ भी बेल बजी है
2: मैं
1: नींद में ही था आपने डिस्टर्ब कर दिया मैं देख रहा हूँ नंबर
2: मैं क्या बैल मेरे यहाँ
1: आ जाते हैं उठके मैं तो फोन काट रहा हूँ फोन रखी तेरे हेलो हाँ बताइए
2: तेरी जेब में फोन रखा होगा वो बटन दब रहा होगा बार बार
1: बात करनी है तो बात कर लीजिए आप दो बार फोन कर चुके हैं आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है आप बताइए मुझे प्लीज क्या काम है हेलो
2: फिर कोई
1: यार आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार मैं आपसे प्यार से बात करने जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं
2: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम मैं फोन नहीं कर रहा
1: तो आप गाड़ी चलाइए नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए आप अपना काम करिए फोन मत करिए मुझे कम से कम यार फोन मत करिएगा बस यहाँ पे
2: फोन नहीं कर रहा अभी
1: मैं आप देखिए बदतमीजी से बात मत करिए आप समझ गए मैं यहाँ से रैप चाटा मार दूंगा बता रहा हूँ मैं यहाँ से हाँ मेरे चप्पल लेके आ रहा ये मेरे हाथ में चप्पल है मैं बता रहा हूँ मैं
2: चप्पल पता
1: नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे मैं सो रहा हूँ यहाँ पे फोन क्यों
2: आराम कर दिया तुम
1: जीना भाग यहाँ से इस बार अगर कर दिया ना बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा चप्पल है मेरे हाथ में
2: फोन आ रहा है मेरी फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले
1: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ मेरी बात सुनिए अभिषेक मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ तुम रेडियो मिर्ची पे हो तुम्हारी आवाज़ें सारी बाहर आ रही हैं तुम मुर्गा बन गए हो ये सारी कॉल्स मैंने करी थी
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: खट खट
5: कौन है
4: अज्जू
5: अज्जू कौन
4: अज्जू ना आए बालमा सावन बीता जाए होए
5: खट खट हू दैट
3: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट

0: इट्स हाई टाइम हमारी इंडस्ट्री थोड़ी प्रोफेशनल हो जाती यार।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूँ आप एंड टाइम एंड अगेन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से बहुत सारी चीजें ऐसे देखने को मिल जाती हैं कि भाई लगता है यार इनको क्या किसी की कदर नहीं है, स्पेसिफिकली द मीडिया आउट देयर। सो बेसिकली अभी कुछ दिनों पहले यानी 26th ऑफ सितंबर को नितेश तिवारी डायरेक्टोरियल अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म रामायण की टीम ने एक प्रमोशनल इवेंट रखा था जिसमें सिर्फ उस मूवी के स्टारकास्ट नहीं आए थे बट मिस्टर बीस्ट द यूट्यूब सेंसेशन जिनके 517 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं ही वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट इवेंट। सो द बैक स्टोरी इज कि मीडिया को पहले 12:30 बजे का टाइम दिया गया था कि भाई इस वक्त इवेंट की शुरुआत हो जाएगी, फिर उसे रीस्केड्यूल किया गया 2:12 बजे विच मीन्स इट वॉज प्रीपोन्ड, और उसके बाद फिर से इसको पोस्टपोन करके 1 बजे किया गया, फिर 1 बजे से 1:30 बजे, 1:30 बजे से 2:30 बजे। लोगों ने सोचा था कि भाई हम 2-3 बजे तक तो फाइनली फ्री हो ही जाएंगे, लेकिन फ्री होना तो छोड़ो, इवेंट की शुरुआत ही 3 बजे के बाद हुई एंड दैट वॉज रियली रियली अपसेटिंग फॉर द मीडिया आउट देयर। नाउ दैट अराइजेस अ फ्यू क्वेश्चंस इन माय माइंड। एक तरफ हमारी इंडस्ट्री जो है वो मीडिया पर्सनल से मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करती है, बट ऑन दी अदर हैंड आपकी खुद की मैच्योरिटी घास चरने चली जाती है जब ऐसे कुछ प्रमोशनल इवेंट्स होते हैं। तो इनफैक्ट आई वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड इन वन सच इवेंट इन दिल्ली फॉर अ प्रमोशन ऑफ अ ह्यूज मूवी, बट ट्रस्ट मी यू कोई मैनेजमेंट नहीं था, हमें 1.5 घंटे तक बाहर धूप में खड़ा रहना पड़ा, फिर फाइनली जब हम अंदर गए तो जो स्टारकास्ट थी वो 1 घंटे और डीले करके आई, जिसके बाद लोग ये जो गिव एंड टेक वाली बात करते हैं उस पे से मेरा तो विश्वास उठता जा रहा है। बाकी व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो अबाउट दैट। मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हाय, इसको चुप कोई कराए।
1: OTT and chill.
0: मिर्चे बेटी उन्होंने आप और अगर बिग बॉस 20 फॉलो कर रहे हो देन यू ऑलरेडी नो बेबी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट रिद्धि। देखो यार, मैं भी बिहार से बिलोंग करती हूँ, बट इट डजंट मीन कि किसी की गलत हरकत को मैं बस यूं ही सपोर्ट करूंगी जस्ट इन द नेम ऑफ बीइंग अ बिहारी। नो ब्रो, दैट्स नॉट हैपनिंग। क्योंकि जिस हिसाब से रिद्धि ने डे वन से अपने आप को प्रोजेक्ट किया है इन द बिग बॉस हाउस, भाई साहब, अटेंशन सीकर ऑन पॉइंट, जेलस प्रो मैक्स लेवल, क्रिएटिविटी के नाम पे कचरे का डब्बा। और भाई, डिस बैटल में तो दीदी ने पता नहीं क्या ही कर दिया था। अपने आप को कूल दिखाने के चक्कर में आपने जो नामा कूल वाली हरकत की है ना, उसके चर्चे तो पूरे इंडिया में हो रहे हैं और अब दुनिया वाले जानते हैं कि आप रिद्धि तिवारी हैं, बट सैडली इन अ नेगेटिव वे। बट अब जब इस घर के गंदगी की बात हो ही रही है तो एक और इंसान का नाम लेना चाहती हूँ मैं, एंड दैट इज आसिफ खान फॉर मी। भाई, एक तो इस इंसान को तमीज नहीं है बात करने की, वो लड़का हो लड़की हो किसी से भी बस ऐसे करके ही करना शुरू कर देते हैं, और गलती से अगर कोई इनकी गलती गिना दे तो ओ हो त्राहिमाम, तीनों लोक हिला देने वाली हरकतें होने लगती हैं इनकी। बाकी फिलहाल तो माय फेवरेट इन द हाउस इज डेफिनेटली काजी, ऑल्दो थोड़ा सा बायसनेस लग रही है मुझे उनके तरफ बिग बॉस की। बट हाँ, अगर आप बिग बॉस 20 फॉलो कर रहे हैं देन हु आर योर फेवरेट्स वो मुझे जरूर बताना मिर्ची श्रुति के नाम से फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट करके। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: में शी स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: खट खट।
6: Who that?
5: अकबर।
6: अकबर who?
5: अरे अकबर बता दिया है, बार बार नहीं ना बता पाएंगे।
6: खट खट। Who that?
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

सो आई फिगर्ड कि जस्ट लाइक हॉरर मूवीज हम ये भी कहते हैं कि बॉलीवुड ने साईफाई मूवीज भी कुछ खास अच्छी नहीं बनाई। बट आई एक्चुअली डिसएग्री। मिर्ची सुन रहे हो आप, मेरा नाम क्रिश है। सो आज के पांच का पंच में मैं कुछ ऐसी पांच साईफाई बॉलीवुड मूवीज लेकर आया हूँ जिन्होंने सिर्फ ट्राई ही नहीं किया, वो सक्सीड भी हुई। स्टार्टिंग ऑफ विद नंबर 5 आती है कार्गो। 2019 में आई ये मूवी स्टारिंग विक्रांत मेसी एंड श्वेता त्रिपाठी, इज डायरेक्टेड बाय आरती कदव। दिस मूवी इज अबाउट अ फिक्शनल ट्रीटी जो कि साइन हो चुकी है बिटवीन ह्यूमंस एंड डीमंस यानी राक्षस, जिसमें एक प्रॉपर स्पेसशिप बनी है जिसका नाम है पुष्पक 634A, जो मरने के बाद सोल्स को कलेक्ट करती है, उनकी मेमोरीज इरेज करती है, उन्हें हील करती है और फिर उनके दूसरे जन्म या पुनर्जन्म में भेज देती है। इतने यूनिक टॉपिक पर बनी है इंडी स्टाइल मूवी इज एक्चुअली अ वेरी अंडररेटेड मूवी, सो जस्ट वॉच इट ऑलरेडी। फिर नंबर 4 पर आती है एक्शन रिप्ले। 2010 में आई ये मूवी स्टारिंग अक्षय कुमार, ऐश्वर्या राय, आदित्य रॉय कपूर एंड रणविजय सिंघा, डायरेक्टेड बाय विपुल शाह। स्टोरी में आदित्य रॉय कपूर किसी तरह टाइम ट्रैवल करके 70s में जाते हैं अपने मम्मी पापा की शादी और प्यार को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, एंड ऑफ कोर्स मम्मी पापा प्लेड बाय अक्षय कुमार एंड ऐश्वर्या राय। मूवी इज अ ब्रिलियंट साईफाई कॉमेडी, मैं बता रहा हूँ ब्रिलियंट है। इसको नॉनसेंसिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखना, बिकॉज इट इज अ साईफाई कॉमेडी व्हिच इज एक्चुअली रियली गुड, सो जस्ट वॉच इट। आगे की लिस्ट अगर आप गेस कर सकते हो देन मेरे इंस्टाग्राम पर आओ, मिर्ची क्रिश के नाम से मिल जाऊंगा। KRISH इज द स्पेलिंग ऑफ माई नेम। दिस इज मिर्ची, इट्स ऑल।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: हुमा कुरैशी, आपका जो किरदार है बेबी डू डाई डू में, उसे महाराष्ट्र बनाने की कोई खास वजह थी?
3: नचिकेत सर आए, उन्होंने पढ़ी एंड देन एट सम पॉइंट नो आई गॉट वेरी एक्साइटेड बिकॉज ही इज अ महाराष्ट्रियन बॉय। आई थॉट माय डायरेक्टर विल बी वेरी हैप्पी, कह रहे वाह यू नो ये हमारे खेड़े की कुछ वो करना चाहती है, बट आई थिंक वो डिसअपॉइंट हो गए कि ये नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने बोला कि तुम महाराष्ट्र नहीं हो पिक्चर में, मगर तुम बोल नहीं सकते।
2: ये थी हुमा कुरैशी टॉकिंग अबाउट बेबी डू डाई डू ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: मिर्ची पर दिल की बात।
5: जब आपका बॉस आपको घर जाने से ठीक 5 मिनट पहले SOS सिचुएशन कह के आपको काम दे दे,
6: oh no,
5: तो आप कहते हैं ओके सर, बट आपका दिल कहता है
7: ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है।
4: इस वर्ल्ड हार्ट डे अपनों और अपनों के दिल की बात को समझो, क्योंकि जब तक इस दिल की धक धक है तब तक अपनी बक बक है। मिर्ची।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
0: सर वो मुझे हेल्दी डाइट शुरू करना है, कैसे करूं?
1: अरे तो सिंपल है ना, ब्रेकफास्ट से स्टार्ट कर। मैं भी सबसे पहले ब्रेकफास्ट ही करता हूँ।

0: कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप देर हो रही होती है और ऊपर से और देर वाली फीलिंग आती ही रहती है। मैं इसको ना लास्ट मिनट क्राइसिस बोलता हूँ, मतलब आप ऐसे ही लेट हैं लेकिन और लेट होता जाता है, पर कोई नहीं, 4:19 ही सही मस्तमौला गौरव आ गया।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: और जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, आप जितना स्ट्रेस लेंगे स्ट्रेस उतना बढ़ता जाएगा। और आज वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर मैं यही बताना चाहता हूँ कि कभी कभी कुछ चीजों के लिए इतना परेशान मत हुआ करिए। अरे 4-10 मिनट लेट से पहुंच जाएंगे तो आसमान नहीं गिर जाएगा, पहाड़ फिसल के नीचे नहीं आ जाएगा। दोस्तों जिंदगी में सबसे जरूरी है हमारा हेल्दी हार्ट, उसका ध्यान रखिए। आज वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में हर छोटी चीज के पीछे परेशान होना बंद कीजिए एंड चीजों को सुकून से लेना शुरू कीजिए। वही सिग्नल जो लाल होकर आपको परेशान कर रहा था, आपको लगने लगे ठीक है यार थोड़ी देर में ग्रीन हो ही जाएगा, तो जिंदगी के रास्ते में भी आपको ऐसे ही ग्रीन सिग्नल मिलते रहे, आपका हार्ट हेल्दी फील करता रहे। मस्त मौला गौरव आ गया लेकर शाम शानदार मिर्ची सवार।
2: मिर्ची
3: इसका बना उसका बना सबका बना,
2: क्या बना?
3: मुर्गा मुर्गा नबीद वाला मुर्गा
2: मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो,
5: हाय, ये से आपके फोन पे फ्री कॉल है, अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया 2 दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो 1 दबाइए। धन्यवाद।

0: और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए 6-6। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए 5-5। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए 7-7। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
1: हेलो,
0: हाय, ये फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए, तो दबाइए 4,19,83,93।
2: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार अपने मोबाइल से? कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं। आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं? आपका
1: तो वही मैं सुधरा था, मतलब लगा।
0: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाएं 5,07,339,39। हो गया।
1: हाँ जी,
0: कुकड़ों को
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
5: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
4: This initiative is driven by GWM.
5: Craving pizza? Papa John's has the ultimate deal for you. Buy any one pizza and get one pizza absolutely free. Yes, valid on all pizzas. Aapki choice ki lower price pizza bilkul free ho jayegi. Offer valid only from 26th to 30th September. So tension mat lo. Order now from Papa John's and double the tasty fun. Valid on all pizza sizes. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
6: Mirchi par dil ki baat. Ouch.
7: आपके और आपके पार्टनर के बीच हुई बहस में जब आपकी आवाज तेज हो जाए,
8: धीरे नहीं बोल पाएंगे हम,
7: और वो कहे
8: तो ठीक है चिल्लाओ फिर,
7: तो इसका मतलब उसका दिल कहना चाहता है।
6: इस वर्ल्ड हार्ट डे अपनों और अपनों के दिल की बात को समझो, क्योंकि जब तक इस दिल की धक धक है तब तक अपनी बक बक है। मिर्ची, इट्स हॉट।

0: वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर कतर में एक ऐसी खबर जो आपका हार्ट जीत लेगी सर। मस्त मौला गौरव आपको बताना चाहता है विद कतरी रियाल 1.179 बिलियन हमारे कतर में अब हम जनरल हॉस्पिटल का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है।
1: #974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
0: यस, अजगल ने अनाउंसमेंट कर दी है कि शुरुआत हो रही है हमद जनरल हॉस्पिटल के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की इन कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन विद हमद मेडिकल कॉर्पोरेशन, जिसका टोटल प्रोजेक्ट वैल्यू है कतरी रियाल 1.179 बिलियन। एक बड़ा चंक ऑफ अमाउंट है एंड आई एम श्योर ये बता रहा है कि हमारा कतर बिल्कुल तैयार है अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को और खूबसूरत, बड़ा एंड बेहतरीन बनाने के लिए। यस, इसमें हम आपको बता दें हॉस्पिटल में कुछ नई फैसिलिटीज को डेवलप किया जाएगा, साथ ही साथ किस तरह से वहां पर सेफ्टी लेवल्स को इंप्रूव करने की बातें हो रही हैं, एनवायरमेंट को लेकर बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट यहां पर चलाया जाएगा। और प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी बात है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू डे सर्जरी बिल्डिंग। इसके अलावा आउटपेशेंट टावर को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, हॉस्पिटल की मेन बिल्डिंग का रेनोवेशन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ इन पेशेंट टावर, ये सब कुछ होने जा रहा है। यानी कि आने वाले टाइम में आप हमारे जनरल हॉस्पिटल को जब देखेंगे तो कहेंगे भाई ये तो और बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त बन गया है। वेल, इतना ही कहना चाहता हूं, शुरुआत हो गई, अगले कुछ सालों में धीरे धीरे ये आपको मूर्त रूप लेता दिखाई देगा, यानी कि जो अभी ब्लूप्रिंट है वो वाकई में सामने दिखाई पड़ने लगेगा। तैयार हो जाइए एंड मैं कहता हूं मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में कतर वैसे ही इतना मजबूत है और इस मॉडर्नाइजेशन के बाद, इस डेवलपमेंट के बाद चीजें और अच्छी हो जाएंगी। चाहे वो यहाँ के सिटीजन हो, चाहे हम एज अ रेसिडेंट, वी फील प्राउड कि हम कतर का हिस्सा है यार, जहां पर हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना पैसा खर्च होता है एंड हमारा और आपकी सेहत का ख्याल हर समय रखते हैं सारे के सारे, ये जनरल स्टाफ से लेकर मेडिकल स्टाफ। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: अरे वाह, आइसक्रीम एंड केक लवर्स रेडी हो जाओ, डेरी क्वीन लाया है धमाकेदार स्पेशल प्रमोशन।
6: हाँ जी, 26 से 30 सितंबर तक एंजॉय करो अमेजिंग डील्स। संडे सिर्फ QR 5 से, स्वर्ल्स QR 9 में, ब्लिजर्ड्स QR 10 से और केक सिर्फ QR 60 से।
5: तो देर किस बात की, अपने फेवरेट डेरी क्वीन आउटलेट पर जाओ और स्वीट मोमेंट्स बनाओ। डेरी क्वीन, हैप्पी टेस्ट्स गुड। तो देर किस बात की, सब कुछ आधे प्राइस में।
7: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: यार कभी कभी होता है ना कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं पर आपके पास सबसे बेसिक चीज ही नहीं होती।
1: मस्त मौला गौरव।
0: दिमाग तो है मेरे पास, मैं बेसिक चीज बोले तो मनी की बात कर रहा हूँ। मनी अगर होते तो इस वक्त इन्वेस्ट कर देता यार। गोल्ड इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। लेकर आ गया अलफरदान एक्सचेंज के गोल्ड अपडेट। वेल, अगर हम गोल्ड प्राइजेस की बात करें तो अलफरदान एक्सचेंज जो हमारे कतर में पैम के ऑफिशियल एजेंट है, लेकर आते हैं 24 कैरेट स्विस गोल्ड। वो दे रहे हैं पैम 1 ग्राम गोल्ड लेडी फोशनाबार एट 562 कतारी रियाल, पैम 5 ग्राम गोल्ड लेडी फोशनाबार एट 2632 कतारी रियाल, पैम 10 ग्राम गोल्ड लेडी फोशनाबार 5193 कतारी रियाल। पैम 1 आउंस गोल्ड लेडी फोशना की बात करें तो ये आपको मिलेगा 16051 में, एंड पैम का 10 तोला गोल्ड बार अगर आप लेना चाह रहे हैं तो ये 10 तोला गोल्ड बार मिलेगा 59581 कतारी रियाल में। एंड बेस्ट बात ये होती है ना कि आप जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये फिक्र ही नहीं होती कि यार घट के मिलना है, क्योंकि आपको पता है आज नहीं एक साल के अंदर अच्छा रिटर्न तो मिल ही जाएगा। सो अगर आप चाहते हैं एकदम ट्रस्ट वाला बेहतरीन स्विस सर्टिफाइड 24 कैरेट गोल्ड इन्वेस्टमेंट तो जाइए अलफरदान एक्सचेंज, जहां मिलते हैं आपको पैम के ढेर सारे गोल्ड बार्स। मिर्ची, इट्स हॉट।
2: स्टे अहेड ऑफ टुडेज गोल्ड रेट्स विद अलफरदान एक्सचेंज, पैम्स ऑफिशियल एजेंट इन कतर। बाय ऑथेंटिक स्विस मेड 24 कैरेट पैम गोल्ड बार्स
3: एंड अर्न कतर एयरवेज एवियोस टुडे।
2: विजिट आवर ब्रांचेस और

0: होता है होता है, कभी कभी जब आपका मन किसी के साथ लग जाता है तो उसके बगैर जिया कहीं नहीं लग पाता। लेकिन अपने हार्ट को समझाना भी जरूरी है, हर समय इंसान आपके लिए उपलब्ध नहीं हो पाता। जैसे हम चाह रहे हैं ठंडी उपलब्ध हो जाए, लेकिन सूरज चाचू है कि अपनी तपन बरकरार रखे तो नहीं उपलब्ध हो पा रही है, पर जल्द बदलेगा मौसम।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: भैया देखिए, ऐसा है कि हम सब इंतजार तो कर रहे हैं, जिसका सब कोई एकदम बेसब्री से कि कैसे ही जल्दी मौसम बदले और सब कुछ ठीक हो जाए ताकि हम बीच से लेकर बीच आउटिंग कर पाए। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ह्यूमिडिटी ने हमारे कतर को घेर रखा है। दिन के मैक्सिमम टेम्परेचर की बात जरूर करेंगे, ये काफी कम हुआ है अगर पिछले दिनों के मुकाबलों की बात की जाए। आज दिन का मैक्सिमम 41 ही पहुंचा है, और मुझे ये बताते हुए बड़ा अजीब सा भी लग रहा है कि सितंबर का अंत आ रहा है उसके बावजूद टेम्परेचर 41 को छुआ जा रहा है, मिनिमम अराउंड 37। पर अच्छी बात यह है कि आज हवाओं की रफ्तार बनी हुई है एंड ह्यूमिडिटी शाम के टाइम शायद थोड़ी बढ़े, क्योंकि 46% के आसपास अभी से पहुंच गई है। हवाओं की रफ्तार की बात की जाए 9 किलोमीटर से भी कम, जो कि अब हमें शाम को थोड़ा गर्म तो फील कराएंगी। पर कुछ नहीं, पानी पीजिए, कोसते रहिए, एक दिन तो सूरज चाचू को दया आएगी और वो ठंडी को लाकर रहेंगे। मिर्ची थॉट।

0: यही सिंगर था जिसने साल 2004 में आशिक बनाया था और अब अफसाना अफसाना बनाया अपने। हाँ जी, और मस्त मौला गौरव हिमेश भाई का ऑल टाइम फैन, इसमें कोई डाउट नहीं है। शाम के 5:04 से ज्यादा घड़ी की सुई इशारा करते हुए
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: चले जी, अब मस्त मौला गौरव आपके साथ है, तो टाइम आ गया इस घंटे खेलने का, वो जिसे कहते हैं और आज ना मैं थोड़ा सा कठिन बना रहा हूँ, हालांकि आप इन्हें पहचान जरूर जाएंगे, पर आपको पहचानने के लिए मैं बहुत कम टाइम दूंगा। हाँ जी, क्योंकि कल काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन पेपर सेट कर दिया था, लोगों ने बड़ा इजीली 100% सही बता दिया। बताओ ये किसकी आवाज है?
2: हाँ, होती है, जल्दी बोल देते हैं और खत्म कर लेते हैं बात। एनिवर्सरी पे हम यही थे।
0: आप बताओ ये किसकी वॉइस है? ये एक टाइम पर बॉलीवुड पर राज कर रही थी, लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ा ब्रेक ले रखा।
2: हाँ, होती है, जल्दी बोल देते हैं और खत्म कर लेते हैं बात। एनिवर्सरी पे हम यही थे।
0: आई एम श्योर आज बहुत कंफ्यूजन होगा, लेकिन ये जबरदस्त अदाकारा है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
2: हाँ, होती है, जल्दी बोल देते हैं और खत्म कर लेते हैं बात। एनिवर्सरी पे हम यही थे।
0: आवाज की टोनैलिटी बिल्कुल अलग सी लग रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉपर इंटरव्यू का एक सवाल है जिस पर ये जवाब है।
2: हाँ, होती है, जल्दी बोल देते हैं और खत्म कर लेते हैं बात। एनिवर्सरी पे हम यही थे।
0: 5000196 ये नंबर है जिस पे आज आपका असली टेस्ट लिया मैंने। अब बताओ ये किस एक्ट्रेस की आवाज है? आई एम श्योर ये एक जबरदस्त आज का है सवाल। अरे, जवाब आने शुरू हो गए भैया, कैसे सही बता सकते भाई, हम खुद कंफ्यूज हो गए प्ले करने के बावजूद, लेकिन जवाब आने शुरू हो चुके हैं। 5000196 5000186 पर बताइए पहचान कौन में ये आवाज किसकी है जो आज मैंने आपके कान में पहुंचाई है, बहुत ही छोटी सी।
2: हाँ, होती है, जल्दी बोल देते हैं और खत्म कर लेते हैं बात। एनिवर्सरी पे हम यही थे।
0: 5000196 पर वॉइस नोट में अपना जवाब भेजना। हाय गौरव, मैं ये बोल रही हूँ या ये बोल रहा हूँ, और भैया इसका जवाब ये है। अगला गाना बादशाह हितेन शर्वी यादव, लड़के ब्यूटीफुल, बैंगर गाना मिर्ची पर।

या भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने वैसे इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: Milci. Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Burka, burka. Na vid bala burka.
1: Milci, burka. Day. The person you are trying to urgently call is snoring and sleeping inside the hut.
2: Hello,
3: ये हंसा से मेरी बात कराओ भाई.
2: Hello, क्या बोल रही हूँ मैं?
3: श्रीनिवास पुरी से हेड कांस्टेबल दरबील सिंह बोल रहा हूँ.
2: हाँ जी.
3: आपके मोबाइल पे कल 3-4 मिस्ड कॉल आई थी.
2: थी किसी की पता नहीं किसकी थी.
3: ना आपको पता ही तो नहीं चलेगा किसकी थी. आपको मालूम है आपने क्या किया है?
2: मैंने क्या किया?
3: आपने डायलर टोन ये क्या लगा रखी है? जे जे जे तीन लोगों ने आपको कॉल किया है. डायलर टोन सुन के एक आदमी सीरियस है, एम्स में भर्ती है. मैं आपसे ये कह रहा हूँ आपको यही डायलर टोन मिली थी. जे जे जे जे जे ये दिल के मरीज के लिए कितनी खतरनाक है आपको ये पता है? तीन दिल के पेशेंट ने आपको फोन किया है और उनकी हालत खराब है. बेवकूफी की बात कर रही है.
2: मैंने अगर लगा रखा है मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी अगर कॉलर ट्यून उसको नहीं पसंद है तो मुझे फोन नहीं करेगा.
3: तो किसी को कैसे पता चलेगा कॉलर ट्यून कैसी है? नहीं है मैं, मेरे को पता था. मैंने आपको कॉल किया, मेरा दिल हिल गया यार.
2: नहीं तो कौन सी लगाऊं मैं?
3: कितनी डायलर टोन है? तुम आए तो गली में आज चांद निकलता, या फिर ये लगा लीजिए तुझे देखा तो ये
2: तो
3: जाना सनम. आपका इस टाइप
2: पता भी नहीं मेरे को किसने लगाई है मेरे पास.
3: दफा 300 ट्रिंग ट्रिंग के तहत ये बहुत बड़ा गुनाह है. मैं आपको ये बता रहा हूँ दिल्ली में इस तरह की कॉलर ट्यून नहीं लगाएंगे आप, समझिए आप.
2: ठीक है मैं क्या करूँ बताइए ना.
3: आप क्या कर सकते हैं? आप मुझसे बहस करे जा रही है.
2: और अगर कोई बीमार है मेरे कारण से थोड़ा ना बीमार होगा.
3: आपके कारण से हंसा मैं आपसे आखिरी बार तमीज से बात कर रहा हूँ. एक लेडी कांस्टेबल आएगी और आपको खींचते हुए लेके आएगी यहाँ पे श्रीनिवासपुरी थाने में. फिर आपको बताएंगे कि कैसे कॉलर ट्यून लगती है. आप बहस करे जा रही है मेरे से.
2: अच्छा ठीक है सर, आप जो बोलेंगे.
3: आपको कॉलर ट्यून लगानी है? मैं आपको अभी बता रहा हूँ कौन सी कॉलर ट्यून लगाएंगी.
2: हाँ बताइए
3: आप कॉलर ट्यून लगाइए कुकड़ू को.
2: ठीक है सर, उसका मेरे को आप दे दीजिएगा. मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगी वो.
3: ये रेडियो मिर्ची से मिलेगी हमसा. और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुम्हारा मुर्गा बनाया है, मुझे राजीव ने तुम्हारा नंबर दिया था और तुम्हारी कॉलर ट्यून वाकई में खतरनाक है. जे जे जे
2: यार आप लोग किसी दिन ना मतलब कुकड़ू को.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ. डिस्कवर करो वर्सेटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस. सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं.
5: Craving pizza? Papa John's has the ultimate deal for you. Buy any one pizza and get one pizza absolutely free. Yes, valid on all pizzas. Aapki choice ki lower price pizza bilkul free ho jayegi. Offer valid only from 26th to 30th September. So tension mat lo. Order now from Papa John's and double the tasty fun. Valid on all pizza sizes. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
6: Mirchi par dil ki baat.
7: मीटिंग में आपका बॉस आपकी क्लास लगाने के बाद जब एचआर फन एक्टिविटी में पार्ट लेने को कहे तो आप कहते हैं ओके, पर आपका दिल कहता है
8: आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो.
9: इस वर्ल्ड हार्ट डे अपनों और अपनों के दिल की बात को समझो, क्योंकि जब तक इस दिल की धक धक है तब तक अपनी बक बक है.
6: Mirchi, it's hot.

0: फहीम अब्दुल्ला के आवाज में सैयारा का गाना खत्म हुआ, लेकिन अगर कतर में आप अपनी सैयारा में मुझे सुन रहे हैं तो जवाब चाहिए। ये सर आज का सवाल बड़ा ही सिंपल है, पहचान कौन का?
1: पहचान कौन?
0: बताइए ये आवाज किसकी है जो मैं आपको सुना रहा हूँ?
2: हाँ होती है, जल्दी बोल देते हैं और खत्म कर लेते हैं बात। एनिवर्सरी पे हम यही थे,
0: एनिवर्सरी पे हम यही थे, मैंने पूछा बताओ ये किसकी आवाज है और जवाब देखिए।
3: ये तो नीना गुप्ता का बेटी।
4: गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? ओह वेल, यूसुफ अगेन विद यू। ये आवाज है सोनाली बेंद्रे की। एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो गया था माधुरी दीक्षित और सोनाली बेंद्रे में, बट आफ्टर लिसन टू अ थर्ड टाइम आई गॉट इट, शी इज सोनाली बेंद्रे। ओके थैंक यू, बाय बाय।
5: गुड इवनिंग, मेरा नाम मेराज है।
0: अरे आप तो आलिया भट्ट तक सीमित है, एक भाई साहब ने उर्मिला मातोंडकर की आवाज कही है, लेकिन एक बार फिर ध्यान से सुनिए, सब के सब गलत हो, क्योंकि सही वालों का मैंने अभी जवाब प्ले ही नहीं किया है। अब थोड़ी देर बाद मगरिब के अज़ान के बाद हम आपको सुनाएंगे किसकी आवाज है, लेकिन ये बताइए एक बार फिर से सुनिए और बताइए कि गौरव ये आवाज आप तो सही कह रहे हो किसी और की है।
2: हाँ होती है, जल्दी बोल देते हैं और खत्म कर लेते हैं बात। एनिवर्सरी पे हम यही थे।
0: 5000186 एक आखिरी मौका अपनी गलती सुधारने का, नहीं तो हम सब

0: अरिजीत सिंह बिंत दिल गाना तुमने गा दिया जीत लिया दिल।
1: मस्त मौला गौरव।
2: यार मतलब कसम से भाई के गाने ऐसे ना कि भाई दिल जीत लेते हैं। वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर इतने कहेंगे कि हमारी हार्ट बीट को बड़ा ही नॉर्मल कर देते हैं जब अरिजीत हमारे कानों में होते हैं। इन सब के बीच आज हम और आप मिलकर खेल रहे हैं पहचान कौन। और पहचान कौन में मैंने आज एक छोटी सी वॉइस सुनाई है, आपको पहचाननी है कि ये किस अदाकारा की आवाज है।
3: हाँ होती है, जल्दी बोल देते हैं और खत्म कर लेते हैं बात। एनिवर्सरी पे हम यही थे
2: एंड लोगों का जवाब आया है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए हैं। आइए एक आखिरी मौका था, आप देखिए कौन कौन सही है।
4: मैं दिनेश बोल रहा हूँ और ये आवाज थी ऐश्वर्या राय की जो एक कपिल शर्मा के शो में आई थी और कपिल ने उसको ये क्वेश्चन पूछा था, अगर आप दोनों का झगड़ा होता है तो कौन पहले सॉरी बोलता है।
5: गुड इवनिंग, मेरा नाम दिनेश कुमार यादव, मैं कतर से बात कर रहा हूँ। आपका क्वेश्चन का आंसर है ऐश्वर्या राय। आज नाविद को एनिवर्सरी है, हम लोग फ्रेंड्स सब लोग विश कर रहा है।
2: क्या बात है,
5: दंडवाणी दिनेश कुमार जागीर सलमान कामेश।
6: हाय गौरव, दिस इज शुएब। द आंसर टू द मिस्ट्री ऑडियो इज द वॉइस इज ऑफ सोनाली बेंद्रे।
2: हाय
7: गौरव, सलाम अलैकुम। आज कंफ्यूजन तो बहुत है, फिर उर्मिला मतटकर जी का आवाज लगते है, पता नहीं।
8: हाय गौरव भैया, कैसे हो? ये आवाज भाई ऐश्वर्या राय की है।
2: ओके जी, ओके।
9: आई एम तृप्ति, ये आवाज ऐश्वर्या राय की है।
10: गौरव भाई नमस्कार, ये आवाज तो ऐश्वर्या राय जी की है।
11: हाय गौरव, माय नेम इज बाबर, ये है ऐश्वर्या राय बच्चन कपिल शर्मा शो।
2: क्या बात है भाई, कंफ्यूजन के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पूरा पूरा सीन पता है कि ये कपिल शर्मा शो में उन्होंने जवाब दिया था। राइट आंसर इज ऐश्वर्या राय। एंड अब आगे बढ़ते मेरे भाई अमाल मलिक, तुलसी कुमार, यश नावरेकर की आवाज में शाम को गुलाबी करते हैं, हालांकि हो तो नहीं पा रही एकदम मिर्ची सॉल्ट।

0: में चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची, it's hot.
5: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
6: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
5: This initiative is driven by GWM.
7: Back to school means more journeys, more traffic and more reasons to drive with peace of mind.
8: With Bima, motor insurance starts from just QAR 400 with 24/7 roadside assistance including towing, flat tire help, battery jump start and lockout assistance. Plus, flexible payments and 7% cashback.
9: Call 800-0786 or visit bimaonline.com.
7: Bima, for your peace of mind. Terms and conditions apply.
10: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष, महापुरुष।
11: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स,
12: जबरदस्त ट्रैक्स।
11: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
13: 89.6
14: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: ये मुझे लगता है 27 तारीख सैलरी वाली है, इसीलिए नाचू छम छम कर रही है।
1: मस्त मौला गौरव।
0: हमारी जिंदगी में तो कल का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि पैसे की धार धार है। अगर कल ऐसे रेट होंगे तो मजा ही आ जाएगा। हाई पेपर इस वक्त आपको मिलने वाले ऐप पर इंडियन रुपीज अगेंस्ट कतरी रियाल 26 रुपए 32 पैसे, 26.32 INR। वही अगर हम बात करें श्रीलंकन रुपीज के अगेंस्ट 1 कतरी रियाल 90.81 श्रीलंकन रुपीज है। इसके बाद हम बात करें पाकिस्तान रुपीज की, जनाब वाहिद कतरी रियाल के बदले 76.11 पाकिस्तान रुपीज। तपाई को नेपाल रुपीज का रेट छे दाजो, 1 कतरी रियाल के बदले हाजूर 42.08 का भलचर रेट भाई। हाँ जी, 42.08 नेपाल रुपीज का रेट सदाई। अगर इसके बाद बंधु बांग्लादेशी टका बात करेंगे दादा बाड़ी तो पार्टी टो 1 कतरी रियाल के बदले 33.74 तो 33.74 बांग्लादेशी टका का रेट चिलम। मस्त मोल गौरव के साथ ये था आईपे एक्सचेंज रेट, आईपे जहां आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं। ऐप डाउनलोड करते ही आप आराम से वोडाफोन माई बुक का सब्सक्रिप्शन पा जाते हैं, हजारों ऑफर्स को ऐसे ही लेते हैं, एंड साथ ही साथ पर्सन टू पर्सन का सबसे कम ट्रांजैक्शन फीस भी आईपे ही आपसे लेते हैं। मिर्ची इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bold Eye.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: कंगना रनौत, आपका जो होने वाला हस्बैंड है उसने आपको छोड़ दिया है एक समोसे के लिए, आप उस समोसे को क्या कहेंगे?
3: जिंदगी में एक ऐसा काम किया है जो कि एक नींबू और मिर्च भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि तुमने मेरी नजर उतारी है। अच्छा तुम उसे ले गए और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, अब हम दोनों मिलके चाय पियेंगे एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी चाय के साथ।
2: समोसे के साथ एक हाइपोथेटिकल कॉन्वर्सेशन करती हुई कंगना रनौत ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bold Eye.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: Festivities ki planning? It's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds kaafi hai. Ab sirf 25% pay karein and lock in your gold rate 8 November tak. Then if the price increases at the time of purchase, aap pa sakte hain the booked rate. Aur agar gold price drop hoti hai, you get the lower rate. Hai na enough reasons to start the celebrations already? To aaj hi apna price locked, gold secured kijiye with Malabar Gold and Diamonds.
5: अरे वाह, आइसक्रीम एंड केक लवर्स रेडी हो जाओ, डेरी क्वीन लाया है धमाकेदार स्पेशल प्रमोशन।
6: हाँ जी, 26 से 30 सितंबर तक एंजॉय करो अमेजिंग डील्स संडे सिर्फ QR5 से, स्वर्ल्स QR9 में, ब्लिजर्ड्स QR10 से और केक सिर्फ QR60 से।
5: तो देर किस बात की, अपने फेवरेट डेरी क्वीन आउटलेट पर जाओ और स्वीट मोमेंट्स बनाओ। डेरी क्वीन, हैप्पी टेस्ट्स गुड। तो देर किस बात की, सब कुछ आधे प्राइस में।
7: सिर्फ छोरे करें,
8: हमारी चोरियाँ चोरों से कम है के,
9: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के,
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
0: यार मुझे नींद नहीं आती, क्या करूं?
1: इट्स सो सिंपल मैन, जस्ट डोंट वरी, पार्ट टाइम वॉचमैन का काम कर लो, एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी।
2: खोपड़ी तोड़, साले।

0: Sham Shandar with Mirchi Gaurav. Only on 89.6 Mirchi 1. Qatar mein Bollywood ka Mirchi wala tadka. It's hot. Mirchi. Fresh maal.
1: मोहब्बत के हर रंग का एहसास ये प्रेम मोल लिया।

0: इस गाने को गाया है श्रेया घोषाल और निहाल तौरो ने। म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने और लिरिक्स लिखे हैं कुमार ने। सुनते रहिए ये प्रेम मोल लिया, टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: हाँ जी, श्रेया घोषाल क्या गाना गाती है यार आप। निहाल टैरो, हाँ जी निहाल टैरो की आवाज में पहली बार हमने सुना, लेकिन फील अरिजीत सिंह वाली दी है लड़के। लाल घड़ी का टाइम 6:04 एंड इतना ही कहूंगा, मजा आने वाला है दोस्तों।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
1: आप पूछेंगे मजा आने वाला है ये गौरव ने क्यों बोला, तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई, हम दो गानों की चीजों को सुनाते हैं और आपसे पूछते हैं बताइए ये कौन से गाने हैं।
2: गानों की मिक्सिंग,
1: और गानों की मिक्सिंग में आपको ध्यान से ये सुनना है कि गौरव ये जो दो गाने तुम बजा रहे हो यार, ये तो फला फला गाने लग रहे हैं। आइए देखें कितने लोगों को याद है ये गाना, जो कि काफी कठिन है लेकिन आपको पकड़ना तो पड़ेगा। इतना ही कहूंगा ये जो गाना है ना, ये बहुत कुछ इंडियन रेलवे से जुड़ा गाना है। अब पकड़िए ये कौन सा गाना है। चलिए जी, और इसके अलावा एक गाना और है जिसको सुनकर बताना है कौन सा गाना है। बस बस बस यही दो गाने हैं जो मिक्सर में एक साथ मुझे पीसने हैं। ये गाने के लिए मैं इतना हिंट दे रहा हूँ कि ये इंडियन रेलवे से जुड़ा गाना है। अब बताइए ये कौन सा गाना है, और दोनों गानों में से अगर आपने गाने पहचान लिए तो 5000196 पर गाने का नाम लिख के भेज दीजिए या अपनी वॉइस नोट में भेज दीजिए, बताइए दोनों कौन से गाने हैं। इसमें रेल की बात की गई है। चलिए जी, उम्मीद है आपने दोनों गाने पहचान लिए, नहीं पहचाने तो कोई बात नहीं, पेपर तो हमने सेट किया है कठिन वाला, बता ही देंगे इसका जवाब क्या है। मिर्ची इट्स हॉट।

0: Milci. Biscabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La firma la burga. Milci, burga.
1: हेलो
2: हेलो विनीत जी।
1: हाँ जी
2: विनीत जी नमस्कार, जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर। क्या हाल चाल है, शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
1: सही हाँ,
2: हाँ
1: मैं तो चल रही है।
2: हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने बैंड के लिए?
1: 7:30 बजे तक।
2: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई हमारे, जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं। वो बंदे राजस्थान से आने थे, वो वहाँ पे रह गए हैं
1: 9:30-10 बजे तक। ये बताओ ना बचा जाएगा?
2: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाले एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
1: पागल हो गए हो क्या? क्या बजाएगा अकेला वो?
2: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये नहीं, ये अच्छा अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए हैं सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
1: मैं क्या बात करूं यार अकेला क्या बजाएगा?
2: नहीं वही वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए, ये देखिए।
1: हेलो
2: हाँ विनीत जी, मजा आया? ये मिस्टर थॉमस ये
1: क्या बजा रहे हैं, ये सुना आपने?
2: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर। मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने बजे चल रहे हैं सर?
1: मैं घोड़ी तो चढ़ी जाऊंगा यार।
2: अच्छा सर मैं, मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चलेंगे ना मिस्टर थॉमस, घोड़ी चलने वाले चलाएंगे?
1: हेलो हेलो
2: हाँ, मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
1: ये बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद्ध का बजा रहा है ये?
2: जी मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, अभी पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर। हाँ
1: अरे कॉफिन ऑफिन करो, यहाँ क्यों लेके आए तुम?
3: विनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया है सर, आप बुरा मन मानिए।
1: अच्छा भैया
4: आप मेरे यहाँ बजाने वाले थे, बजाने वाले थे।
5: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सेटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
6: किड्स आर बैक टू स्कूल, बिजी शेड्यूल्स, होमवर्क, क्लासेस, टेस्ट, फ्यू सो मच टू डू। वी नो एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, बट हे लिटिल मोमेंट्स ऑफ फन आर इम्पोर्टेंट टू, सो आर यू रेडी टू मेक योर स्कूल डे अ लिटिल मोर एक्साइटिंग?
7: बिकॉज मिर्ची रिचार्ज ड्रिवन बाई GWM इज कमिंग टू योर स्कूल। मिर्ची आरजेस विल बी देयर विद फन, गेम्स, मस्ती, एक्साइटिंग प्राइजेस एंड लॉट्स ऑफ सरप्राइजेस, बिकॉज लर्निंग कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी डिजर्व्स अ लिटिल फन टू।
6: दिस इनिशिएटिव इज ड्रिवन बाई GWM।
8: मिर्ची पर दिल की बात। Ouch.
9: जब आपका बॉस आपको घर जाने से ठीक 5 मिनट पहले SOS सिचुएशन कह के आपको काम दे दे,
10: oh no!
9: तो आप कहते हैं ओके सर, बट आपका दिल कहता है
11: ढल गया दिन, हो गई शाम, जाने दो जाना है।
12: इस वर्ल्ड हार्ट डे अपनों और अपनों के दिल की बात को समझो, क्योंकि जब तक इस दिल की धक धक है तब तक अपनी बक बक है।
13: Mirchi, it's

0: बिल्लो नी तेरा लाल घगरा मंज मसी की आवाज में गाना सुनाया किसने। फिलहाल इस घंटे हम आपके साथ खेल रहे थे गानों के मिक्सर ग्राइंडिंग,
1: गानों की मिक्सी।
0: तो भाई दो गाने पीसे और पूछा बताओ कौन से गाने हैं।

एंड मैंने देखा जब लोग सही जवाब नहीं बता पाते तो लोग लिख लिख के ही बताते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा मैम की, पहली बार जवाब दिया इन्होंने कहा यस। इनका नाम है शायरी घोष और शायरी घोष ने कहा पहला सॉन्ग लेट मी ट्राई एंड इट इज मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड ओ मैन यू कैन दी ना ना ना ना, बिल्कुल सही। लेकिन पहला सॉन्ग जो ये पकड़ रही है जिस पे मैंने रेल हिंट दिया था उसमें से इन्होंने लिखा है इन दिनों दिल मेरा लाइफ इन अ मेट्रो, ना गड़बड़ हो गया। इसके अलावा एक और आया है बिजनेश राणा जी से, बिजनेश राणा जी का नाम मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड फर्स्ट सॉन्ग एंड जब मैंने पूछा रेल वन तो उन्होंने कुछ नहीं लिखा। ऐसे ही कुछ किया है सतीश भाई ने जिन्होंने लिखा है कि द फर्स्ट इज ये गाना इन्होंने लिखा है यस द फर्स्ट वन इज मैं तेरा बॉयफ्रेंड, नहीं फर्स्ट वन तो सर कोई और है। वैसे एक बात करें तो एक इंसान जिन्होंने इन्होंने लिखा है इन दिनों दिल मेरा लाइफ इन अ मेट्रो, ना गड़बड़ हो गया। इसके अलावा एक और आया है बिजनेश राणा जी से, बिजनेश राणा जी का नाम मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड फर्स्ट सॉन्ग एंड जब मैंने पूछा रेल वन तो उन्होंने कुछ नहीं लिखा। ऐसे ही कुछ किया है सतीश भाई ने जिन्होंने लिखा है कि द फर्स्ट इज ये गाना इन्होंने लिखा है यस द फर्स्ट वन इज

0: चले चले अब जब गाना सुनाएंगे तो पूरा ही सुनाएंगे और उसके बाद दिस इज द राइट आंसर। मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड
1: बॉयफ्रेंड।
0: यस राइट आंसर यही दोनों था जो कि नोमान भाई ने बताया। नोमान भाई के लिए तालियां हो जाए भाई। शानदार भाई शानदार, जबरदस्त जिंदाबाद। और अब दोनों गाने बैक टू बैक मिर्ची पर।

0: पढ़ लिख के क्या होगा, बड़े आदमी बन जाओगे सर, बड़े आदमी बने ना बड़े बड़ा सम्मान जरूर पाएंगे। यार हमारी जिंदगी में हमने ऐसे अपने कुछ चंद दोस्तों को देखा है ना, जो मतलब जॉब के बाद भी पढ़ाई कर रहे हैं, कह रहे हैं PhD करेंगे, कुछ बड़ा डॉक्टरेट की डिग्री लेंगे एंड एजुकेशन सेक्टर में कुछ ऐसा करेंगे जिससे आने वाला भविष्य और अच्छा हो। और इसी बात को ध्यान रखते हुए कतर में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हायर एजुकेशन ने कतर एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू कर दिए हैं।
1: #974974
0: ये बात हमसे खुद बताइए CEO ऑफ द कतर एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड मरियम अब्दुल्ला अल मोहनादी जी ने। उन्होंने बताया है कि कितना इम्पोर्टेंट है ये अवार्ड, क्योंकि ये अवार्ड हमारे कतर में उन लोगों को दिया जाता है जो कहीं ना कहीं एजुकेशन की फील्ड में कुछ बेहतरीन कर रहे हैं और आने वाली जनरेशन के लिए कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, उनको ही ये अवार्ड दिया जाता है कतर एजुकेशन का एक्सलेंस अवार्ड। और इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन अब ओपन हो गई है एंड बड़ी बात यह है कि 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच ये बिल्कुल खुली रहेगी। यस, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल विल रिमेन ओपन टिल 31 अक्टूबर एंड रिजल्ट अनाउंस होंगे 4 फरवरी 2027 को। ये एडवांस में उनके लिए तालियां जो अवार्ड जीतने जा रहे हैं। अवार्ड सेरेमनी होगी 18 अप्रैल 2027 में, लेकिन अक्टूबर इज द कट ऑफ टाइम, 31 अक्टूबर से पहले आप कतर एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड के लिए, अगर आपको लगता है आपका कोई दोस्त यार है जिसको यहां जरूर शामिल होना चाहिए, तो याद रखिए इसके लिए बाकायदा नॉमिनेशन का एक क्राइटेरिया है, इवैल्यूएशन के स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, जो भी वेरियस कैटेगरीज हैं उसमें उनको अप्लाई करना पड़ेगा एंड उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, उसके अगेंस्ट में सपोर्टिंग एविडेंस लगाने पड़ेंगे, तब जाकर उनके एफर्ट को वो माहौल मिलेगा, वो फेलिसिटेशन मिलेगा जिसके वो हकदार हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल द पीपल, क्योंकि जिन्होंने भी एजुकेशन की फील्ड में कुछ बड़ा किया है मेरे लिए वो बहुत बड़े हैं, क्योंकि शायद मैं पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था, लेकिन आज भी जब कुछ दोस्तों यारों को देखता हूं ना कि पढ़ाई की फील्ड में आज भी लगे हुए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो लगता है यार पढ़ाई में ही सब कुछ था, समय निकल गया तब समझ में आया। 89.6 मिर्ची 1 करण औजला, तुम डॉक्टर तो नहीं हो ना यार, बहुत अच्छा गाते हो, दिल को छू जाते हो।

आपको अपने स्कूल डेज की एक बात याद है? जब भी हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन होता था, हमारी एनर्जी डबल लेवल की हो जाती थी। एंड मुझे आज भी याद है यार कि हमारे स्कूल का वो जो हॉल जहां पर प्रैक्टिकली हम सब बैठ जाते थे हजारों की नंबर्स में, एंड स्टेज पर जो रहता था वो या तो उसके लिए हूटिंग करते थे या फिर एकदम चीयर करते थे। एंड कई बार ऐसा भी होता था कि पीछे हमारे स्टैनली सर आ जाते थे, सेवियर सर आ जाते थे, व्हाट इज दिस, व्हाई यू गाइस आर शाउटिंग, और फिर हम धीरे से अपना मुंह नीचे कर लेते थे। कुल मिला के यार स्कूल डेज की बात ही अलग होती है, और स्कूल डेज के इन्हीं लम्हों को हम एक बार फिर से बनाने जा रहे हैं GWM मिर्ची रिचार्ज के साथ स्कूल्स में। यस, GWM मिर्ची रिचार्ज, जहां पर बच्चों को स्कूल खुलते ही ढेर सारा पढ़ाई लिखाई करना पड़ा, एग्जाम्स देने पड़े, मिड टर्म एग्जाम खत्म हुआ, तो मिर्ची ने कहा आप बच्चे तो मैं रिचार्ज कर दें, तो हम GWM मिर्ची रिचार्ज लेकर अलग अलग स्कूल्स में जा रहे हैं। एंड इतना ही कहना चाहता हूं कि इस बार भी हम हवल V7 के साथ गए थे, गाड़ी में बैठ के एक अलग ही फीलिंग थी, स्कूल के गेट पे एंट्री मारते हुए हम फिर से वही छोटे बच्चे बन गए थे जो बैग लगाकर स्कूल में अंदर जाते थे और फिर इंतजार करते थे कि एक एक पीरियड खत्म होता जाए, और जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती थी एनर्जी के साथ दौड़ते हुए घर। यार ये सब कुछ हमें एक बार फिर से जीने का मौका मिल रहा है, थैंक यू टू GWM मिर्ची रिचार्ज। एंड अगर आप चाहते हैं हम आपके स्कूल आए, तो बच्चों 5001896 पर अपना नाम और अपने स्कूल का नाम बताओ, हम आपके स्कूल के मैनेजमेंट से बात कर आपके स्कूल में भी आएंगे और ये GWM मिर्ची रिचार्ज की रौनक लगाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही कहेंगे कि स्कूल में आप चाहे कितना भी कुछ कर लें, क्लास के अंदर टीचर आपको पकड़ ही लेते थे। मुझे आज भी याद है कभी कभी मैं क्लास में ना नॉटी छोटा पिल्लू बन जाता, वाँ वाँ वाँ वाँ करता था, और टीचर आके जो उसके बाद पीटती थी, पूछो मत भैया, मिर्ची इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: अर्शद वारसी, आपका एक बहुत ही सक्सेसफुल टाइम चल रहा है, चाहे ओटीटी की बात हो या थिएटर की। प्रीतम और पेड्रो में आपने राजकुमार हिरानी से अच्छे खासे पैसे मांगे होंगे, नहीं?
2: पैसे तो मैंने दिए इनको काम करने के लिए।
3: वो पिक्चर चलने पे डिपेंड करता है।
4: पिक्चर पिट गई तो इससे बुरा साल नहीं होगा।
5: चार फिल्में, उनकी दो, एक सीरीज, एक फिल्म। मैं ही हूँ जो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड हूँ।
1: राजकुमार हिरानी, मैं एवरीवन बी एज अनएम्प्लॉयड एज यू। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स ऑन
0: बॉलीवुड बोलडा। बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोलडा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: अरे वाह, आइसक्रीम एंड केक लवर्स, रेडी हो जाओ। डेरी क्वीन लाया है धमाकेदार स्पेशल प्रमोशन।
7: हाँ जी, 26 से 30 सितंबर तक एंजॉय करो अमेजिंग डील। संडे सिर्फ QR 5 से, स्वर्ल्स QR 9 में, ब्लिजर्ड्स QR 10 से और केक सिर्फ QR 60 से।
6: तो देर किस बात की, अपने फेवरेट डेरी क्वीन आउटलेट पर जाओ और स्वीट मोमेंट्स बनाओ। डेरी क्वीन, हैप्पी टेस्ट्स गुड। तो देर किस बात की, सब कुछ आधे प्राइस में।
8: दोस्ती का उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
9: भाई साहब, सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं, एंटरटेनमेंट चाहिए।
10: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा,
11: खूब मिलेगा, मिलेगा।
12: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
13: 89.6
14: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

أشهد أن لا

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: सर, मैं जब भी घर आता हूँ ना, पापा जाग रहे होते हैं, वो सोते ही नहीं है, तो क्या करूँ?
1: अच्छा, पापा जाग रहे होते हैं, तो एक काम कर, चोरी करने दूसरों के घर जा बच्चू।
2: रख रख

0: हाय हाय वारू वारू गाना मैंने आप पे वार दिया है जी। चलिए जी, फिलहाल मशक्कत लगी लेकिन टॉप टेन की तरफ बढ़ती हमारी भारतीय टीम। मिर्ची घड़ी का टाइम 7:05।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: हाँ जी, मस्त मौला गौरव आपके साथ आखिरी घंटे की तरफ बढ़ते हुए शाम शानदार में बात करेंगे उस शानदार डेवलपमेंट की जो अभी तक हुई है। हाँ जी भाई, अभी तक तो बहरीन अगर हम बात करें तो हमारे जीसीसी नेशंस में लीड कर रहा है, इंडिया से ऊपर है एंड कुवैत नंबर 13 पर है। इंडिया अब 10वीं पोजीशन पर आ गया है और कतर 17th पोजीशन पे बरकरार है विद 3 गोल्ड 3 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज। इसके अलावा अगर इंडिया की बात की जाए विद 6 गोल्ड नाउ वी आर फाइनली इन टॉप 10। लेकिन बड़ी बात यह है कि हमें अगर टॉप 5 पे पहुंचना है तो हमें थाईलैंड से ज्यादा मेडल चाहिए होंगे, शायद एथलेटिक्स से और मेडल्स आ जाए विद 53 मेडल्स। हम ओवरऑल अगर मेडल्स की बात करें तो हम 4th पोजीशन पर हैं, लेकिन क्योंकि गोल्ड कम है इसलिए हम 10वीं पोजीशन पर हैं। वेल, इंडियन टीम होप क्रिकेट से लेकर बाकी गेम्स में अब मेडल गोल्ड ही हो तभी तो ऊपर जाओगे, वरना कोई बात नहीं सर, आपने जीतना जीता उसके लिए भी हम थैंक यू ही कहेंगे, क्योंकि ना एक खिलाड़ी के पीछे बड़ी मेहनत लगती है यहां तक पहुंचने में भी। एंड कतर का ये मेडल बता रहा है कि उन्होंने हर खिलाड़ी के पीछे जो मेहनत की है वो सफल हो रही है और 10 मेडल कतर ने अपने नाम किए हैं। तो मतलब दादी नानी घर दोनों चकाचक चल रहा है। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: Milchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbala. Burka, burka. La vieva la burka. Milchi, burka.
2: हेलो हाँ जी बोलिए
3: क्या बोलूँ जी
2: आप बोलिए ना
3: कॉल आपने किया आप बोलिए
2: कॉल मैंने किया है हेलो
3: अरे बोलो भाई कॉल तुमने किया बोलो क्या हुआ
2: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार मैं यहाँ सो रहा हूँ आपने मुझे कॉल कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार आपने नंबर मेरा डायल किया है मेरे घर बेल बजी है यार
3: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा अरे फोन मैंने नहीं किया यार
2: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार मेरे यहाँ भी बेल बजी है
3: मैं
2: नींद में ही था आपने डिस्टर्ब कर दिया मैं देख रहा हूँ नंबर
3: मैं क्या बैल मेरे यहाँ चाहिए
2: आ जाते हैं उठ के मैं तो फोन काट रहा हूँ फोन रखिए तेरे हेलो हाँ बताइए
3: तेरी जेब में फोन रखा होगा वो बटन दबा होगा बार बार
2: बात करनी है तो बात कर लीजिए आप दो बार फोन कर चुके हैं आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है आप बताइए मुझे प्लीज क्या काम है हेलो
3: फिर कोई
2: यार आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार मैं आपसे प्यार से बात करने जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं
3: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम मैं फोन नहीं कर रहा
2: तो आप गाड़ी चलाइए नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए आप अपना काम करिए फोन मत करिए मुझे कम से कम यार फोन मत करिएगा बस यहाँ पे
3: फोन नहीं कर रहा अभी
2: आप देखिए बदतमीजी से बात मत करिए आप समझ गए मैं यहाँ से चाटा मार दूंगा बता रहा हूँ मैं यहाँ से हटा मेरे चप्पल लेके आ रहा ये मेरे हाथ में चप्पल है मैं बता रहा हूँ मैं
3: चप्पल
2: पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे मैं सो रहा हूँ यहाँ पे फोन क्यों
3: आराम कर दिया तुम
2: जीना भाग यहाँ से भाग इस बार अगर कर दिया ना तो बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा चप्पल है मेरे हाथ में
3: फोन आ रहा है मेरी फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले
2: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ मेरी बात सुनिए अभिषेक मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ तुम रेडियो मिर्ची पे हो तुम्हारी आवाज़ें सारी बाहर आ रही हैं तुम मुर्गा बन गए हो ये सारी कॉल्स मैंने करी थी
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: यार शॉपिंग का प्लान है पर बजट थोड़ा टाइट लग रहा है
6: अरे रिलैक्स लूलू का हाफ पे बैक ऑफर सुना है
5: हाफ पे बैक मतलब
6: बस QAR 200 की शॉपिंग करो और QAR 100 का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली
5: वाओ किस किस चीज पे
6: रेडीमेड गारमेंट्स साड़ीज चूड़ीदार फुटवेयर लेडीज बैग और बेबी एक्सेसरीज
5: मतलब शॉपिंग भी सेविंग भी
6: बिल्कुल वाउचर भी इन्हीं कैटेगरीज में रिडीम कर सकते हो तो देर किस बात की हेड टू लूलू हाफ पे बैक ऑफर के साथ डबल फायदा लूलू वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप
7: Craving pizza? Papa John's has the ultimate deal for you. Buy any one pizza and get one pizza absolutely free. Yes, valid on all pizzas. Aapki choice ki lower price pizza bilkul free ho jayegi. Offer valid only from 26th to 30th September. So tension mat lo. Order now from Papa John's and double the tasty fun. Valid on all pizza sizes. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
8: Cut, cut.
9: Who that?
8: Jassi.
9: Jassi? Kaun si wali Jassi?
8: Jassi who has come, auntie ji?
9: Cut, cut. Who that?
4: Only on 89.6 Mirchi 1.
10: Mirchi.
4: It's hot. It's hot.

0: क्या आप पहले से तैयारी कर कर अपने आप को प्रिपेयर रखने वाले टॉपर थे, या फिर मेरी तरह लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई कर कर रिस्क टेकर? बताइए जरा। आई एम श्योर मेरे जितना लाइफ में किसी ने रिस्क नहीं लिया है, लेकिन रिस्क लेना अच्छी बात नहीं है यार। जब चीजें आसान है तो उसको आसान ही रहने दो ना। जैसे कि अब आप देखिए फेस्टिवल सीजन आ रहा है, अब आपको रिस्क लेनी चाहिए। लास्ट मोमेंट पे आप कुछ भी गोल्ड ज्वेलरी लेने जाएंगे तो प्राइजेस बढ़े ही होंगे, ये आपको पता है। तो अभी टाइम है ना सर, राइट टाइम। जाइए मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में, उनके सारे कलेक्शन में से जो भी आपकी मैडम को अच्छा लगे वो उन्हें पसंद कराइए, और उस ज्वेलरी की प्राइस का 25% अभी से फिक्स कर दीजिए। यानी कि 25% आप एडवांस देंगे, आपका ज्वेलरी रेट फिक्स हो जाएगा। और मान लीजिए आप जिस दिन खरीदने जा रहे हैं उस दिन रेट नीचे चले गए तो आपको लोअर प्राइस का फायदा मिल जाएगा, या फिर ऊपर गए तो जिस प्राइस पे आपने फिक्स किया वो आपको मिल जाएगा। यानी कि दोनों ही तरफ से आपके हाथ में लड्डू ही लड्डू होंगे। वैसे भी फेस्टिवल टाइम में लड्डू तो खाओगे, लेकिन मस्तमौला गौरव को भी एक खिला देना जिसने आपको आइडिया दिया है। 25% एडवांस देकर अपने गोल्ड ज्वेलरी रेट्स को बुक कर लो, एंड बाद में फेस्टिवल्स के टाइम पे फायदा उठाओ। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के इस ऑफर का 89.6 मिर्ची 1 पर मस्तमौला गौरव के साथ। ऐसी फायदे की बात है, मिर्ची इट्स हॉट।
1: अरे यार कोई एसी चला दो यार।
2: सही है सही है। बाकी सारी फेक लगे, देख के तुझको ब्रेक लगे, दूर दूर से ठीक है रानी पास आऊं तो सेक लगे।
3: पारा इतना हाई हुआ कि थर्मामीटर टूट गया, सैया जी का टपक टपक के हाय पसीना छूट गया।

0: पता नहीं।
1: अरे जो है अच्छा ही तो चल रहा है यार, ऐसे ही चलने दो, ऐसा आप सोचते हैं, कतर नहीं। वेल मस्त मौला गौरव, आपको बता दे कि कतर वो है जो जैसे चल रहा है वैसे तो चल रहा है, लेकिन और अच्छा कैसे किया जाए इस पर ज्यादा फोकस करता है। और इसीलिए पब्लिक वर्क्स अथॉरिटी अशगाल ने अब अनाउंस कर दिया हम जनरल हॉस्पिटल का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसकी टोटल वैल्यू है कतरी रियाल 1.179 बिलियन। Yes, अब आप सोचेंगे इससे क्या होने जा रहा है, तो भैया बताना ये चाहते हैं कि हमद जनरल हॉस्पिटल का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कंसिस्ट कर रहा है बहुत सारी चीजों को, जैसे कि एक नई डे सर्जरी बिल्डिंग बनेगी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ आउट पेशेंट टावर होगा, हॉस्पिटल की मेन बिल्डिंग का रेनोवेशन रिहेबिलिटेशन होगा नॉर्थ एंड साउथ इन पेशेंट टावर का, एंड इसके अलावा कुछ और भी सर्विसेज सिस्टम जिनको अपग्रेड किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। कुल मिलाकर अशगाल का ये अब एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जिसके अनाउंसमेंट हो गया, एंड हमद जनरल हॉस्पिटल आने वाले टाइम में और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आएगा। वैसे ही हमारे कतर के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है, और ऐसे में जब ये नया पूरा का पूरा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पूरा होगा ना, तो हम कहेंगे भैया हम दुनिया के उस देश में रह रहे हैं जहां हर चीज टॉप क्लास, ललन टॉप एवन बेहतरीन है। चलिए जी, ऑल्सो एज अ रेसिडेंट वी फील प्राउड कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट इतने पैसे देती है ताकि हमारी और आपकी सेहत चुस्त तंदुरुस्त रहे, हम फिट एंड फाइन रहे, एंड हमें कभी भी किसी तरह की क्रिटिकल सिचुएशन में वो यहीं ऑपरेट करके ठीक कर दें। थैंक यू टू हमद जनरल हॉस्पिटल, सारे मेडिकल स्टाफ, 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार पता है, एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
3: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: Festivities की planning, it's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds काफी है. अब सिर्फ 25% pay करें and lock in your gold rate 8 November तक. Then if the price increases at the time of purchase, आप पा सकते हैं the booked rate. और अगर gold price drop होती है, you get the lower rate. है ना enough reasons to start the celebrations already? तो आज ही अपना price locked, gold secured कीजिए with Malabar Gold and Diamonds.

0: supermarkets. Don't miss out. Visit your nearest Lulu hypermarket and make your anniversary shopping extra special. Lulu hypermarket, where the world comes to shop.
1: मिर्ची पर दिल की बात।
2: आपके और आपके पार्टनर के बीच हुई बहस में जब आपकी आवाज तेज हो जाए और वो कहे
3: तो ठीक है चिल्लाओ फिर,
2: तो इसका मतलब उसका दिल कहना चाहता है।
1: इस वर्ल्ड हार्ट डे अपनों और अपनों के दिल की बात को समझो, क्योंकि जब तक इस दिल की धक धक है तब तक अपनी बक बक है। मिर्ची, इट्स हॉट।

बिल्कुल ऐसे ही लुटपुट वाली फीलिंग आई जब दत्ता साहब का चलान अपने गिटार को पहनने के कारण कट गया। मस्त मौला गौरव आपको बताना चाहेगा कि बेंगलुरु में एआई वाले ट्रैफिक कैमरे ने एक गिटार का चालान काट दिया और फिर गिटार को जो लेके जा रहे थे वो भाई साहब शौविक दत्ता साहब हैरान रह गए, कहे अरे ऐसे कैसे चालान कट गया, पीछे बैठी सवारी ने हेलमेट नहीं पहना, ये बोलकर उनका चालान काटा गया था। लेकिन फाइनली जब फोटो को अच्छे से देखा गया तो ये रियलाइज किया गया यह गिटार था। वैसे बेंगलुरु में एआई सिस्टम कैमरे से ना बहुत सारे रोज फाइन्स आते हैं, लेकिन ये मामला देखकर मैं इतना ही कहूंगा एआई तुम्हारे अंदर आर्टिफिशियली वाला इंटेलिजेंस है जी, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, तुम्हें ये नहीं पता कि हम इंडिया वाले लोग ना बड़े चालाक होते हैं। जैसे ही हमें पता लगता है इस रोड पे चालान कट रहा है, वहां भले ही हमारे पास हो ना हो हेलमेट, तो हम किसी भी बड़े कद्दू से लेकर तरबूज को काट के भी हेलमेट जैसा बना लेते हैं, क्योंकि हम पैसे नहीं देंगे वो भी चालान के बिल्कुल ही नहीं। 89.6 मिर्ची वन पर फिलहाल मी सिंह चटबा भाई लौटेंगे कल शाम एक बार फिर से ढेर सारी मस्ती एनर्जी के साथ, यही शाम शानदार की महफिल सजाएंगे। अभी भी तब तक ले मां सलामा हरारा खतीर मिर्ची इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: भूमि पेडनेकर, हमारे स्कूल में तो टॉयलेट में जाके टॉयलेट करते थे, आपके स्कूल में क्या करते थे?
3: इन आवर स्कूल टॉयलेट यूज्ड टू बी द प्लेस जहाँ पे सब जाके रोमांस करते थे। That used to be the spot in my school.
4: स्कूल था, कंजर खाना खोला हुआ था।
3: दोनों
2: इसी कहानी से मुझे लगता है टॉयलेट एक प्रेम कथा का नाम रखा होगा। नहीं, आप सुन रहे थे अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर को ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: अरे वाह, आइसक्रीम एंड केक लवर्स रेडी हो जाओ, डेरी क्वीन लाया है धमाकेदार स्पेशल प्रमोशन।
6: हाँ जी, 26 से 30 सितंबर तक एंजॉय करो अमेजिंग डील्स। संडे सिर्फ QR 5 से, स्वर्ल्स QR 9 में, ब्लिजर्ड्स QR 10 से और केक सिर्फ QR 60 से।
5: तो देर किस बात की, अपने फेवरेट डेरी क्वीन आउटलेट पर जाओ और स्वीट मोमेंट्स बनाओ। डेरी क्वीन, हैप्पी टेस्ट्स गुड। तो देर किस बात की, सब कुछ आधे प्राइस में।
7: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
8: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
9: बहुत कुछ होगा।
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ। आदाब, कैसे हैं आप? और कई बार जब कोई भी रिलेशनशिप खत्म हो रही होती है ना, कोई दोस्ती खत्म हो रही होती है, प्यार खत्म हो रहा होता है, कुछ ऐसा खत्म जब हो रहा होता है, तब इंसान का ना बड़ा अजीब सा एक चेहरा देखने को मिलता है, बड़ा पत्थरनुमा, बड़ा हार्ड सा एक चेहरा देखने को मिलता है। शायर लखनवी साहब का एक शेर पढ़ा मैंने और वो सारे चेहरे अचानक से सामने आ गए। कहते हैं कि कितने दिल थे जो हो गए पत्थर, कितने दिल थे जो हो गए पत्थर, कितने पत्थर थे जो सनम ठहरे। आए हाय हाय हाय हाय, क्या बात है। और सच बात है, मोहब्बत से गुजरने के बाद कई दिल पत्थर बन जाते हैं जब वो मोहब्बत पूरी नहीं होती। लेकिन मेरे ख्याल से असली जादू तो है दिल को दिल बनाए रखने का, बावजूद इसके कि मोहब्बत पूरी ना हो। कितने दिल थे जो हो गए पत्थर, कितने पत्थर थे जो सनम ठहरे। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Mirchi.
2: Day. The person you are trying to urgently call is snoring and sleeping inside the hut.
3: Hello,
4: ये हंसा से मेरी बात कराओ भाई.
3: Hello, क्या बोल रही हूँ मैं?
4: श्रीनिवासपुरी से हेड कांस्टेबल दरबीर सिंह बोल रहा हूँ.
3: हाँ जी.
4: आपके मोबाइल पे कल 3-4 मिस्ड कॉल आई थी.
3: आई तो थी, किसी की पता नहीं किसकी थी.
4: ना आपको पता ही तो नहीं चलेगा किसकी थी. आपको मालूम है आपने क्या किया है? आपने डायलर टोन ये क्या लगा रखी है? जे जे जे, तीन लोगों ने आपको कॉल किया है डायलर टोन सुन के. एक आदमी सीरियस है, एम्स में भर्ती है. मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको यही डायलर टोन मिली थी जे जे जे जे जे. ये दिल के मरीज के लिए कितनी खतरनाक है आपको ये पता है? तीन दिल के पेशेंट ने आपको फोन किया है और उनकी हालत खराब है. बेवकूफी की बात कर रही है.
3: मैंने अगर लगा रखा है, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी अगर कॉलर टोन उसको नहीं पसंद है तो मुझे फोन नहीं करे ना.
4: तो किसी को कैसे पता चलेगा कॉलर ट्यून कैसी है? नहीं है, मैं, मेरे को पता था, मैंने आपको कॉल किया, मेरा दिल हिल गया यार.
3: नहीं तो कौन सी लगाऊं मैं?
4: कितनी डायलर टोन है? तुम आए तो गली में आज चांद निकलता, या फिर ये लगा लीजिए, तुझे देखा तो ये जाना सनम. आपका
3: पता भी नहीं मेरे को किसने लगाई.
4: दफा 300 ट्रिंग ट्रिंग के तहत ये बहुत बड़ा गुनाह है, मैं आपको ये बता रहा हूँ. दिल्ली में इस तरह की कॉलर ट्यून नहीं लगाएंगी आप, समझिए आप. आप क्या कर सकते हैं? आप मुझसे बहस करने जा रही हैं?
3: नहीं, मत सुने. और अगर कोई बीमार है मेरे कारण से, थोड़ा ना बीमार होगा
4: आपके कारण से. हंसा, मैं आपसे आखिरी बार तमीज से बात कर रहा हूँ. एक लेडी कांस्टेबल आएगी और आपको खींचती हुई लेके आएगी यहाँ श्रीनिवासपुरी थाने में. फिर आपको बताएंगे कि कैसे कॉलर ट्यून लगती है. आप बहस करने जा रही है मेरे से?
3: अच्छा ठीक है सर, आप जो बोलेंगे.
4: आपको कॉलर ट्यून लगानी है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कौन सी कॉलर ट्यून लगाएंगी.
3: हाँ बताइए
4: आप कॉलर ट्यून लगाइए कुकड़ू को.
3: ठीक है सर, उसका मेरे को आप दे दीजिएगा, मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगी वो.
4: ये रेडियो मिर्ची से मिलेगी हमसा, और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुम्हारा मुर्गा बनाया है, मुझे राजीव ने तुम्हारा नंबर दिया था, और तुम्हारी कॉलर ट्यून वाकई में खतरनाक है. जे जे जे.
3: यार आप लोग किसी दिन ना, मतलब
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: यार शॉपिंग का प्लान है पर बजट थोड़ा टाइट लग रहा है.
6: अरे रिलैक्स, लूलू का हाफ पे बैक ऑफर सुना है.
5: हाफ पे बैक मतलब?
6: बस QAR 200 की शॉपिंग करो और QAR 100 का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली.
5: वाओ, किस किस चीज पे?
6: रेडीमेड गारमेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग और बेबी एक्सेसरीज.
5: मतलब शॉपिंग भी सेविंग भी?
6: बिल्कुल, वाउचर भी इन्हीं कैटेगरीज में रिडीम कर सकते हो, तो देर किस बात की. हेड टू लूलू, हाफ पे बैक ऑफर के साथ डबल फायदा. लूलू, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.
7: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना.
8: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
9: कैसे रुक सकता है?
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: जॉन मिर्ची इट्स हॉट
1: और इन्हें ट्रेजेडी क्वीन के नाम से भी जाना जाता था।
2: मिर्ची महफिल पे रूबरू।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी करता है आपका इस्तकबाल फिर से और वक्त है आपको रूबरू कराने का हमारी आज की शायरा मीना कुमारी जी से। बिल्कुल आई एम श्योर आप सब मीना कुमारी जी को जानते होंगे। भारत की एक मशहूर हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री थीं और साथ ही साथ एक शायरा भी थीं। इन्हें खासकर जो दुखांत फिल्में होती हैं उनसे याद किया जाता है। उनकी जो भूमिकाएं रहती थीं ऐसी पिक्चर्स में बड़ी खूबसूरत रहती थीं और उन्हीं का एक शेर आज आपको नज़र करने जा रहा हूँ मैं। कहती हैं कि आगाज़ तो होता है अंजाम नहीं होता, आगाज़ तो होता है शुरुआत तो होती है अंजाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता। वाह जी वाह क्या बात है। मतलब हाय मील खत्म करने के लिए जैसे डेजर्ट जरूरी है वैसे ही उसका नाम जरूरी है, वरना कहानी अभी चल रही है, वरना कहानी अभी बाकी है। आगाज तो होता है अंजाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता। मीना कुमारी नाज। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: tickets, don't miss out. Visit your nearest Lulu hypermarket and make your anniversary shopping extra special. Lulu hypermarket, where the world comes to shop.
1: मिर्ची पर दिल की बात।
2: मीटिंग में आपका बॉस आपकी क्लास लगाने के बाद जब एचआर फन एक्टिविटी में पार्ट लेने को कहे तो आप कहते हैं ओके, पर आपका दिल कहता है
3: आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो।
1: इस वर्ल्ड हार्ट डे अपनों और अपनों के दिल की बात को समझो, क्योंकि जब तक इस दिल की धक धक है तब तक अपनी बक बक है, बक बक है। मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल पर आपके ताशी है आपके साथ। और आजकल ना जेंजी की जबान में सिचुएशनशिप नाम का एक लफ्ज आया है। और एक्चुअली सिचुएशनशिप के बाद अभी मैं हाल में पढ़ रहा था मेबी रिलेशनशिप, मतलब कोई ऐसी रिलेशनशिप जो मेबी पे है अभी, केवल मेबी रिलेशनशिप कहने लगे हैं वो लोग इसे। इससे ना मुझे उमर अंसारी साहब का एक शेर याद आता है, क्योंकि ये लव्स हो सकता है नया आया हो लेकिन ये भावनाएं तो हमेशा से ही एग्जिस्ट कर रही हैं ना। उमर अंसारी साहब लिखते हैं कि मुसाफिरों से मोहब्बत की बात कर लेकिन, मुसाफिरों से मोहब्बत की बात कर लेकिन मुसाफिरों की मोहब्बत का एतबार न कर। क्या बात है, सच्ची बात है दोस्त। यही बात है कि मुसाफिर जो होते हैं उनका तो काम ही यही है ना, गुजर जाना। अब किसी गुजरने वाले शख्स से, किसी गुजरने वाले इंसान से दिल लगाओगे तो टूटेगा तो है ही। मुसाफिरों से मोहब्बत की बात कर लेकिन मुसाफिरों की मोहब्बत का एतबार न कर। स्टेडियो इन टू मिर्ची महफिल। और आपका भी ऐसा कोई किस्सा है क्या, जब आपको किसी मुसाफिर से मोहब्बत हो गई थी या फिर आप ही वो मुसाफिर थे? अगर हाँ तो बताइए मेरे इंस्टाग्राम ताशी ऑन मिर्ची पर। आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: on Mirchi. It's hot.
1: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
0: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
2: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
5: FM, मिर्ची वन। It's hot.

0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल पर अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड
1: कि आपका ताशी नजर करे आपको आज का ताशी अनप्लग्ड और ये जो गजल है गुलजार साहब ने लिखी है जगजीत जी ने इसको अपनी आवाज दी है और मेरे ख्याल से वन ऑफ दोज गजल्स है मेरे जहन में जगजीत सिंह जी की जिसने अपनी ऐसी छाप छोड़ी क्योंकि बहुत बचपन में सुनी थी मैंने लेकिन रह गई यार रह गई दिल के अंदर. दिस इज कॉल्ड शाम से आंख में नमी सी है.

आई हो और आपकी भी कोई फरमाइश हो तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं मुझे मेरे इंस्टाग्राम ताशी ऑन मिर्ची TASHI ऑन मिर्ची पर. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल. आपका ताशी है आपके साथ. इट्स हॉट.

0: हाय
1: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
2: बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
1: मैं रात को लेट हो जाता हूँ, सोसाइटी के कुत्ते मेरे पीछे पड़ जाते हैं। फिर सब जाग जाते हैं और मुझे लुक्स देते रहते हैं। बहुत ऑकवर्ड हो जाता है सर, क्या करूँ?
2: अरे तो एक काम कर, चोरी करने दूसरी सोसाइटी में जा, जा कुत्ते ना हो।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, विद इस जमाने की श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स। हेलो हेलो, वेलकम। आज मैंने पता है क्या सोचा है कि मैं आपको थोड़ा सा डराने की कोशिश करूंगी। आज एक ऐसी मिस्ट्री फिल्म कह लो, हॉरर फिल्म कह लो, मेरे मम्मी पापा का बताना है कि ये फिल्म बहुत चली थी उनके जमाने में, एंड लोग ना बार बार इस फिल्म को देखने जा रहे थे। नंबर वन, ये उस टाइम की इनिशियल जो मिस्ट्री फिल्म बन रही थी ना, उनमें से एक थी। नंबर टू, इसमें बहुत ही ग्लैमरस हीरोइन जो कई सारी और फिल्में कर चुकी थी वो थी, एंड हर नेम वाज साधना। मनोज कुमार थे इसमें, इट वाज डायरेक्टेड बाय राज खोसला, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म वो कौन थी। तो भाई इसकी ढेर सारी बातें होंगी, एंड ऑफ कोर्स इसके बहुत सारे गाने हैं जो लता जी ने गाए हैं, मैं आपको सुनाऊंगी एक एक करके। उसके लिए आपको क्या करना है, सिट बैक एंड रिलैक्स, बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ दो। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नवीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हाय, ये से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
3: हेलो
4: हाय, ये फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4,19,83,93।
5: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार, अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं। आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका
3: वही मैं सुन रहा था।
4: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339। हो गया।
3: हाँ जी।
4: कुकड़ों को
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
7: यार शॉपिंग का प्लान है पर बजट थोड़ा टाइट लग रहा है।
8: अरे रिलैक्स, लूलू का हाफ पे बैक ऑफर सुना है।
7: हाफ पे बैक मतलब?
8: बस QAR 200 की शॉपिंग करो और QAR 100 का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली।
7: वाओ, किस किस चीज पे?
8: रेडीमेड गारमेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग और बेबी एक्सेसरीज।
7: मतलब शॉपिंग भी सेविंग भी?
8: बिल्कुल, वाउचर भी इन्हीं कैटेगरीज में रिडीम कर सकते हो, तो देर किस बात की। हेड टू लूलू, हाफ पे बैक ऑफर के साथ डबल फायदा। लूलू, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
9: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
10: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
11: दोनों मिलेगा।
12: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन
13: 89.6, 89.6 FM,
0: मिर्ची 1। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा सुनो, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे बॉस को कोई आइडिया पसंद नहीं आया हो जो तुमने दिया हो, बट फिर भी उसने तुम्हें इतनी फ्रीडम दी हो कि अच्छा जाओ भाई कर लो अपने मन की, फिर देखते हैं, एंड फिर उसके बाद तुम्हारे आइडिया ने झंडे गाड़ दियो, ओहो व्हाट अ प्राउड फीलिंग है ना। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, और ऐसा ही हुआ था एक गोल्डन गाने के साथ फ्रॉम द फिल्म वो कौन थी जिसकी आज बातें हो रही है। सो ये गाने की पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन को 5 बार रिजेक्ट किया प्रोड्यूसर NN सिप्पी साहब ने एंड डायरेक्टर राज खोसला साहब ने, और बार बार इस गाने की कॉम्पोजिशन बना करके ना इसको पेश किया जा रहा था। अब हुआ ये कि मदन मोहन हु लव्ड द सॉन्ग वांटेड कि कुछ भी करके ना इस गाने को रख लिया जाए, रिटेन कर लिया जाए, तो उन्होंने 6th कॉम्पोजिशन बनाई। जब राज खोसला ने कहा अच्छा भाई ठीक है तुम्हें बहुत पसंद है चलो एक बार और बना के दिखा दो, फिर क्या हुआ जब 6th कॉम्पोजिशन सुनी राज खोसला ने, उन्हें तब भी नहीं पसंद आया, बट फॉर्चुनेटली बिकॉज दिस सॉन्ग हैड टू बी अ मैसिव हिट, उस दिन स्टूडियो में आ गए मनोज कुमार और उन्होंने इस गाने को सुन लिया। मनोज कुमार ने कहा कि दादा ये तो बेहद खूबसूरत गाना है, ये आगे जाकर के जैसे ही रिलीज होगा ना ये गाना मैसिव हिट होगा। इस गाने को रिटेन किया गया एंड उसके बाद रेस्ट वॉज हिस्ट्री। वो कौन सा गाना है? नहीं, आपको मेरी आदत तो पता है, मैं ऐसे ही नहीं बताती हूँ, थोड़ा सा ना मैं आपको सस्पेंस में छोड़ के जाती हूँ, जिससे आई हैव द श्योरिटी दैट यू आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर एल्स। तो यहीं पे बने रहो श्रेया के साथ ऑन पुरानी जींस, मैं बताऊंगी किस गाने की बात।

0: hypermarkets. Don't miss out. Visit your nearest Lulu hypermarket and make your anniversary shopping extra special.
1: Lulu hypermarket, where the world comes to shop.
2: और मुशायद जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
3: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
4: बार बार
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन स्टेशन
5: 89.6
6: FM मिर्ची वन इट्स हॉट
7: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

थोड़ी देर पहले आपको मैं सस्पेंस में छोड़ के गई थी, अब बताती हूँ पूरी कहानी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म वो कौन थी। इस फिल्म का एक गाना जो मुझे क्या पूरी दुनिया को बेहद पसंद है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप रेट्रो फैन हैं तो ये गाना आपकी प्लेलिस्ट में डेफिनेटली होगा। लेकिन इस गाने के पीछे ना एक बहुत ही कमाल की स्टोरी है। ये गाना जब कंपोज हुआ, और कंपोज करने वाले थे मदन मोहन साहब, तो वो ना एनएन सिप्पी जो कि प्रोड्यूसर थे ऑफ वो कौन थी के, एंड राज खोसला डायरेक्टर, उनके पास जब लेकर के गए ना, इन दोनों को ही इस गाने की कॉम्पोजिशन नहीं अच्छी लगी। एंड नॉट जस्ट वन टाइम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऑल फाइव कॉम्पोजिशंस वर रिजेक्टेड बाय देम। तो फिर ना राज खोसला जो कि भाई ऑफकोर्स यू नो डायरेक्टर थे, जानते थे कि एक आर्टिस्ट कैसे काम करता है, उन्होंने मदन मोहन से कहा कि अगर तुम्हें ये गाना इतना ही पसंद है चलो एक और ट्राई कर लो। मदन मोहन ने एक और बार इसको कंपोज किया। एक और बार जब ये सर्व किया गया डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को, उन दोनों ने इसको फिर से मना कर दिया। अब क्या हुआ, फॉर्चुनेटली क्योंकि ये गाना इतना ह्यूज हिट होना ही होना था, इसकी डेस्टिनी थी एंड ये इतना खूबसूरत था कि उस दिन मनोज कुमार स्टूडियो में आ गए। मनोज कुमार ने जब ये गाना सुना उनके तो होश उड़ गए। उन्होंने कहा ये इतना खूबसूरत गाना है, इसको डेफिनेटली डेफिनेटली रखा जाए इन द फिल्म। फिर इस गाने को लता जी ने गाया और ये गाना आज तक हम सबकी प्लेलिस्ट में है। वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स कमिंग अप राइट नेक्स्ट फॉर यू, एंड द सॉन्ग इज ओहो। लता जी की आवाज में पूरा गाना आप नेक्स्ट फॉर यू। मैं हूं श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची पर दिल की बात।
2: जब आपका बॉस आपको घर जाने से ठीक 5 मिनट पहले SOS सिचुएशन कह के आपको काम दे दे
3: oh, no.
2: तो आप कहते हैं ओके सर, बट आपका दिल कहता है
4: ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है।
1: इस वर्ल्ड हार्ट डे अपनों और अपनों के दिल की बात को समझो, क्योंकि जब तक इस दिल की धक धक है तब तक अपनी बक बक है। मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये स्क्रिप्ट थी किसी और की, बनाने वाला कोई और निकला। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। तो आज ना बात हो रही है द मैसिव हिट, द सस्पेंस फिल्म या फिर हॉरर फिल्म कह लो उस जमाने की, वो कौन थी। आपको पता है क्या हुआ था, मैं बताती हूँ पूरी कहानी। सो 1950s में गुरुदत्त साहब ने एक फिल्म लॉन्च करी जिसका नाम था रास। इस फिल्म में थे सुनील दत्त साहब, वहीदा रहमान एंड रहमान जी। इट वाज सपोज्ड टू बी डायरेक्टेड बाय शशि भूषण जी। पता नहीं क्या हुआ कि 10 दिन के बाद गुरुदत्त साहब ने फिल्म की शूटिंग रोक दी। उसके बाद 10 साल के बाद उन्होंने स्क्रिप्ट पे फिर से काम किया और इस बार उन्होंने स्क्रिप्ट में सुनील दत्त को नहीं बल्कि खुद को रखा। फिर से इसका नाम रखा गया रास। सो नाउ दिस टाइम वहीदा रहमान थी, रहमान थे और गुरुदत्त साहब थे। 12 रील्स इस स्क्रिप्ट की यानी फिर इसी फिल्म रास की शूट हो गई। एंड देन अगेन कुछ हुआ कि गुरुदत्त साहब ने इस फिल्म को रोक दिया। एट दैट टाइम द मूवी वॉज बेस्ड ऑन द नॉवल द वुमन इन व्हाइट। राज खोसला साहब उस समय गुरुदत्त साहब को असिस्ट कर रहे थे एज असिस्टेंट डायरेक्टर और उन्होंने तभी सोच लिया कि इस अनफिनिश्ड स्क्रिप्ट को मैं पूरा करूंगा, मैं बनाऊंगा एक फिल्म। सो ये जो आप वो कौन थी कि हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये जो स्क्रिप्ट थी ये राज खोसला साहब ने इसी फिल्म से उठाई थी जब वो असिस्ट कर रहे थे गुरुदत्त साहब को और उन्होंने रास की जगह इसको नाम दिया वो कौन थी। उसके बाद तो भाई बॉक्स ऑफिस पे भीड़ लग गई थी टू वॉच दिस फिल्म। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें मेरे यानी आपकी श्रेया के साथ। और श्रेया से अगर 1-to-1 बात करनी है, बिकॉज यहाँ तो सिर्फ मैं बोलती रहती हूँ, दो ऐसी जगह है जहाँ आप भी बोल सकते हो, इस फेसबुक और इंस्टा, आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे SHREYA श्रेया विद लव माई हैंडल, वहां पे बता देना जो भी बताना।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
1: यार मुझे नींद नहीं आती, क्या करूं?
2: इट्स सो सिंपल मैन, जस्ट डोंट वरी, पार्ट टाइम वॉचमैन का काम कर लो, एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी।
3: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

मनोज कुमार जी को इस फिल्म के लिए लिटरली उनके न्यू बॉर्न बेटे विशाल की दुहाई देनी पड़ी थी डायरेक्टर राज खोसला एंड प्रोड्यूसर एनएन सिप्पी साहब को। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, मनोज कुमार उस टाइम के सुपरस्टार, वो जल्दी जल्दी फिल्मों को हाँ ही नहीं कहते थे, यूज टू बी वेरी वेरी सिलेक्टिव। सो इस चक्कर में उन्होंने एक दो साल कुछ काम ही नहीं किया। अब ऐसे में भाई प्रोड्यूसर साहब और डायरेक्टर साहब चाहते थे कि किसी तरह वो इस मिस्ट्री फिल्म में आ जाए, वो कौन थी में मनोज कुमार जो है वो लीड रोल प्ले कर ले। मनोज कुमार वॉज लिटिल स्केप्टिकल, ही वॉज डाउटिंग कि मिस्ट्री फिल्म है, थोड़ी सी हॉरर फिल्म है, करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ। ऐसे में भाई डायरेक्टर राज खोसला ने उनसे कहा कि भाई अभी अभी तुम्हारे घर पर लड़का हुआ है और ये बहुत शगुन की बात है, तुम देखना ये फिल्म करोगे और सुपर डुपर हिट होगी फिल्म। मनोज कुमार ने अपने बेटे विशाल का नाम सुन करके फिल्म को एक्चुअली हाँ कह दी एंड द फिल्म डिड वंडर्स एट द बॉक्स ऑफिस। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें, यानी वो कौन थी की, और इस फिल्म के गाने श्रेया के साथ। कहीं भी मत जाना, कुछ गानों के उस पार ना एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट दिस फिल्म, सब बताऊंगी। कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: खटखट
2: हूँ देर
1: बनता
2: बनता हूँ।
1: अरे बनता तो बहुत हूँ मैं अपने आप को।
2: खटखट हूँ देर
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
3: ए, आओ ना, दिल है बेकरार।
2: नाना नाना

दस सालों तक इस गाने को किसी फिल्म में जगह नहीं मिली, क्योंकि फिल्म में कभी ऐसी सिचुएशन ही नहीं आई। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ मदन मोहन साहब अपने खजाने में ये धुन को लेकर के चल रहे थे। 1950s में उन्होंने ये धुन बनाई थी, एंड 1960s में जब वो कौन थी आई, यानी ये फिल्म जिसके बारे में मैं आज बात कर रही हूँ, साधना जी की, मनोज कुमार की, एंड डायरेक्टेड बाय राज खोसला, तब उनके इस एवरग्रीन गाने को, इस ब्यूटी को एक्चुअली में फिल्म में जगह मिली। मैं कौन से गाने की बात कर रही हूँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो, क्योंकि आपको लगेगा क्या बात कर रही हूँ श्रेया, ये गाना 10 साल तक बन के रखा हुआ था। अभी बताऊंगी, गाने सुन करके वापस आओ। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची स्टोरीज।
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। पता है एक आंटी मोहल्ले की चुगली करने के पैसे लेती थी और उन पैसों से उन्होंने घर बना लिया।
4: भाई इसका सही है यार, दूसरों का घर तोड़ के खुद का घर बना लिया। और वैसे देखा जाए तो इनके साथ में चाय पे चर्चा करने के लिए पहले खर्चा करना पड़ता है बॉस।
0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची पर दिल की बात।
5: आपके और आपके पार्टनर के बीच हुई बहस में जब आपकी आवाज तेज हो जाए और वो कहे
6: तो ठीक है चिल्लाओ फिर,
5: तो इसका मतलब उसका दिल कहना चाहता है।
1: इस वर्ल्ड हार्ट डे अपनों और अपनों के दिल की बात को समझो, क्योंकि जब तक इस दिल की धक धक है तब तक अपनी बक बक है। मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मदन मोहन साहब अपने खजाने में इस धुन को लेकर के 10 साल तक घूम रहे थे। कुछ डायरेक्टर्स को उन्होंने अप्रोच भी किया, लेकिन डायरेक्टर्स ने कहा नहीं, ये गाना हमारी फिल्म में तो नहीं चलेगा, ऐसी सिचुएशन ही नहीं है हमारी फिल्म में। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और आज वी आर टॉकिंग अबाउट वो कौन थी, इंडिया के सिनेमा के इनिशियल ईयर्स में आई एक मिस्ट्री फिल्म, एक सस्पेंस फिल्म, जिसमें थी साधना जी, मनोज कुमार, डायरेक्टेड बाय राज खोसला, और इस फिल्म के गाने ऑल कंपोज बाय मदन मोहन साहब। तो अब जो मैं आपको गाना सुनाने वाली हूँ ना, ये गाना नहीं है, ये मास्टरपीस है। लता जी ने इस गाने को गाया था, और ये गाना बहुत टाइम तक, नॉट गाना एक्चुअली, बट ये जो धुन थी, समझ ही गए होंगे आप, ये धुन मदन मोहन साहब ने ना बस कंपोज करके रखी हुई थी। जब वो कुछ डायरेक्टर्स के पास गए तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी फिल्म में तो ऐसा कोई सस्पेंस मिस्ट्री हॉरर वाली सिचुएशन ही नहीं है, तो हम इसे कहाँ यूज़ करेंगे। एंड देन फाइनली 1962 आफ्टर 10 ईयर्स, व्हेन राज खोसला मेड वो कौन थी, इस गाने को अपनी सही जगह मिली। एंड गाना कौन सा है ज़रा गौर फरमाइए। देखो एकदम हॉन्टेड वाली म्यूजिक और साथ में लता जी की आवाज, इट इज नन अदर देन नैना बरसे। कमिंग अवे

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: अर्शद वारसे, आपका एक बहुत ही सक्सेसफुल टाइम चल रहा है, चाहे ओटीटी की बात हो या थिएटर की। प्रीतम और पेड्रो में आपने राजकुमार हिरानी से अच्छे खासे पैसे मांगे होंगे, नहीं?
4: पैसे तो मैंने दिए इनको काम करने के लिए।
5: वो पिक्चर चलने पे डिपेंड करता है।
6: पिक्चर पिट गई तो इससे बुरा साल नहीं होगा।
7: उनकी दो, एक सीरीज एक फिल्म, मैं ही हूँ जो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड हूँ।
3: राजकुमार हिरानी में एवरीवन बी एज अनएम्प्लॉयड एज यू। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स ऑल।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: खबर।
1: वहाँ के लोकल्स ये देख करके हैरान थे कि ये क्या हो रहा है, लड़की के मुंह से लड़के की आवाज कैसे निकल रही है। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म वो कौन थी। तो उसका ये वाला जो गाना है ना, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, जो लता जी की खूबसूरत आवाज में है, इसके पीछे ना एक और कहानी है। सो होता ये है कि कश्मीर में जब ये गाना शूट हो रहा होता है, तो साधना जी को इस पे ऑफ कोर्स गाना गाना था, मतलब मुंह चलाना था, लिप सिंक करना था। अब हुआ ये कि लता जी कोई कॉन्सर्ट के लिए आउट ऑफ इंडिया थी, तो ये गाना डब नहीं कर पाई। तो मदन मोहन साहब ने कहा कि ठीक है, तुम लोग कश्मीर में हो ऑलरेडी, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने वोकल्स गा करके भेज देता हूँ और बस साधना से लिप सिंक करा लेना। अब क्या हुआ, क्योंकि ये गाना आउटडोर पे शूट हो रहा था, तो कश्मीर के लोकल्स इकट्ठा हो गए देखने के लिए। और शूटिंग इमेजिन इन 1960s, ये तो बहुत बड़ी बात होती थी, है ना, इतनी सिक्योरिटी वगैरह भी नहीं चाहिए होती थी, आराम से लोग शूट वूट कर लेते थे। तो लोकल्स ने जब ये देखा कि ये क्या हो रहा है भाई, हीरोइन के मुँह से हीरो जैसी आवाज, यानी लड़की के मुँह से लड़के की आवाज कैसे निकल रही है, इट वॉज अ मेजर टॉक ऑफ द टाउन एट दैट टाइम। फिर खैर, जब लता जी वापस आई, उनसे ये गाना डब कराया गया एंड इट बिकेम अ मैसिव हिट। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें चलती रहेंगी। मैं हूं श्रेया।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी बिल्कुल बताइए सवाल क्या है
0: सर वो मुझे हेल्दी डाइट शुरू करना है कैसे करूं
1: अरे तो सिंपल है ना ब्रेकफास्ट से स्टार्ट कर मैं भी सबसे पहले ब्रेकफास्ट ही करता हूँ

89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जींस श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

महबूब खान काफी नाराज हुए प्रेम चोपड़ा से, उनके सारे अरमानों पे पानी फिर गया था। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ और आज ना वो कौन थी की बात कर रहे हैं। वेल, इंडिया की इनिशियल हॉरर फिल्म्स कह लो, मिस्ट्री फिल्म कह लो, सस्पेंस फिल्म कह लो, उनमें से आती वो कौन थी। साधना जी थी, डायरेक्टेड बाय राज खोसला, मनोज कुमार थे इस फिल्म में। एंड भाई महबूब खान चाहते थे कि प्रेम चोपड़ा जो इस फिल्म में एज विलन की तरह लॉन्च हुए वो एक हीरो की तरह लॉन्च होते। सो महबूब खान ने ऑलरेडी बहुत सारी फिल्में बनाई थी एंड ही वांटेड कि वो प्रेम चोपड़ा को ना एक हीरो की तरह पेश करेंगे अपनी आने वाली फिल्मों में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि प्रेम चोपड़ा ने ऑलरेडी ये फिल्म कर ली और उसके बाद ये फिल्म इतनी हिट हुई, प्रेम चोपड़ा एज विलेन इतने हिट हुए कि भाई उसके बाद तो लोगों ने ना उनको नेगेटिव शेड में ही देखना शुरू कर दिया था। तो उनके पास जितने भी ऑफर आते थे वो एज विलेन ही आते थे। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें बैक टू बैक चलती रहेंगी। श्रेया के साथ हो आप। और हाँ, अगर बैक टू बैक मुझसे इंडिविजुअल बात करनी है तो फेसबुक और इंस्टा पे माय हैंडल इज आरजे श्रेया विद लव। दैट्स आरजे SHREYA श्रेया विद लव।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची पर दिल की बात।
2: मीटिंग में आपका बॉस आपकी क्लास लगाने के बाद जब एचआर फन एक्टिविटी में पार्ट लेने को गए तो आप कहते हैं ओके, पर आपका दिल कहता है
3: आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो।
1: इस वर्ल्ड हार्ट डे अपनों और अपनों के दिल की बात को समझो, क्योंकि जब तक इस दिल की धक धक है तब तक अपनी बक बक है। मिर्ची, इट्स हॉट।
4: 89.6, 89.6,
0: इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मनोज कुमार जी की एक खास बात थी, वो सिर्फ अपनी फिल्म के हीरो नहीं होते थे, वो अपनी फिल्मों के म्यूजिक में भी बैठते थे, वो अपनी फिल्मों के कभी कभी डायलॉग्स भी लिखते थे, वो अपनी फिल्मों के कभी कभी स्क्रिप्ट भी लिखते थे। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड मनोज कुमार यूज टू बी एक्सट्रीमली इन्वॉल्व इन द पिक्चर्स ही यूज टू डू। सो वो कौन थी जब उन्होंने हामी भरी ये फिल्म करने के लिए? इंडिया की इनिशियल ईयर्स की सस्पेंस फिल्म थी, थ्रिल फिल्म थी ये, थ्रिलर कह लो। तो इसमें साधना जी के साथ थे मनोज कुमार, और मनोज कुमार को कुछ सीन्स, कुछ लिखे हुए सीन्स जो कि ध्रुव चैटर्जी ने लिखे थे, वो पसंद नहीं आए थे। तो आपको पता है उन्होंने खुद ये सीन्स लिखे, रीराइट के, एंड दे वर रियली अप्रिशिएटेड। पुरानी जीन्स पे वो कौन थी की बातें विद मी श्रेया। तो बस कहीं भी मत जाना।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: ओ भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
2: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6
4: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मनोज कुमार जी को इस फिल्म की रियल हीरोइन ताज होटल के बाहर दिखती थी, जो उनको काफी बार डरा चुकी थी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट मिस्ट्री फिल्म कह लो, हॉरर फिल्म कह लो, वो कौन थी। तो इसमें ना एक डॉफ लेडी की जरूरत होती है। अब ना डायरेक्टर राज खोसला उनको ढूंढने निकलते हैं, लेकिन उनको वो मिलते ही नहीं है। तो ऐसे में मनोज कुमार, हु इज ऑल्सो द एक्टर ऑफ द फिल्म, और उन्होंने कुछ पार्ट्स ऑफ द फिल्म रीराइट भी किए थे, उनको याद आया कि जब जब वो ताज होटल के बाहर निकलते हैं ना, तो उन्हें ऐसी ही एक डॉफ बेगर दिखती हैं, जो कि उनको कई बार डरा चुकी हैं। तो बस उन्होंने सजेस्ट किया राज खोसला को, राज खोसला उनको मूवी के सेट पे ले आए, एंड शी वॉज एक्चुअली द हीरोइन ऑफ द फिल्म। क्योंकि फिल्म हॉरर थी, तो इनको देख करके स्क्रीन पे ना बहुत लोग डरा करते थे। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: कंगना रनौत, आपका जो होने वाला हस्बैंड है उसने आपको छोड़ दिया है एक समोसे के लिए, आप उस समोसे को क्या कहेंगे?
4: जिंदगी में एक ऐसा काम किया है जो कि एक नींबू और मिर्च भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि तुमने मेरी नजर उतारी है। अच्छा तुम उसे ले गए और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, अब हम दोनों मिलके चाय पियेंगे। एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी चाय के साथ।
3: समोसे के साथ एक हाइपोथेटिकल कॉन्वर्सेशन करती हुई कंगना रनौत ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: पुरानी जीन्स में आप श्रेया के साथ, जाने का टाइम यानी लेट्स हिट द हाईवे। और आज का मेरा हाईवे हिट ना उन लोगों पे है जिनका शायद पहला प्यार पूरा नहीं हुआ, या फिर यू नो अभी भी उनकी लाइफ में कोई ऐसा है जिनको वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में उतर आए लेकिन वो उनको कुछ कह नहीं पाते, या फिर सिचुएशंस ऐसी हैं जिनकी वजह से वो उनकी ज़िंदगी में नहीं आ सकते हैं। उनके लिए ये दिल तो कभी करता होगा और सोचता होगा ना ऐसा।
1: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल,
0: कैसे कैसे ख्याल आते हैं आज ये गाना
1: बनाया गया है मेरे।
0: करेक्ट, तो शायद कोई खास को ये गाना आज आपकी याद दिलाते हैं। On that note, this is Shreya signing off. We'll see you tomorrow. और हाँ, Facebook, Insta पे RJ Shreya with love, that's my handle. Good night.